प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 8 जुलाई रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं और अभी के लिए समय हुआ है समाचार का।
3: सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बुधवार 8 जुलाई को यानी आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमिटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं। ये जान लें कि पिछले साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और उसके एक दिन बाद ही ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हुआ था, यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राष्ट्रसभा में डुबेन लिपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में FCC की जाँच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब कल राष्ट्रसभा में दिए। रिविया जुहापा के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री रंजीव वुचित ने कल राष्ट्रसभा में की। इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये मामला 2003 में दिए गए कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा है जिसकी शुरुआती लागत 51 मिलियन रुपए से कुछ अधिक थी। बाद में ये मामला लंबे समय तक आर्बिट्रेशन विवाद में उलझा रहा और अंत में इसकी कुल लागत सरकार को 580 मिलियन रुपये तक पहुँच गई। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल रात राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ एक टकरा मैच जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की। उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। आज रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। मॉरिशस में आज सुबह 10 बजे तक तेज हवाएं और ऊंची लहर की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मस्करीन्स के दक्षिण में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिस वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान दक्षिणी तथा पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। रात को भी बादल घिरे रहेंगे खासकर ऊंचाइयों पर और हवाई ढलानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों से उड़ती चीज़ों से बचने तथा ऊंचाइयों पर काम करते समय सावधानी बरतने और खासकर सड़कों पर क्रॉसविंड्स के कारण ज़्यादा सतर्क रहने की मांग की जाती है। और समुद्र में की बात करें तो दक्षिण पश्चिम में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और ज्वार भाटे के समय दक्षिणी तथा पश्चिमी लगूनों में भी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मछुआरों, आम जनता और लेजर क्राफ्ट ऑपरेटरों के साथ आज दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है और तटीय इलाकों पर भी सावधानी बरतने की मांग की जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 17 और अधिकतम 18 से 21, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:46 पर जबकि शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
0: घोर की बेला, ताजगी भरी शुरुआत।
2: जी हाँ, एक नए दिन के साथ, इस नई शुरुआत के साथ हम भी आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए रेडियो मॉरिशस पर। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज है बुधवार 8 जुलाई, सवेरे के 6:06 होने को है। रेडियो मॉरिशस पर हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नया दिन, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नए सपने के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं आज के इस दिन का स्वागत करने के लिए। और साथ ही दिल से स्वागत करते हैं हमारे सभी लिसनर्स का, हमारे सभी श्रोताओं का, जो हमेशा रेडियो मॉरिशस पर हमारा साथ देते हैं। चलिए, भोर की बेला इस कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हम आ गए हैं और यहाँ पर आपके साथ साथ हम रहने वाले हैं। आशा करते हैं कि आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपका हर सपना, आपका हर अरमा पूरा हो और जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता मिले। और आजकल मौसम भी काफ़ी बदलते जा रहा है, कभी ठंड तो कभी बारिश, तो बदलते मौसम में आप अपना अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिए। तो चलिए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की इस भोर की बेला कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। आपको बता दें, कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर, उसके बाद चंद खूबसूरत भावगीत आपके मनोरंजन के लिए हम चलाएंगे और 6:30 आप सुन पाएंगे पूरा समाचार एमबीसी रेडियो पर। तो चलिए, आज है बुधवार, आज की इस भोर की बेला को हम आरंभ करते हैं सनातन धारा मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो चलिए, आचार्य जी की प्रस्तुति में सुनते हैं हम कार्यक्रम सनातन धारा।
6: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय कलयुग में नाम की महिमा। नामो राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु जो सुमिर

रत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। कल्पतरु में सब चीजें रहती है, उससे जो चाहो मिल जाए। कलयुग में मन चाहा पदार्थ देने वाला राम नाम रूपी कल्प वृक्ष है, और कल्याण का निवास स्थान राम नाम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए मैं दूसरे की क्या गवाही दूं। भाग पीने से नाश आ जाए और बुद्धि बलवानी हो जाए और मथा खराब हो जाए, ऐसा भाग का प्रभाव होता है। मैं भाग के समान था, पर नाम का स्मरण करने से भाग के समान में तुलसीदास तुलसी बन गया। तुलसी दल के बिना बढ़िया से बढ़िया चीज़ें भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। इसीलिए अब नाम की महिमा कहाँ तक कहूँ, मैं खुद ही उदाहरण हूँ। चहूँ भोग तिनी काल तिन्हू लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। केवल कलयुग की बात नहीं है, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों ही युगों में और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में तथा स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों ही लोकों में सब के सब जीव भगवान का नाम लेकर सदा के लिए चितारहित हो गए। वेद पुराण संत मत एहूं, सकल सुकृति फल राम सनेहूं। विशेष ध्यान देने की बात है, वेद पुराण और संत सबका इसमें एक मंत्र है। क्या? सकल सुकृति फल राम सनेहूं। राम जी और राम जी के नाम में स्नेह हो जाए तो संपूर्ण पुण्य का फल मिल गया। मानव वे भाग्यशाली है जो भगवान का नाम लेते हैं। नाम जप में स्वतः रुचि हो गई तो समझना चाहिए कि संपूर्ण पुण्यों के आकार एक साथ फल दे दिया। इसका रहस्य नाम लेने वाले ही समझते हैं, साधारण आदमी समझ नहीं सकते। कलयुग में विशेष क्या बात है, वह आगे कहते हैं। ध्यानो प्रथमा जो मुखविनी द्विजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन लीना। सत्युग में भगवान का ध्यान लगाकर तलीन होने से परमात्मा की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से प्राप्त होती है। परंतु कली केवल मल मूल मलीना, अब ध्यान दो भाई, कलयुग में क्या है, क्या बात बतावें। कलयुग में पाप ही मूल हो गया है। मनुष्य का मान पाप रूपी समुद्र की मछली बन गई है। मछली को जैसे जल में दूर करने से मुश्किल हो जाता है, वह तड़पने लगती है। ऐसे आज अगर कह दिया जाए कि झूठ कपट मत करो तो उनका मन व्याकुल हो जाता है। मनुष्यों का मन पाप से कभी अलग होना चाहता ही नहीं। उनसे ध्यान यज्ञ और पूजन
कुछ नहीं बन सकते।

ए नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समत सकल जग जाला। कराल काल कलयुग में नाम कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष इसलिए बताया कि इस नाम से ध्यान यज्ञ पूजन आदि सब हो जाएगा। नाम लिया उसने सब की जोग जग अचारा। एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने कहा नाम जप के सिवा कलयुग में दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता। इसमें ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग नहीं हो सकता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही लिया जा सकता है, इसलिए नाम जप करना चाहिए। ऐसे उन्होंने नाम की महिमा कही। उसके बाद पास में बैठे महात्माओं ने अपने व्याख्या में कहा बात बिल्कुल ठीक है, नाम जप के बिना कुछ नहीं हो सकता, पर नाम महाराज की कृपा से ध्यान भी हो जाएगा, यज्ञ भी हो जाएगा, दान भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम जप से अगर ये नहीं हुए तो नाम की महिमा ही क्या हुई। बड़े बड़े साधन भी नाम महाराज की कृपा से सुगम हो जाएगा। यज्ञ दान पूजन ध्यान भजन चाहे जो करो, नाम महाराज का सहारा लेकर करोगे तो सब तरह की योग्यता आ जाएगी। जगत के जल में को शांत करने वाले नाम महाराज है। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। इस कलयुग में राम नाम मन चाहा फल देने वाला है, परलोक में हित करने वाला है, अर्थात भगवान का परम धाम दिखाने वाला है, और लोक में माता पिता के समान हित करता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बालक का पालन पोषण माँ बाप के समान कौन कर सकता है। पिताजी बाहर की और माँ भीतर की सब तरह से रक्षा करती है। इसीलिए भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम के कल्पतरु कली कल्याण फरो करमौ।

जो सुजत रंग हरो चाटक रहो ध्यान पारतियो कबहु न पेट भरो सोहो सुमिरत नाम सुधारस पीखत पर।

0: जिसे दूसरे का भरोसा हो वह भले ही करें, पर मेरे तो यह राम नाम ही कल्प वृक्ष है। अंत में कहते हैं, मेरे तो माया बाप दोहूं आखर, मेरे तो माँ बाप ये दोनों अक्षर र और म है, मैं तो इनके आगे बच्चे की तरह अखड़ रहा हूँ। यदि मैं कुछ भी छिपा कर कहता हूँ तो भगवान शंकर साक्षित है। मेरे जीव जल कर या गल कर गिर जाए, गवाही देने वाले से कह जाता है कि सच्चा सच्चा कहते हो ना, तो गंगा जल उठा ओ सिर पर रखो। ऐसे भगवान शंकर जो गंगा को हर समय सिर पर अपनी जटा में धारण किए हुए रहते हैं, उनकी साक्षी मैं कहता हूँ। इस प्रकार से संपूर्ण जीव में राम नाम सबसे उत्तम है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा। तो श्रोताओं, अभी हम कार्यक्रम सनातन धारा सुन रहे थे सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए हम आचार्य सुपाल मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6:22 होने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सी बी क्लेफो वाकवा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। क्लेफो वाकवा के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक क्लेफो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इंडिपेंडेंस एवेन्यू, ईव ब्रेलू ब्रेलू एवेन्यू, ब्राउन सेक्वर्ड, सिमेट्री रोड, औंद्रे मार्टिन एवेन्यू, महंत कबीर टेम्पल रोड, शोभी लेन, आर्य मंदिर लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आते रविवार 12 जुलाई को, आते रविवार 12 जुलाई को सुबह के 8:30 से शाम के 5:00 के बीच, सुबह के 8:30 से शाम के 5:00 के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
3: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत,
1: कहते हैं जहाँ पर शुरुआत होती है वहाँ पर अंत भी होता है और अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। तो बस न शुरुआत से हमें घबराना चाहिए, ना ही अंत से हमें घबराना चाहिए, क्योंकि ये एक जीवन का चक्र है जो चलते रहता है और हमें भी सतत निरंतर चलते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए, तभी तो जाकर हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। बस हालात जैसे भी हो, अपने आप को मजबूत रखना ही बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को जो है सक्षम बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है और सबसे बड़ी बात होती है स्वयं पर विश्वास करना, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमें जीवन की हर परेशानियों से पार लगाता है। ये विश्वास ही है जो जीवन के हर मुश्किल में हमारा साथ देता है और अपने आप के साथ साथ उस परमपिता परमेश्वर पर भी विश्वास होना बहुत ही आवश्यक होता है। और चलिए इस सुंदर गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं 6:30 के पूरे समाचार की ओर। भोर की बेला इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में। ऐसे ही जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के 6:30 बजे हैं।

0: सभी को नमस्कार और आदाब। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल को अंतिम चरण तक पहुंचाना। राष्ट्रसभा में कल पीएमक्यूटी के दौरान डोमेन लिपाई की स्मॉल सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां पाई गई हैं और स्मॉल सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। खिव्यांजु हॉपर के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए जांच आयोग का गठन, इसकी घोषणा कल प्रांतीय प्रशासन मंत्री राजीव उचित ने की। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप के लिए कल राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना इजिप्ट के बीच अर्जेंटीना ने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच मैच रहा ड्रॉ 0-0। अंत में पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पेश है समाचार विस्तार से। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ, लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: बजट लागू हो चुका है, लेकिन फाइनेंस बिल अभी तक नहीं। ये स्थिति भले ही सही नहीं लग रही है, लेकिन संविधान में इसके लिए दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था सरकार को सार्वजनिक खर्च करने की अनुमति देती है, जबकि दूसरी करों को लागू करने या उनमें बदलाव करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। 27 जून को राष्ट्रीय सभा ने अप्रोप्रिएशन बिल पारित किया। ये कानून सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालकर सार्वजनिक खर्चों का वित्त पोषण यानी उनकी फाइनेंसिंग करने की अनुमति देता है। इसी के आधार पर पहली जुलाई से नए वित्तीय वर्ष की औपचारिक शुरुआत हो सकी। दूसरी ओर नई कर संबंधी व्यवस्थाएं अलग प्रक्रिया के तहत लागू होती है। किसी भी नए कर, आयकर, VAT, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी या सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी में किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सभा की मंजूरी अनिवार्य होती है। यही फाइनेंस बिल का मुख्य उद्देश्य है, जो बजट में घोषित कर संबंधी उपायों को कानूनी आधार प्रदान करता है। जब तक ये विधेयक राष्ट्रीय सभा में पारित नहीं हो जाता, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता और गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक ये नई

0: कर संबंधी व्यवस्थाएं लागू नहीं हो सकती। हालांकि बजट में की गई कुछ घोषणाएं पहले से ही प्रभावी हैं। इनमें प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के तहत दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। ये पहले से मौजूद कानूनों और नियमों पर आधारित है, इसलिए इन्हें फाइनेंस बिल के पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना लागू किया जा सकता है।
1: प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राज्यसभा में डुमिनलीपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में FCC की जाँच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब दिए। उनके जवाब का एक अंश पेश है।
2: I am further informed by the State Investment Corporation that following allegations made to the FCC.
1: State Investment Corporation ने जानकारी दी कि दो चीनी लोगों द्वारा FCC के तहत दर्ज शिकायत के चलते मिस्टर लेहाई का शेयर होल्डर के रूप में नेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड में भाग लेने को लेकर विरोध है। चीनी मूल के इन दो लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि मिस्टर लेहाई मनी लॉन्डरिंग में भागीदार हैं, जिसके बाद FCC ने मिस्टर लेहाई के खिलाफ अस्थाई आरोप दर्ज किया है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर लेहाई के बैंक खातों और लेहाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की संपत्तियाँ फ्रीज करने का आदेश दिया। स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने मई 2026 में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में मिस्टर लेहाई के खिलाफ धोखाधड़ी और फंड्स के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन मिस्टर लीलांबा और मिस्टर लेहाई के खिलाफ शिकायतों पर जांच कर रही है। इन्हीं श्री लीलांबा को पूर्व सरकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। ये एक हाई प्रोफाइल केस है जो सार्वजनिक संपत्तियां, सरकारी जमीन, एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्थल, वित्त दुरुपयोग, शेयर होल्डर के रूप में लेहाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की बेईमानी और निवेश में नुकसान दर्शाता है।
2: मिसमैनेजमेंट, डिसऑनेस्टी बाय शेयर होल्डर लेहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड ए लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट।
1: कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी खामियों को का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए ये परियोजना इस वक्त पायलट चरण पर है। डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट को 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के आगे बढ़ने पर ऐसा किया गया है। उनको सुनते हैं।
2: But if the sum has been voted, it's because we have to recruit, and at the same time we are trying to expand. In the beginning, it was in its initial.
1: भर्ती कार्रवाई चलाई जाएगी और परियोजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी कारण ये रकम बढ़ाई गई है। शुरुआत में इतनी रकम की जरूरत नहीं थी और 19 मिलियन रुपए वापस कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए गए, लेकिन अब जब काम आगे बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ गया है। पूर्व सरकार द्वारा दो इलाकों में कोई भी कार्य नहीं किए गए। जहां फाइनेंस की बात आती है, ये मेरे मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि खर्चों पर ध्यान रखे। मैं आश्वासन देता हूं कि स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक एक रुपए का सही प्रयोग किया जाएगा। रिव्या जोहापा बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री हाजी रंजीव वुचित ने कल राष्ट्रीय सभा में की। इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये मामला 2003 में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जिसकी शुरुआती लागत 51 मिलियन रुपये से कुछ अधिक थी। बाद में यह मामला लंबे समय तक आर्बिट्रेशन विवाद में उलझा रहा और अंत में इसकी कुल लागत सरकार को 580 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। गौरतलब है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। आयका को भेजे गए गुमनाम पत्र के बाद पहले मध्यस्थ ने खुद को मामले से अलग किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन 2003 में प्राइवेट काउंसिल ने उस फैसले को बरकरार

0: रखा। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रसभा के कार्य अब 10 जुलाई दोपहर 3 बजे से जारी रखे जाएंगे। और अब ये खबर, हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इस चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पॉन्ज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। अडॉप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग प्राप्त है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं अक्सर मौसम से जुड़े खतरों को लेकर देश में पाई जाने वाली कमजोरियां सामने लाती हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलकर स्पॉन्ज सिटीज की वैश्विक धारणा को इस समस्या के एक समाधान के रूप में अपनाया जा सकता है। ये शहरी योजना का एक ऐसा मॉडल है जिसे बारिश के पानी को पाइप के जरिए तेजी से बहाने के बजाय उसे सोखने, जमा करने, फिल्टर करने और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश कहते हैं,
2: because aujourd'hui un nouveau concept que nous rend beaucoup plus bassin de rétention, ça veut dire nous fouiller quand nous trouvons un drain et après nous étudier dans bassin de rétention, donc de l'eau qui est capable d'utiliser et réutiliser.
1: में जारी किए गए लैंड ड्रेनेज प्लान की रणनीतियों में स्पॉन्ज सिटीज की धारणा शामिल है। हालांकि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना और योजना को स्पष्ट रूप से समझाना जरूरी है। लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी के निदेशक,
3: le master plan nous a apporté des solutions concrètes, un inventaire complet de nos infrastructures de drainage, une cartographie des zones vulnérables, de nouvelles règles nationales, des solutions durables et innovantes, comme les bassins de rétention, la restauration des zones humides, entre autres.
1: Rodrigue Smith Smart Water Management Program pehle se shuru ho chuka hai.
4: Un premier appui accompagne Rodrigue d'abord dans l'élaboration d'un schéma de gestion des eaux de ruissellement fondé sur les principes de hydrologie régénérative et des solutions fondées sur la nature. Prévention des inondations, rétention de l'eau, alimentation des aquifères.
1: जल संसाधनों के बेहतर संचालन के वास्ते यूरोपीय संघ मॉरिशस को जरूरी समर्थन देने के लिए कटिबद्ध है।
5: L'Union européenne a adopté sa stratégie européenne pour la résilience de l'eau qui repose sur trois objectifs. Restaurer et protéger la résilience de l'eau, bâtir une économie de l'eau plus efficace et garantir un accès équitable à une eau propre pour tous.
1: सभी संबद्ध पक्षों को ड्रेनेज मैनेजमेंट मास्टर प्लान के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। इसके बाद उसके सुझावों और प्रस्तावों को लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी के अपडेटेड मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।
0: पोर्टलुई के बिशप मोसेयर जॉन मिकाएल जोहोन और रोड्रिग्स के अपोस्टोलिक विकार मोसेयर मिशेल मोहा ने कल दोपहर बाद ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टवी में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ मुलाकात की। चर्चाएं मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए एक रिटायरमेंट केंद्र और रोड्रिग्स में एक रिट्रीट सेंटर पर आधारित रहीं। मोसेयर जॉन मिकाएल जोहोन और मोसेयर मिशेल मोहा को सुनते हैं।
6: Aujourd'hui, c'était d'abord pour présenter le nouvel évêque de Rodrigue, qui a été ordonné le 19 mars 2024. Et puis, passer un peu en revue des grandes questions, nous aussi, pas mal sur les personnes âgées. Si nous en avons dans le diocèse, tous les homes, les maisons de retraite, toutes les questions aussi de là, comment accompagner les personnes âgées.
7: Avec donc, l'Église, nous avons monté un projet pour ouvrir la première maison de retraite permanente pour Rodrigue. On a pour le moment, un centre de répit, c'est-à-dire qu'on accueille les personnes âgées pour jusqu'à 2 mois, mais après, la personne doit rentrer à la maison. Il y a aussi une unité de répit qu'on prévoit de mettre en place pour les personnes autistes et les enfants et les jeunes lourdement handicapés.
0: वैश्विक स्तर पर सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल रात राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ, एक तगड़ा मैच जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की। उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनाल्टी में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। कल गुरुवार रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच।

और भारत में केरला में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता हैं। मिट्टी का बहाव इतना तेज रहा कि लोग इससे बच नहीं पाए और मिट्टी तले दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर आज सुबह 10 बजे तक ऊंची लहर और तेज़ हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मस्करींस के दक्षिण में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी और तेज़ हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान भी पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों, ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा भी छाया रहेगा। रात को हवाई ढलानों पर ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। आम जनता से उड़ती हुई चीज़ों से सावधान रहने तथा ऊंचाइयों पर काम करते हुए सतर्कता बरतने और गाड़ी चालकों से क्रॉसविंड्स के कारण सड़कों पर विशेष सावधानी बरतने की भी मांग की जा रही है। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में समंदर में 4 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा लगूनों में न जाने की सलाह भी दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 17, अधिकतम 18 से 21, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:46 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुँचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर कादेर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, and NBCRadio.tv. NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। मुसलमान टागोर इस कालिये में 86 साल के 86 years old के श्री बाल गोबिंद साम जो चिरूज मक्के के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे देवानंद साम के मकान मुसलमान टागोर इस कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। मस्को रोड प्लेंडी पापाई में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी अकीना रुसारा पैदाशी नाम संकर और जो छुट्टी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज सुबह दस बजे उनके बेटे नाजीम मुदाबकस के मकान मुस्कर रोड प्लेंडी पापाई से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंडी पापाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। शुमें डिस्पेंसरी नूवेल फ्रांस में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदेव धरकान जो रामदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी ज्ञानती धरकान के मकान शुमें डिस्पेंसरी नूवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहेशानी रोस्पेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। ऋषि दयानंद स्ट्रीट जुभॉय में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसवंती रामचरण पैदाशी नाम भुवन की मृत्यु

हो गई है उनकी अर्थी आज से पहर 3 बजे। उनके मकान ऋषि दयानंद स्ट्रीट जुभोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बुडू लेन सेबास्टोपोल में 26 साल के जनाब करीम खान

आज सुबह 10 बजे उनके पिता अब्दुल इकबाल खान के मकान बुधू लेन सेबास्टोपोल से उठाकर दफना सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए सेबास्टोपोल की इनोर मस्जिद और फिर दफनाने के लिए सेबास्टोपोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। रॉय रोड घोबियो न्यू ग्रोव में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मण रोसियावन जो सतीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2:30 बजे उनके बेटे अंतिश रोसियावन के मकान रॉय रोड घोबियो न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 1:30 PM। रिजर्वा रोड ओलीहुद नंबर एक वाकवा में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल गुरुवार को सुबह साढ़े नौ बजे उनके मकान रिजर्वा रोड ओलीहुद नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। रॉ रोड लुसियो सेबास्टोपोल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री गौतम गुली की मृत्यु हो गई है। अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी रागिनी गुली के मकान रॉ रोड लुसियो सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। नंबर 28 लाल बहादुर शास्त्री लेन जुभॉय में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती भगवान दीन जो राधा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके मकान नंबर 28 लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट जुभॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉ रोड लावांचुआ में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री वेद व्रत जीतन जो वेद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके बेटे वृद्धराज जीतन के मकान रारोला मोचुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। कांगारो सेंटर डे फ्लैक में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेसराम रामसरन जो मिनिस बलहाम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके मकान कांगारो सेंटर डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:00। गॉडिनिया रोड विलबाग में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र देव बहू जो चुल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके मकान गॉडिनिया रोड विलबाग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितरों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:30 PM। लॉट नंबर अठारह मोसलमा ऑजी फ्लैक में 42 साल के 42 ईयर्स ओल्ड के श्री विकी गोबिन जो सिवालैन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी दोपहर 2 बजे उनकी माँ गोइंदामा गोबिन के मकान नंबर 18 मोसलमा औजी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बेचुलेन प्लैंडे होश में

0: 80 साल के 84 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सरस्वती बेचू, श्रीमती सरस्वती बेचू पैदाशी नाम मेपत और जो सती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पोते यशवीन बेचू के मकान बेचू लेन प्लेंडे हाउस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। जेरानियम लेन ला क्रोज़े शेबेल में, जेरानियम लेन ला क्रोज़े शेबेल में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रमरावती जगू, श्रीमती प्रमरावती जगू पैदाशी नाम जिंगुर और जो पुलू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके बेटे जाम जगू के मकान शिहानियम ले नाख्वाजे शिबैल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ख्वाबों भूखी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल 3 कोहोमांडेल में, नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल 3 कोहोमांडेल में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी अमृता राम नारायण के मकान नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसेलमा मोरियाल नंबर 3 कोहोमांडेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। थ्वा बुचिक थ्रियोले में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद बुद्धराम, श्री परमानंद बुद्धराम जो फुफुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनकी पत्नी चंद्रावती बुद्धराम के मकान थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोप्पमा महात्मा गांधी रोड थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। कांगुलबा रोड शुमेघोनी में, कांगुलबा रोड शुमेघोनी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री बाल्मिक बुधन, श्री बाल्मिक बुधन जो ईश्वर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी दिन के 1:30 बजे उनके मकान कांगुलबा रोड शुमेघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स
1: न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल के फिक्स्चर्स तैयार हैं। अंतिम क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अर्जेंटीना के लिए 3-2 की कॉमबैक विन, तो पेनाल्टी पर स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को एलिमिनेट किया। इस पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी से पंगा नहीं लेने का। डोंट मेस विद मेसी। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 की लीड, 2 गोलों की बढ़त लेकर इजिप्ट वाले बहुत फरफरा रहे थे। पर कहते ना, हारी हुई बाजी को जीतने वाले को मेसी सिकंदर कहते हैं, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फर्स्ट हाफ में इजिप्ट का पहला गोल बनाता है यासिर इब्राहिम, इसके बाद मेसी पेनाल्टी मिस कर जाता है। सेकंड हाफ में इजिप्ट 2-0 से आगे, मुस्ताफो जीको का गोल, इससे पहले इसी ने एक गोल बनाया था पर रेफरी ने रद्द किया। फिर शुरू होता है मेसी का जलवा, उसके पास पर रोमेरो का गोल। 4 मिनट बाद मेसी ऑन टारगेट, इस वर्ल्ड कप में उसका 8वां गोल, और एडेड टाइम में एंजो फर्नांडेज अपनी टीम को जीत दिलाता है लोतारो मार्टिनेज के क्रॉस पर। अर्जेंटीना 3-2। नेमार और रोनाल्डो हार कर रो रहे थे, मेसी जीत कर रो रहा था खुशी के आंसू। देखा जाए तो मेसी रो रहा था क्योंकि उसे पता था कि अर्जेंटीना बहुत दूर से बचा है। हार से केवल 12 मिनट दूर थी अर्जेंटीना की टीम। इजिप्ट ने अर्जेंटीना को डराया जरूर। अर्जेंटीना की इस जीत में उसके कोच का भी बहुत बड़ा हाथ है। एन मौके पर सही सब्स्टिट्यूशन करने पर मैच का रुख एकदम पलट गया। इजिप्ट की टीम जी जान से खेली, पहली बार वर्ल्ड कप के इस स्तर पर आई। मोहम्मद सलाह के साथ ही पछतावा है, छिलल खांसी भागल पर सर ऊंचा करके जा रहे हैं। मैच के बाद इजिप्ट के कोच ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि इजिप्ट पर नाइंसाफी हुई है। अर्जेंटीना के तीसरे गोल से पहले सलाह पर फाउल हुआ था। बॉस हसन ने यहां तक कहा कि फीफा अर्जेंटीना और मेसी को फेवर करता है। जो भी हो, अब पछताए होत गया जब मेसी चूक गया खेत। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना के सामने होगा स्विट्जरलैंड। कोलंबिया के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में भी मैच 0-0 रहा, मैच ड्रॉ 0-0। पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड का हीरो बना ग्रेगो कोबेल, जिसने कोलंबिया के कुचो एर्नांडेज के पेनाल्टी को बेहतरीन तरीके से रोका, स्टनिंग सेव। स्विट्जरलैंड की टीम 72 साल बाद वर्ल्ड कप के टॉप 8 में आई। क्वार्टर फाइनल फिक्स्चर्स इस प्रकार है। कल रात्रि के 12 बजे फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर शुक्रवार 11 बजे फ्राइडे 11 PM स्पेन वर्सेस बेल्जियम, संडे सुबह 1 बजे नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, फिर सोमवार को मंडे सुबह 5 बजे अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड। बची हैं केवल 8 टीमें जो हर प्रकार से विश्व चैंपियन बनने के लिए काबिल हैं। आज आराम का दिन, अभी तक मतलब 27 दिनों में 5 मैच खेलकर 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में हैं। जो आने वाले 3 मैच जीतेगा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। टेनिस विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच की जवानी वापस आ गई है। 39 साल का जोकोविच 25 साल के नौजवान को 5 सेट पर हराता है, 5 घंटे 15 मिनट का खेल। नोवाक जोकोविच ने ओग अल्यासिमे को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। 5 सेट थ्रिलर रहा। यानिक सिना भी क्वालिफाई हुआ स्ट्रफ को 7-5, 7-5, 6-3 से हराकर। लड़कियों में कोको गोफ पिगुला को हरा पाई, मुचुवा क्वालिफाई हुई ओसाका को हरा कर। आज के क्वार्टर फाइनल कोइस्ट्रिक पाउलिनी नुस्कोवा मेरतेंस, लड़कों में कोबोली फेरी

0: Fritz Vereb. सेमीफाइनल में कोको गोफ खेलेगी मुचोवा के खिलाफ और यानिक सीनर लोहा लेगा नोवाक जोकोविच से। ये फ्राइडे मैच है। क्रिकेट तीसरे T20 मैच में भारतीय T20 टीम की धुलाई हुई। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को रिकॉर्ड 125 रनों से हराया। इंग्लैंड की टीम के 201 रनों के जवाब में भारतीय टीम केवल 76 रन पर ऑल आउट हुई। वैभव सूर्यवंशी केवल 13 रन बना पाया, पर उससे ज्यादा कोई और नहीं बना पाया टीम इंडिया में। T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की रिकॉर्ड हार। 5 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे है, 2 मैच बचे हैं। और साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के चौथे चरण फोर्थ स्टेज में डेनमार्क के मैट्स पेडर्सन की जीत हुई। ओवरऑल लीड में डिफेंडिंग चैंपियन तादेज पोगाचा अपना येलो जर्सी खो बैठा। थॉर्स्टन फ्राइन नया लीडर है। पोगाचा चौथे स्थान पर 7:50 पीछे। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। जबरदस्त वापसी अर्जेंटीना की ओर से। 2-0 से हार रही थी मेसी की टीम, लेकिन झपट्टा मार के 3-2 से मैच जीत पाए। और उधर स्विट्जरलैंड पेनाल्टी पर कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: बुधवार 8 जुलाई घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:07 रेडियो मॉरिशस पर सुबह का नजराना। इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। तो चलिए यहाँ पर इस नए दिन के साथ हम भी जुड़ चुके हैं आपके साथ रेडियो मॉरिशस पर आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम अच्छे अच्छे गानों के ज़रिए और जो है भरपूर मनोरंजन होने वाला है 2 घंटे के इस सुबह का नजराना प्रोग्राम के सफ़र में। तो चलिए यहाँ पर आज तो मौसम ऐसे भी ठंड है काफ़ी, रह रहकर बरसात भी होते रहती है, तो बदलते मौसम में आप अपना ख्याल रखिए, बेशक हमारे साथ जुड़े रहिए। दिन की शुरुआत, कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो तो अपने आप में अंत भी अच्छा होता है, तो हमारी बस यही कोशिश है कि सवेरे सवेरे अच्छे गाने अच्छे प्रोग्रामों के ज़रिए आपके चेहरे पर मुस्कान ला पाए। और अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसी बात हो रही है लाइफ में जहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं, तो आपकी परेशानी को थोड़ा सा कम करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है हमारे इन प्रोग्रामों के ज़रिए। तो चलिए एक बार फिर से दिल से आपका स्वागत हम करते हैं। 9 बजे तक चलेगा ये म्यूज़िकल सफ़र और नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे चिंतन से, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर जमन से।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जब मनुष्य के बुरे दिन हों, तब उसे अत्यधिक उपदेश देने की अपेक्षा उसकी थोड़ी सहायता कर देना अधिक अच्छा होता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीबी कौशालुत शिमेग्रेनिये और रिवेदे गालित के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। विलास दे कौशालुत शिमेग्रेनिये रिवेदे गाले यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 9 जुलाई को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही रोजिल और रोशब्रुन के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है।

0: रोजहिल और रोजब्रुन के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, खासकर यहाँ के NHDC बेगोनिया, NHDC डालिया, NHDC फ्लैम्बॉयंट, लेस्पास, कॉन्कॉर्ड, एवेन्यू आरियान, एवेन्यू रोजब्रुन, मॉसलमॉन न्यू टाउन, विनर्स रोजब्रुन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 8 जुलाई को सुबह के 9 से 10 बजे के बीच और फिर शाम के 4 से 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। यूनियन पार्क के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, यूनियन पार्क के खासकर मौसलमा SIT यूनियन पार्क, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 8 जुलाई को सुबह के 8.30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही अल्बियों के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, अल्बियों के खास कर मौसलमा राफ्रे, मौसलमा बेजेराज, मौसलमा बेलवी, मौसलमा उरागन, एवेन्यू उरागन, एवेन्यू विक्ट्री, एवेन्यू सेंट जेरों, एवेन्यू बाउंटी, एवेन्यू अल्बाथ्रोस, एवेन्यू डालिया, एवेन्यू चिलिप, एवेन्यू फ्रांगिपान, एवेन्यू रोज, एवेन्यू उलित, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार 9 जुलाई को सुबह के 9 से साढ़े 9 बजे के बीच और फिर दोपहर के 3 से साढ़े 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ CEB की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए खूबसूरत गाने के साथ यहाँ पर खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर, और अब बारी है आपको बताने की कि आज रेडियो पर कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना, और ऑब्वियसली सुबह का नजराना में आपको तो पता ही है कुछ पुराने गाने आपके लिए हम चलाते हैं इस सवेरे को और भी स्पेशल बनाने के लिए और भी यादगार बनाने के लिए। लगभग 7:40 से आपके डेडिकेशंस को हम शामिल करेंगे, जिसके लिए आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स हमें सवेरे से मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और फिर 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 हम लेकर आएंगे एक छोटा सा क्विज, जी हाँ, खेल खेले हम और देखें, और इसका इंतज़ार आप लोग बेसब्री से करते हैं, बड़े ही जो है प्यार से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 8:50 पर आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर इस कार्यक्रम को किरण जानकी जी की प्रस्तुति में, और फिर जो है 9 बजे आप सुनेंगे समाचार। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। दिन के 10 बजे के समाचारों के बाद हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी से। 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा, जिसे पेश करेगी सैयदा। दोपहर के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे विश्वा द्वारा। दोपहर के 12:30 जो है आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम प्रीति की प्रस्तुति में। दोपहर के 1 बजे आरसी प्रस्तुत करेगी तमिल भाषा में कार्यक्रम। 1:45 गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता की प्रस्तुति में। 2:30 से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सपेर के 4 बजे शिरीष की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम विविधा। 5 बजे खेतीबाड़ी पर आधारित प्रोग्राम आप सुन पाएंगे फारी की प्रस्तुति में। 5:15 से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 हाका भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7 बजे आप सुन पाएंगे तमिल भाषा में कार्यक्रम युवरासन की प्रस्तुति में। 7:30 राजेंद्र पेश करेंगे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे गीत गंगा नितिन बाबू से। रात के 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे रोशनी से। रात के 8:40 पर उर्दू प्रोग्राम आप सुन पाएंगे महफिल शब अविनाश की पेशकश में। रात के 9 से 11 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। रात के 11 बजे सुनहरे पल इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे गिनीशा की प्रस्तुति में। और रात के 12 बजे से कल सवेरे

0: तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने जो है यहाँ पर चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा आज के रेडियो के प्रोग्रामों की।
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

बेशक सवेरे सवेरे अपनों से बात हो जाती है, सवेरे सवेरे अपनों से मुलाकात हो जाती है तो मानो ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है ना। सवेरे सवेरे कोई आता है आपसे मिलने, मुस्कुराकर आपसे बात करता है, नए दिन की शुभकामनाएं देता है, तो चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ ही जाती है। और यही मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और जीवन में जो पॉजिटिविटी है ये बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है भगवान की दया से, लेकिन ज़िंदगी में हमें खुशी नहीं है किसी चीज़ की, जीवन में हमारे शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं हो तो मानो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है होने के बावजूद भी इन चीज़ों की कमी हमेशा महसूस होती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों में खुशियों को ढूंढे, कुछ ऐसा करे जो आपको खुशी पहुंचाए, कुछ ऐसा करे जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, संतुष्टि मिले, कुछ ऐसा करे जिससे करने के बाद आपको लगे कि हाँ आपने कुछ तो अच्छा किया।

और देखिए कैसे ये छोटी छोटी बातें हमारे पूरे दिन को खुशियों से भर देती हैं। और कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ से जो चाहते हैं हमें अपने आप से वो बोलना चाहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जो है तंदुरुस्त हूँ, मैं जो है सभी बीमारियों से, सभी परेशानियों से, सभी मुसीबतों से, सभी चिंताओं से दूर हूँ। जब हम अपने आप को ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ होने लगती है। कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि ये चीज़ आपके कितने काम आई। अभी के लिए ये तराना हो जाए आप सभी के नाम लता जी, सुरेश वाडकर जी की आवाज़ों में, अपने अपने इस फिल्म से लिया गया।

चलिए यहाँ पर मुकेश साहब की आवाज़ में अभी आप सरस्वती चंद्र फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना सुन रहे थे, और अब शुरुआत करते हैं आपके डेडिकेशंस की, आपके खूबसूरत मैसेजेस की जो हमें यहाँ पर सवेरे से मिल रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए धन्यवाद। चचा अंगिरा दुबलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम में साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चचा आपके फ़ोन कॉल के लिए। और चलिए यहाँ पर अगला गाना जो है आपके नाम हम करते हैं, और यहाँ पर गाना जाता है रोजिल से, ये मैसेज आया है विद्वंती जी की ओर से, नहीं देवी जी की ओर से। ओके, तो देवी जी सुबह सूरज फिल्म का जो गाना चलाया आपको बड़ा पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों ने फ़ोन करके हमें कहा कि सूरज फिल्म का गाना उनका बड़ा ही पसंदीदा है, तो वो सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सूरज शर्मा जी हमारे साथ ट्रियोले से साथ दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने हमें भेजा है, और एक बहुत खूबसूरत सी गणेश की तस्वीर आपने भेजी है, भगवान गणेश की। तो चलिए

आपका भी दिन शुभ हो ऐसी कामना हम करते हैं। और गाना चाहता है सभी सजादा परिवार के नाम। और ये सुंदर सा मैसेज आया है माला जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद माला जी, आपका भी दिन बहुत अच्छे से बीते, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। गाना जाता है आपके नाम और पूरे सुमारू परिवार के नाम, ऐसे प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लीला जी बौशेरी से हमें कॉल किया था, कभी कभार ऐसा होता है कि फिर आपकी आवाज़ उस तरफ से नहीं आई तो फ़ोन हमें काटना पड़ा, तो अफसोस की बात है। तो लीला जी चलिए अगला गाना जो है हम आपके नाम भी करते हैं, और चले इन खूबसूरत डेडिकेशंस के साथ खूबसूरत गाने भी यहाँ पर जोड़ते हैं, और इस अगले गाने में आप सभी को हम शुभ दिन कहेंगे। और यहाँ पर ये जो गाना है जाता है आप सभी के लिए, भूलिएगा नहीं 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251705 पर।

जी हाँ, दिन है बहार के, तेरे मेरे इकरार के। वक्त फिल्म का ये गाना, वक्त वक्त पर ऐसे गाने सुन लेने चाहिए, क्योंकि न जाने कितनी यादें इन गानों के जरिए ताज़ा हो जाती है ना। तो चले, जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, कोई ख़ास मौका है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनों के साथ, तो चले आपकी खुशियों में यहाँ पर हम भी शामिल हो रहे हैं इन खूबसूरत गानों के ज़रिए, इन खूबसूरत प्रोग्रामों के ज़रिए। और चले यहाँ पर अगला गाना वाकवा की शोभा जी आपके नाम हम करते हैं, आपकी ओर से आपके सभी दोस्तों के लिए, कि रे वाकवा में तो इतनी ठंड है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो चलिए, ऐसे बदलते मौसम में, ठंड के मौसम में आप अपना ख्याल ज़रूर ज़रूर रखिए। और अगला गाना जाता है सभी अगला गाना जाता है लक्ष्मण सिगोबिन जी आपके नाम, सभी सिगोबिन परिवार के नाम। थैंक यू सिलेक्शन को पसंद करने के लिए, क्लैम्फा वाकवा से आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुमी जी, मैं भी आपके साथ हूँ। लक्ष्मी जी बॉम्बू से, बिल्कुल लक्ष्मी जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, यहाँ पर आपका साथ है तो हम हैं, हम हमेशा कहते हैं आप हैं तो हम हैं। और आप जब जुड़ते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, तो मानो हमारे प्रोग्राम में भी चार चांद लग जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और अगला जो तराना है, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत है, आप सभी के नाम हम करते हैं। और यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये आया है, सुबह की रोशनी आपके लिए नई उमंग लाए, हर पल खुशियाँ लाए, यही मेरी दुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए। मदालबे से अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और गाना जाता है करुणा, अमृता और कविता के नाम आपकी ओर से। और चलिए, अभी के लिए ये जो अगला गाना है, हमारी ओर से आपके नाम हम करते हैं।

0: तो चलिए यहाँ पर डेडिकेशंस का जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। यहाँ पर नातिन खुशी रघुबर अपना जन्मदिन मना रही है। खुशी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपकी नानी श्यामा की ओर से। मामा देविका है, पापा राजीव है, मामू है सुधीर, मामी है अंजू, साथ में है ईशा, अवनीश, सभी रामतोहल परिवार और सभी रघुबीर परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे खुशी। शोभा जी तमारे से हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है सभी गोपाल सभी गोपाल परिवारों के नाम, और यही गाना शेला जी आपके नाम, आपके पति साजन के नाम और पूरे परिवार के लिए। और चलिए यहाँ पर एक और मैसेज आया है, इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सुमी जी, थैंक्स फॉर नाइस सॉन्ग्स, ओके, थैंक यू सो मच। ये मैसेज जो है माला जी की ओर से आया है, माला जरी जी जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच माला जी। यही गाना आपके नाम और सभी जरी परिवार के नाम हम करते हैं, और आपको भी शुभ दिन हम कहते हैं। यकीनन अपनों से बात हो जाती है तो दिन भी बड़ा अच्छा जाता है, सवेरे सवेरे पता चल जाता है कि हमारे अपने जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, और उनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अच्छाई की कामना करते हुए चले इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। और इसी गाने के साथ सुबह का नजराना का जो पहला घंटा है वो खत्म होने को चला। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। मिलेंगे हम आपसे सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस पर, और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपके मैसेजेस, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपन घड़ी मिला ल फजर के 8 बजल बा।

0: सबको के नमस्ते। संक्षिप्त समाचार सुना जा। आज बुध 8 जुलाई के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमिटी ऑफ कैबिनेट के पहला बैठक के अध्यक्षता करियन। इस समिति के जिम्मेदारी हुई फाइनेंस बिल 2026 के अंतिम चरण लेख पहुँचाए के। ये विधेयक अभिलेख पारित नहीं होल बाटे बखेर कई गो कदम पहला जुलाई से ही अमल में आनल गल है। ई जानल कि गल बरिस खातिर फाइनेंस एक्ट के 8 अगस्त 2025 के राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलल रहल आर ओकर एक दिन बाद ई गवर्नमेंट कैसेट में प्रकाशित हो रहल यानी 5 जून 2025 के बजट पेश करला के बा के 2 महीना बाद। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान काल राष्ट्रसभा में डुमिन लिपाय के स्मार्ट सिटी परियोजना के मुद्दा उठावल गल। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलन कि ई परियोजना में कई गो कमी बाटे। वो बतैलन कि स्मार्ट सिटी के दर्जा वापस ले परी विचार करल जात बाटे जबकि ई मामला में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जाँच वो जारी बाटे। प्रधानमंत्री ई विषय से जुड़ल दूसर सवाल के जवाब वो देलन जा। कालवे राष्ट्रसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ई हेल्थ परियोजना पर जानकारी दिलन जा। वो बोलन कि इस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में शामिल बाटे। वो आगे बोलन कि तकनीकी कमी बाटे ओकर पता लगाए खातिर आर ई सुधारे खातिर ई परियोजना ई बखत पायलट परियोजना है। डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट के 25 मिलियन रुपया से 45 मिलियन रुपया लेक बढ़ाई के सवाल परी स्वास्थ्य मंत्री बतैलन जा कि ई परियोजना के आगे बढ़ाई परी ऐसन करल जात बा काहे कि एकर चलत देश भर में भर्ती कार्रवाई चलावल जाए आर संगे संगे बाकी बचल जोन काम बाटे ओकरा पूरा करल जाए के चाही। जब मोटका पानी बरसेला तो देश के कईगो इलाका में पानी जमा होए के समस्या आगे आवेला। इस चुनौती से निपटे खातिर लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी काल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी पर एगो कार्यशाला आयोजित करलन जा। अडाप्ट एक्शन परियोजना के तहत ई पहल के AFDR यूरोपीय संघ के सहयोग मिली। ई परियोजना के लागू करे खातिर लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी नवा भर्ती करे के सोचत बाटे। वैश्विक स्तर पर विश्व कप 2026 खातिर काल रात राउंड ऑफ 16 खातिर अंतिम मैच खेलल गल। अर्जेंटीना के सामना भेल इजिप्ट संगे एगो तगड़ा मैच जोन में जीत भेल अर्जेंटीना के। वो इजिप्ट के 3-2 से हरैलक जबकि स्विट्जरलैंड आर कोलंबिया के बीच के मैच आखिर लेक ड्रॉ रहल 0-0। अंत में पेनाल्टी में स्विट्जरलैंड के जीत भेल। काल बिफे के रात के 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स के पहला मैच खेलल जाए फ्रांस आरी मोरक्को के बीच। तय रहल संक्षिप्त समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमने की आज्ञा दिया। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा। एमिलियन स्ट्रीट बुधोदो विलाज में नासी बरिस सके ससंजीज नवों के श्री राधानंद को गुजर गल हवन जनाजा। दिन के 3:30 पर ही उनकर घरे एमिलियन स्ट्रीट बुधोदो विलाज से उठावल जाए क्रिमिशन एट 3:30 PM। गजियाबाद रोड ओलीहुड नंबर 1 वाक

क्वा में 81 बरिस के का तो वैन के श्री अनिरुद्ध गंगा प्यासान श्री अनिरुद्ध गंगा प्यासान जे प्रेम नाम से जस्ती नानल जाथलन गुजरगल हवन माटी काल फजर के 9 बज के आधा पर ही उनकर घरे गजियावा रोड ओरिहुड नंबर 1 वाकवा से उठा के किरा करम खातिर थवा मामल के शमशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टुमोरो एट 9:30 AM कांगुलबा रोड श्री मेघोनिया में 80 बरिस के काथो वैताओं के श्री बाल्मिक बुधन जे ईश्वर नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माटी दिन के 1 बज के आधा पर ही उनकर घरे कांगुलबा रोड श्री मेघोनिया से उठा के किरा करम खातिर कांगो पाल शामुनी के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 1:30 PM थ्वाबुचिक थ्रियोले में 70 बरिस के स्वसंजी जोंके श्री परमानंद बुधराम जे फुफन नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरगल हवन माती 10 बज के आधा पर उनकर पत्नी चंद्रावती बुधराम के घरे थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठा के किरा करम खातिर थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एन 9:30 AM नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसलमा मोरियाल 3 कोहोमा डेल में 70 बरिस के 70 के श्री लक्ष्मी नारायण राम नारायण जे संजय नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पत्नी अमृता राम नारायण के घरे नंबर 14 एवेन्यू कॉन्फिये मोसलमा मोरियाल 3 कोहोमा डेल से उठा के किरा करम खातिर थोंक बॉके शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 2 PM जिरानियम लेन ला क्वाजे शिबेल में 82 बरिस के का तो वैदे जोंके श्रीमती प्रमरावती जगू पैराशी नाम जिंगूर आजे पुलू नाम से जस्ती रानल जातलन गुजरगल हवन माती दिन के 12 बज के आधा पर ही उनकर बेटा जाम जगू के घरे जिरानियम लेन ला क्वाजे शिबेल से उठा के किरा करम खातिर बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 9:30 PM बेचू लेन प्लेन डे रोश में 84 बरिस के कातों में 4 के श्रीमती सरस्वती बेचू पैदाशी नाम में पत और जे सती नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माटी दिन के 4 बजे उनकर पोता यशविन बेचू के घरे बेचू लेन प्लान डे हॉश से उठा के किरा करम खाते लावोचा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 4 PM लॉट नंबर 18 मोसलमा और जी फ्लाक में 42 बरिस के कारण 2 के श्री विकी गोबिन जे सिवालैन नाम से जस्सी नानल जाथलन गुजर कल हवन माती दिन के 2 बजे उनकर माँ गोइंदामा गोबिन के घरे लॉट नंबर 18 मोसलमा और जी फ्लाक से उठा के किरा करम खातिर रिश्मा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 2 PM गौदेनिया रोड बिलबाग में 74 बरिस के सुसन कातो जोंके श्री राजेंद्र देव पोहू जे चोल नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माती दिन के 12 बज के आधा पर ही उनकर घरे गौदेनिया रोड बिलबाग से उठा के किरा करम खातिर पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 9:30 PM कांगाहो सेंटर दे फ्लाक में 85 बरिस के 85 अंके श्री प्रेस राम सरन जे मिनिस बलहाम नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माती दिन के 12 बजे उनकर घरे कांगाहो सेंटर दे फ्लाक से उठा के किरा करम खातिर ग्रीष्मा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 9 रारोड लावोचुआ में 83 बरिस के 83 अंके श्री वेद व्रत जीतन जे वेद नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माती दिन के 11 बज के आधा पर ही उनकर बेटा वृतराज जीतन के घरे रोड लावोचुआ से उठा के किरा करम खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 9:30 AM नंबर 28 लाल बहादुर शास्त्री लेन जुभॉय में 90 बरिस के कातोवंजी जोंके श्रीमती लीलावती भगवान दीन जे राधा नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माती दिन के 1 बजे उनकर घरे नंबर 28 लाल बहादुर शास्त्री लेन जुभॉय से उठा के किरा करम खातिर बीगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 1 PM रारोड लुसिया सेवास्तोपोल में 57 बरिस के 57 अंके श्री गौतम गुली गुजरगल हवन माती दून के 2 बजे उनकर पत्नी रागिनी गुली के घरे रारोड लुसिया सेवास्तोपोल से उठा के किरा करम खातिर में जिनकाउ दिमास्क के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन एट 2 PM रारोड घोबियो न्यू ग्रोव में 79 बरिस के संजीज नवांके श्री लक्ष्मण रुसियावन जे सतीश नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजर कल हवन माती दिन के 2 बज के आधा पर ही उनकर बेटा आंतिश रुसियावन के घरे रारोड

चलिए, सुबह का नजराना के दूसरे घंटे में आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आज है बुधवार 8 जुलाई, और बुधवार को आपको तो पता ही है, दूसरे घंटे में होता है एक छोटा सा क्विज, एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, और बड़े ही प्यार से आप लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो चलिए, आज का हमारा क्विज बहुत ही सिंपल सा है। आज बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस अपना जन्मदिन मना रही है। ऐसे ये अभी की एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी 60 के दशक की फिल्मों से, जैसे कि दो कलियां इस फिल्म में नज़र आई थी, सूरज इस फिल्म में जो है नज़र आई थी। वहीं पर इनके करियर की पहली फिल्म बतौर एक्ट्रेस थी रिक्शा वाला, लेकिन ये जानी जाती है फिल्म खेल खेल में, दीवार, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी जैसे फिल्मों में अपने रोल के लिए। तो आपको हमें इस

0: एक्ट्रेस का नाम बताना है आज कौन है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है 8 जुलाई को। चलिए यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बढ़ते हैं पहले कॉल की ओर। हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार,
1: कैसे हो समाचार?
0: सब ठीक भाई, आप कैसे हैं?
1: ठीक है, विजय बंदन है काबिज से।
0: जी भाई विजय जी, बताइए क्या है जवाब?
1: नीतू कपूर, नीतू सिंह।
0: कोई फिल्म इनकी आपको बहुत पसंद है, कुछ देखा है आपने? हाँ, कोई फिल्म?
1: हाँ, बहुत है, अमर अवर अंतोनी देखा है।
0: अच्छा,
1: सब फिल्म रिक्शा वाला में।
0: ओके,
1: फिल्म देखा है, सब अच्छा है फिल्म।
0: ओके, बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत अच्छा लगा।
1: शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी, नमस्ते। ऐसा लग रहा है आज का सवाल बड़ा आसान है, क्योंकि इतने सारे फोन कॉल्स यहाँ पर आ रहे हैं कि हम क्या कहें। चलिए मिलते हैं यहाँ पर अगले श्रोता से। हेलो नमस्कार।
2: नमस्ते बहन
0: जी। नमस्कार इंदिरा जी, कैसी है इंदिरा जी?
2: ठीक है।
0: ओके, क्या है जवाब इंदिरा जी?
2: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह
2: जवाब एकदम सचमुच, जैसे आपने ये नाम लिया तो मैंने सोच लिया नीतू सिंह।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, आपने हमें फोन किया और आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है। ओके ओके,
2: खूब पसंद करती थी।
0: चलिए अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद, बाय, शुभ दिन,
2: बाय
0: बाय। चलिए एक और कॉलर की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
3: नमस्ते सुमी जी।
0: नमस्ते जी।
3: तो मेरा जवाब है नीतू सिंह जी।
0: पहले अपना तो नाम बताए।
3: देवी हूँ।
0: कैसी है देवी जी?
3: ठीक हूँ।
0: ओके, और जवाब तो दे दिया, बताइए कि नीतू सिंह के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको?
3: बचपन की वो फिल्म दो कलियां अच्छा लगता
0: है। उनकी उनकी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट।
3: इतने सारे फिल्म है।
0: ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपने फोन किया और आपने जवाब
3: दिया। कपूर जी की पत्नी है ना
0: जी।
3: ओके
0: बाय, धन्यवाद। चले तो आज जिस एक्ट्रेस का नाम हम ढूंढ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे जवाब, थोड़ा सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जो है अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां पर ये 60 के दशक में नज़र आई थी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। सूरज, फिर 10 लाख, दो कलिया, वारिस और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों में, लेकिन खासकर इन्हें याद किया जाता है दो कलिया जैसी फिल्मों में, जहाँ पर इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रोल निभाया था। और 70 के दशक से इन्होंने जो है फिल्मों में काम करना शुरू किया था। और एक गाना था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, यादों की बारात, इस फिल्म में, इस फिल्म के इस गाने में ये नज़र आई थी और इनके रोल को बहुत ही पसंद किया गया था। और उसके बाद 70 के दशक में इन्होंने काफ़ी फिल्में जो है की थी। चलिए एक और कॉलर की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार।
4: नमस्कार
0: जी, कौन है?
4: मैं हूँ बसंती।
0: कैसी है बसंती जी?
4: मैं ठीक हूँ।
0: ओके,
4: आंसर इज नीतू सिंह। जब वो छोटी थी बच्ची थी, तो बहुत अच्छे से अपना कारगुजार निभा रही थी।
0: ओके,
4: नीतू सिंह जी फिल्म देखी है, उसमें था अमर अकबर और अंतोनी ना।
0: ओके
4: जी, यही।
0: बहुत बहुत धन्यवाद बसंती जी आपके जवाब के लिए, शुभ दिन कहेंगे आपको। चलिए एक और श्रोता की ओर हम बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
5: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन है?
5: मैं हूँ अमृता, उकुले से।
0: कैसी है अमृता जी?
5: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आपकी आवाज से बोल रहे हैं आप बिल्कुल ठीक है। जो हम लोगों को हंसाते रहते हो।
0: मैं हमेशा कहती हूँ कि हंसते ही रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि हंसने से ना आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाती है, क्योंकि आप अपनी परेशानियों के बारे में बात करेंगे तो परेशानियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। हाँ वही,
5: दूसरों को दुखी भी कर देती है।
0: बिल्कुल, और उससे ज्यादा हम दुखी होते हैं, तो क्यों दुखी रहना है ना। अच्छा बताए क्या है जवाब अमृता जी?
5: फिल्म दो कलियां, उसके जो छोटा बचपन का गीत बच्चे मन के सच्चे, वो तो कितनी ही प्यारी है।
0: ओके जी, चलिए। लेकिन आपने अभी नाम नहीं बताया किनका जन्मदिन है, आपने फिल्म का नाम बता दिया, गाने बता दिए।
5: ओके जी, के
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी,
5: धन्यवाद आपको भी, शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको भी। और चलिए यहाँ पर निवग्रोव से मीला जी लिखती है, मेरा जवाब है नीतू सिंह। चलिए आपके जवाब के लिए धन्यवाद। माला जरी जी लिखती है कि मेरा जवाब, उनका जवाब भी है नीतू नीतू सिंह, एक और जवाब आया है यहाँ पर अनीता जी की ओर से, कहती है सुमी जी जवाब है नीतू सिंह। ऑल राइट, नीतू कपूर आपने लिखा है, चलिए कपूर कहे सिंह कहे सेम ही है। सरिता जी कटरबोन से लिखती है मेरा जवाब है नीतू सिंह। तो चलिए, इतने सारे फ़ोन कॉल्स और इतने सारे मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और बिल्कुल सही जवाब है नीतू सिंह। चलिए एक और कॉल हम लेते हैं। हेलो नमस्कार।
1: हेलो
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी,
0: कैसे हैं अली जी?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक। और क्या है जवाब?
1: जवाब है बिल्कुल नीतू सिंह।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जोड़ना चाहेंगे नीतू सिंह जी के बारे में?
1: मैंने दूसरा आदमी देखा, याराना देखा के खेल में, दो कलियों।
0: ओके तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अली जी आपके जवाब के लिए। बिल्कुल आज तो सभी के सभी कॉलर ने और सभी के सभी जितने भी मैसेजेस हमें मतलब कि जवाब मैसेजेस के जरिए मिले, सभी ने सही जवाब दिया। बिल्कुल आज नीतू सिंह जी हैं, नीतू सिंह कपूर जो है अपना जन्मदिन मना रही हैं। 8 जुलाई 1958 को इनका जन्म हुआ था। लेट 60s से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इनकी शुरुआत हुई थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। इनकी पहली फिल्म एज एक्ट्रेस थी रिक्शा वाला, और उसके बाद बिल्कुल कभी कभी खेल खेल में, अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश, जानी दुश्मन, काला पत्थर, याराना जैसे फिल्मों में ये नज़र आई, और आज तक जो है ये फिल्मों में नज़र आती हैं। ऋषि कपूर साहब के साथ इनकी शादी हुई है। इनका बेटा रणवीर जो है, रणवीर कपूर जो है, वो भी फिल्मों में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। और ऋषि कपूर साहब के साथ इनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ही लोगों ने बहुत बहुत पसंद की, और आज तो हम इन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी देख हैं। और चलिए आप सभी के साथ के लिए धन्यवाद। इस क्विज में आपने भाग लिया इसके लिए धन्यवाद। और यादों की बारात फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम हम करते हैं। इस गाने में नीतू सिंह नाचते हुए नजर आई थी, और इस गाने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई थी। तो ये गाना आप सभी के नाम, लेकर हम दीवाना दिल, आशा जी, किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में। और यादों की बारात फिल्म तो कमाल की थी ही, फिल्म के गाने भी लाजवाब थे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए यहाँ पर नीतू सिंह जी का बर्थडे है तो हमने सोचा क्यों ना एक दो गाने इन पर पिक्चराइज्ड हो जाए। सो अभी के लिए एक और तराना इन्हीं पर पिक्चराइज्ड खेल खेल में इस फिल्म से लिया गया। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह,

चलिए खेल खेल में फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना जो पिक्चराइज्ड हुआ था नीतू सिंह और साथ में थे ऋषि कपूर। और चलिए खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है इसे हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पर इस अगले गाने के साथ जो है हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं और आपका साथ हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ज़िंदगी बस दो पल की होती है और ज़िंदगी के हर एक पल को हमें खूब जीना चाहिए। क्योंकि जो बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता है।

0: जी से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा।

आप्रवासी घाट के यूनेस्को लिस्ट में शामिल करा गया रहा और आप्रवासी घाट आज से 20 बरिस पहले बनल एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज के कार्यक्रम में हमने देखब जा गिरमिटिया मजदूर यानी हमने के पूर्वज लोग के काम करे के कौन शर्त रहा। 18वीं और 19वीं सदी में काम करे के शर्त बहुत कड़ा रहा, खासकर मजदूर वर्ग लोग खातिर। दूसर कॉलोनी की तरह मॉरिशस में भी खेत के मजदूर लोग के काम करे के अधिकार पर कानून में खास प्रावधान नहीं रहा। मॉरिशस में जोन कानून रहा उमें मजदूर के अधिकार ओकर सम्मान ओकर स्वास्थ्य पर बहुत कमती ध्यान देवल गल रहा। एक तरह से देखब सा त बोले के बा कि काफ़ी जुल्म हो रहा उन लोग पर हमने के पूर्वज लोग संगे। तीन को सबसे बड़ा जो नाइंसाफी हो रहा वो है पहला एक दिन जे आप बीमार होइला या काम नहीं करला तो उ दिन के पगार कटा जाए, डबल कट सिस्टम में कर नाम रहल। दूसरा रहल दिमास के दिन भी काम करा, जब सब कोई 6 दिन काम करियन सा एक सप्ताह में तो मॉरिशस में या दिमास के दिन भी काम करे के पड़े। और तीसरा रहल कोनो काम ठीक से जे पूरा नहीं होई तो मजदूर लोग के अपमानित कराल जात रहल, उ लोग के मालथे कराल जात रहल। ये सब नाइंसाफी औपचारिक तौर पर होवे। डबल कट सिस्टम के बहुत बड़ा असर रहत रहल, कहे कि जब ई डबल कट सिस्टम चली तो आपके जो 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट रहल अब उ कबो खत्म ही होई के नाम नहीं ले। डबल कट सिस्टम के मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में और 2 दिन जोड़ देवल जाए। अब सोचा तोहरा बीमार होई के भी अधिकार नहीं रहल, सिक लीव नहीं बा, और जे आप छुट्टी लेला तो आपके 2 दिन के पगार कटा जाए और उधर आपके कॉन्ट्रैक्ट के बढ़ा देवल जाए। एगो मजदूर के अधिकार नहीं रहल अपन मन से अपन ढाका छोड़ के दूसर जगह चले फिरे के। तोहरा चाही हमेशा प्यामिशन लेवे के, इजाजत लेवे के, हियाँ से हुआ जाए के, धरला बुझे हो के तोहरा दुआ नहीं रहल। और अपन मन से जे एगो जगह से आप दूसर जगह गईला तो ई एगो जुर्म रहल, और जे आपके पावल गल खास तौर पर अपन टिकट के बिना तो तोहरा बिना जीजे कर ले कैद भेजल जात रहल। वेग्रेंट डेपो नाम के एगो कैद रहल ग्रैनरिविया नॉर्वेस्ट में, आज भी ई जगह बा। और कोनो दिन देखब जा वेग्रेंट डेपो के इतिहास पर। एगो मजदूर के पगार 1850 के जमाना में रहल 10 से 12 शिलिंग एक महीना 3 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट खातिर। जब वो मजदूर लोग के एनरजिस्ट्रेमेंट हुए इमिग्रेशन डेपो पर त फोटो उस सब के पैसा मतलब कि 1 पाउंड स्टर्लिंग उ लोग के तनख्वाह से ही कटात रहल। त देखब सा त उ लोग के 2 बरिस के तनख्वाह से बहुत कुछ नहीं बचत रहल। भले ही मजदूर लोग के राशियों पानी मिलत रहल, काम करे के कपड़ा चिकित्सा सेवा, लेकिन एकर से उ लोग के ज़्यादा सहायता नहीं मिले। और देखब तो चीनी उद्योग के चाभी मजदूर ही रलन सा। 1871 से 1910 तक गिरमिटिया के समाप्ति तक कॉलोनी की जनता जन पॉपुलेशन टोटल रहल उमें 70% मजदूर ही रहल। तो देखत हवा कितना ताकत रहल मजदूर लोग के, लेकिन शुरू में उ लोग के खूब दबावल गल, उ लोग के खून चुसल गल। लेकिन आगे चल के जब देखब तो मॉरिशस के जो नक्शा बा यही मजदूर लोग बदल दिलन सा। ई गिरमिटिया मजदूर लोग जब परमानेंट रूप से स्थायी रूप से मॉरिशस में बस गए लन सा तो देश के विकास कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचल ई बात कोनो राज नहीं है, सब कोई जानेला। कार्यक्रम के आप ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा, नमस्ते।

चलिए किरण जानकी जी को धन्यवाद देते हैं हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी जानकारियां वो हमें देती है इसके लिए भी। और चलिए इसी के साथ सवेरे के 8:56 ऑलरेडी होने को है। सवेरे के 6 बजे से अभी तक आपका साथ रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं, प्रार्थना यही करेंगे कि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते। 9 बजे जो है आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे रत्ना की प्रस्तुति में। आपको याद दिला दे, इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो है आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर।

0: साथ ही एमबीसी प्ले इस ऐप पर भी। तो चलिए जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे, यानी कि 10 बजे आपसे मिलने फिर लौटेंगे भक्ति धारा इस कार्यक्रम को लेकर। अभी के लिए इस खूबसूरत भोजपुरी गीत के साथ आज के प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: पल आपके साथ।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है याशना, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते याशना।
2: नमस्ते रत्ना, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। आप सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले

0: ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ, लेकिन कई कदम पहली जुलाई से अमल में लाए जा चुके हैं। ये जान लें कि पिछले वित्तीय साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी और उसके एक दिन बाद ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हुआ था, यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कल राज्यसभा में दुमेनलीपाय की स्मार्ट सिटी परियोजना का मुद्दा उठाया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि इस परियोजना में कई कमियां पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी का दर्जा वापस लेने पर विचार किया जा रहा है, जबकि इस मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जाँच भी जारी है। प्रधानमंत्री ने इस विषय से जुड़े अन्य सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने इस परियोजना के लिए यहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा संचालित इस परियोजना के लिए 573 मिलियन रुपए लागत की 97 एकड़ जमीन और उस पर बनी इमारतें प्रदान की थी, लेकिन वित्तीय प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं हुआ। मात्र 4 विलास और 1 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया गया और वो भी बहुत देरी के साथ। रिविया जुहापा के बाजार की परियोजना से जुड़े मामले में जिम्मेदारियों की पहचान करने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रांतीय प्रशासन मंत्री रंजीव उचित ने कल राष्ट्रसभा में की। इस जांच आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग में राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्रालय के प्रतिनिधि, एक पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव तथा एक स्वतंत्र इंजीनियर भी शामिल होंगे। ये मामला 2003 में दिए गए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है, जिसकी शुरुआती लागत 51 मिलियन रुपए से कुछ अधिक थी। बाद में ये मामला लंबे समय तक आर्बिट्रेशन विवाद में फंसा रहा और अंत में इसकी कुल लागत सरकार को 580 मिलियन रुपये तक पहुंच गई। गौरतलब है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पंज सिटी की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। अडाप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग प्राप्त होगा। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल रात राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ एक तगड़ा मैच, जिसमें जीत हुई अर्जेंटीना की। उसने इजिप्ट को 3-2 से हराया, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनल्टी में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। कल गुरुवार रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। और विदेशी समाचारों में, केरला में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिट्टी का बहाव इतना तेज रहा कि लोग वहां से बच नहीं पाए और मिट्टी तले दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी रखी जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: रेडियो मॉरिशस के लहरों पर आज की चर्चा कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 8 जुलाई बुधवार का दिन, मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आप सभी स्वस्थ होंगे, बस यही आशा रखते हैं। और एक घंटे के इस सफर में बिल्कुल आज हम बात करेंगे सेहत पर। हर बुधवार के दिन हम सेहत पर कुछ ऐसी ज़रूरतमंद बातों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हम आपको बताते चले, 10 जुलाई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड क्रॉनिक डिजीज डे अवेयरनेस। बिल्कुल ये दिन आप सभी को एक तरह से अवेयर करता है कि क्रॉनिक डिजीज़ क्या है, उसे किस तरह से समझना चाहिए। और इस पर आज के इस कार्यक्रम को आधारित रखेंगे। बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। टेक्निक पर हमारे साथ है यूसुफ, साथ है हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा बानो और हमारी प्रोड्यूसर है रत्नमाला मंगरू जी। तो बेशक आप हमारा साथ दीजिएगा। इसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं और MBC के तीसरे चैनल पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को दोबारा से आप सुन पाएंगे दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते चले। आज हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट सी केयर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर सुबीर चंद्र दास जी। डॉक्टर सुबीर, आपका पुनः स्वागत करते हैं।
2: गुड मॉर्निंग मॉरिशस।
1: और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़े हैं एक बार फिर आपसे। और डॉक्टर जी, जैसे 10 जुलाई को क्रॉनिक डिजीज अवेयरनेस डे मनाया जाएगा, तो ये क्यों मनाया जाता है और इसकी आवश्यकता क्या है?
2: रत्ना जी, पहले तो आपको धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। ये जो चैप्टर है नेशनल क्रॉनिक डिजीज़, कोई भी आज के डेट में मेडिसिन में है, ही और शी हैज़ टू नो अबाउट, ये क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या हुआ कि करीब 20 से 25 ईयर्स बैक USA में एक रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जब उन लोगों ने देखा कि जो बेसिक लोड एक गवर्नमेंट को लेना पड़ता है फॉर पेमेंट ऑफ उनके बिल्स वगैरह, तो देखा जाता है कि वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स।

0: सॉरी, जो जिसके लिए हम लोग ऑलवेज तैयार रहते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। बट जनरली उन्होंने यही पाया कि सबसे ज़्यादा जो हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो सिर्फ क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से होता है, एंड 84% ऑफ द डेथ्स इन द होल वर्ल्ड हैपेंस बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक डिजीज।
1: ओ
0: सो ये आज के डेट में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे उनको बेसिक नीड्स मिलना शुरू कर दिए, एंड बेसिक नीड्स के साथ अब्यूज़ भी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: जब आपको बेसिक नीड्स मतलब आपके रहने की जगह, नॉर्मल खाने का, ये सब चीज़ें आपको मिलने लग जाता है, तो फिर आपके अब्यूज़ बढ़ने
1: बढ़ते
0: लग
1: हैं।
0: जाते
1: सही
0: हैं।
1: बात।
0: आई विल नॉट से दैट द होल प्रॉब्लम इज़ ऑल ओनली बिकॉज ऑफ अब्यूज़। कई सारे मुद्दे होते हैं, जैसे आपके एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग होती है, आप कैसे आपको देखभाल करते हो, ये हर चीज़ मायने रखते हैं आपको एक क्रॉनिक डिजीज़ में
1: कन्वर्ट
0: कन्वर्ट होने
1: करके।
0: में। एंड आपको तजुब होगा जान के, इंटरनेशनली नॉट इन मॉरिशस अलोन, 10 लोग यदि चल रहा हो उसमें 6 लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ है।
1: ओहो, मतलब ये एक बहुत ही बड़ा।
0: बहुत ही बड़ा हिस्सा है, 6 लोगों को, और 4 लोगों को 2 क्रॉनिक डिजीज़ है, एक नहीं दो दो क्रॉनिक डिजीज़ है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ ऑलमोस्ट पेयर में आते हैं। तो एक आते हैं तो उसके साथ साथ और भी उसके
1: कनेक्टिंग उसकी
0: प्रॉब्लम्स,
1: फैमिली आती है साथ में।
0: फैमिली, उसके जो डिसऑर्डर्स हैं, उसके जो और जो डिजीज़ हैं,
1: हाँ
0: सब
1: हाँ
0: एक के साथ एक शुरू हो जाता है उसकी वो करना। तो हमारे लिए आज के डेट में जो हम लोग इसको ना NCD बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हमारे डिजीज़ को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया, एक है कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे आपके इन्फेक्शन ये सब हो गए, और एक हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो बुके ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो इतना बड़ा है कि इफ़ हमने उसके प्रॉपरली कुछ भी देखभाल करें तो नॉट ओनली इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो एब्सटेनेंस फ्रॉम जॉब होता है, ये एक मार्कर होता है कि कितने छुट्टी लेते हैं लोग, उसमें भी दिखा गया कि करीब 80% एब्सटेनेंस फ्रॉम जॉब इज़ बिकॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ एंड इज कॉम्प्लिकेशंस। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एंड हम लोगों को इसके बारे में जानना और इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: तो डॉक्टर जी, यहाँ पर तो हमारे जो ऑडियंसेस है वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब क्या है।
0: अच्छा, तो जैसे कोई भी डिज़ीज़ आपको विद इन 15 डेज आपको दिख जाता है तो उसको हम एक्यूट बोलते हैं। जैसे आप पकड़ लो, आपको इन्फेक्शन हुआ गले
1: गले
0: का,
1: का। हाँ
0: कई बार सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, मतलब लूज मोशन हो रहा है, आपको पकड़ लो फ्रैक्चर हो गया, तो ये एक्यूट प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब जितने सारी चीज़ें जो आपको एकदम ही इमीडिएटली दिखता है
1: हाँ
0: वो एक्यूट डिजीज है,
1: ओके।
0: और क्रॉनिक डिजीज जो है ये एक दिन में आपको उसका रंग नहीं दिखाता, तो वो
1: अच्छा।
0: आपके साथ चलते रहते हैं कई साल कई महीने तक, एंड देन एट सम पॉइंट जब वो एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं आपको उसके सिम्टम्स देखने लग
1: दिखने
0: जाते
1: लगते
0: हैं।
1: हैं।
0: और बेसिकली आज के डेट में हम लोग जो इंटेंसिव केयर में जो देखते हैं वो एक्यूट ऑन क्रॉनिक देखते हैं, जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें एक्यूट प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं।
1: ओहो।
0: जैसे पकड़ लो एक बंदा डायबिटिक है, उसके चलते हुए उसको एक दिन एक्यूट एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होते हैं, जैसे जो डायबिटीज़ को प्रॉपरली नहीं कंट्रोल करते हैं, मेनली इंसुलिन जिनको लेना होता है उनमें कई बार जैसे इन्फेक्शन हो गया या कुछ हो गया, या इन्होंने प्रॉपरली इंसुलिन को मेंटेन नहीं करा,
1: जी
0: लेने भूल गए, या
1: जी
0: लंबे फास्टिंग कर लिए, ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे मॉशर्स में लोगों की फास्टिंग करने की बड़ी आदत है, तो आप इनको एक्यूटली देखते हो, बट दीज आर एक्यूट ऑन क्रॉनिक,
1: मतलब ये डेंजरस भी हो
0: डेंजरस
1: सकता है।
0: डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग होता है, दैट इज द वे दे डाई। जैसे आपको रेनल फेलियर है, किडनी फंक्शंस अच्छे नहीं है, तो ये ऐसे चलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, एक दिन पता चला उनके पोटेशियम

0: कैल्शियम लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया
1: है,
0: किसी भी कारण से हो सकता है, कोई ज्यादा आपने पोटेशियम रिच खाना ले लिया, जैसे हमारे बनान होते हैं, कोकोनट जूस, फिर एक वो यहाँ पे एक फ्रूट मिलता है जिसको कहते हैं स्टार फ्रूट,
1: ड्रैगन फ्रूट जो है,
0: स्टार फ्रूट,
1: कारम्बोल,
0: ये सब फ्रूट्स में बहुत हाई लेवल पे पोटेशियम होता है. तो जिन लोगों पे क्रॉनिक डिजीजेस है, मेनली रेनल फंक्शंस जिनके गड़बड़ है, इन लोग यदि सडनली इसके ज्यादा सेवन कर ले तो दे कैन हैव ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन.
1: रीनल फेलियर भी हो सकता है.
0: रीनल फेलियर नहीं, उनके हार्ट बंद हो सकता है, बिकॉज वो जो पोटेशियम के लेवल जब बढ़ जाते हैं
1: एकदम से शूट अप होता
0: है, तो आप उसको इमीडिएटली एक्ट नहीं करेंगे तो वी लूज द पेशेंट.
1: यानी ये सारी छोटी छोटी
0: चीजें हैं जो आप थोड़ी सी ध्यान रखें तो यू कैन मेक ए बेटर लाइफ.
1: ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये सही मात्रा में सही ढंग से अगर लोगों तक पहुंचाई जाए कि कौन से अक्यूट डिजीज में या कौन से क्रॉनिक सिचुएशन में आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो आपके सेहत को बिल्कुल घातक हो सकता है. और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं, हम इस कार्यक्रम को आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज़ पर, क्योंकि 10 जुलाई को हम मना रहे हैं क्रॉनिक डिजीज़ अवेयरनेस डे. और इसी के साथ हम ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन क्रॉनिक बीमारियां कौन सी है और मॉरिशस में इसमें मतलब कौन सी ज़्यादा पाई जाती हैं?
0: सो मॉरिशस भी दुनिया से बाहर नहीं है. तो एक जो अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स है
1: जी,
0: इट इज़ टेलिंग विद इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स. सो दिखा गया कि सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट क्रॉनिक डिजीज है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होता है, जो आपके दिल की बीमारी होते हैं. और उसके बाद है डायबिटीज़, जो जावेद कहते हैं यहाँ पे. सो दीज आर टू कॉमनेस्ट क्रॉनिक डिजीजेस
1: जो वर्ल्ड ओवर
0: है. और मॉरिशस में करीब 19-20% पॉपुलेशन ऑलरेडी डायग्नोज डायबिटिक है. प्री डायबिटिक और भी 20-25% होंगे. तो कुल मिला के करीब 48-49% लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज की
1: उस
0: रेंज में हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो इट्स अ मैसिव
1: नंबर है. बिल्कुल.
0: और वैस्कुलर डिजीज जैसे हार्ट डिजीज, वो भी अराउंड 24-25% वैस्कुलर डिजीजेस है. मैं एक बार देख रहा था उनके जो स्टैटिस्टिक्स जो हमें मुआयना किया गया था, 2021 की स्टैटिस्टिक्स है, वी डोंट हैव द रीसेंट मोस्ट, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. उसमें करीब करीब 84% ऑफ द डेथ इन मॉरिशस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर, द कॉज इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें एक बहुत ही भारी संख्या जो है ना आपके ये हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रेनल फेलियर, ये इनका जो बुके हैं, दिस इज द मेन कॉज. एंड कंट्री हैज गॉट एवरीथिंग गियर्ड अप फॉर दिस, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत सक्रिय है ये सब चीज़ों में, अवेयरनेस करते रहते हैं. आपके मुझे पता है इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे ये अर्ली डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे हैं.
1: बिल्कुल.
0: बट देखिए, सब कुछ गवर्नमेंट कर सकता है, लेकिन लोगों में ये जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है,
1: रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत ज़रूरी,
0: क्योंकि आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो, एट द एंड आप ही के बॉडी सफर करने वाला
1: health,
0: है.
1: बिल्कुल. आप ही की हेल्थ आपको दाव, आप
0: और
1: दाव
0: कोई भी सिस्टम जब इतना मैसिव लोड ऑफ क्रॉनिक डिजीज होगा ना
1: जी,
0: तो अच्छा नहीं कर सकता. क्योंकि आप एक्यूट डिजीजेस को जो आप ठीक करते हो तो उसके रिजल्ट बहुत सुंदर है.
1: सही.
0: बट क्रॉनिक डिजीजेस, वन थिंग बेस्ट इज दैट यू कैन कंट्रोल देम अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट.
1: बिल्कुल.
0: नॉट ऑलवेज, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जो आप अपने हैबिट्स, अपनी मेथड्स ऑफ लिविंग को यदि आप ठीक करते हैं,
1: आपकी
0: लाइफस्टाइल को जो ठीक करते हैं, यू कैन एक्चुअली मॉडिफाई लॉट ऑफ दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसको हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क कहते हैं.
1: बिल्कुल.
0: जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं. हम जब और चर्चा में जाएंगे हम उसके बारे में विस्तार से बताएंगे. बट दिस इज समथिंग विच नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास.
1: होता है उसी दिन.
0: नहीं, मैं कह रहा जैसे ये जो आपको अवेयरनेस लाना है, ये स्कूल से शुरू होना चाहिए. जो बच्चे हैं
1: आदत
0: वो सबसे आसान होता है जिनको ठीक करना.
1: बिल्कुल.
0: और आपको

0: उसी टाइम पे आपको एक्ट करना चाहिए, उनको जो एडवाइसेस देना चाहिए, क्लासेस के कैरिकुलम को बेटर करना चाहिए जिसमें हेल्थ की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होनी चाहिए, ताकि लोगों को सबको बिना बायोलॉजी पढ़े भी उनको अपने इम्पॉर्टेंट जीने के लिए क्या क्या चीज़ें ठीक रखना चाहिए उसके बारे में उनको एक
1: गाइडेंस
0: हो जाए। और ये बच्चे से जब बड़े होते रहते हैं, एक बार उन लोग सिखाएंगे तो दे विल नॉट डाइवर्ट,
1: ऑफ ट्रैक नहीं होंगे। सही बात,
0: इससे इस कंट्री के बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा।
1: यानी बचपन से ही आदत बनानी है कि हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आपको बनाए रखना
0: है,
1: क्योंकि ये बहुत जरूरी डॉक्टर जी बता रहे हैं कि बिल्कुल जब बीमारी डिटेक्ट हो जाए और अब आप उस पर एक्शन लें तो हो सकता है कि आपको उतना फायदा ना हो, पर जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि अगर हम पहले से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, आदत बनाएं कि हमें हेल्दी रहना है, ऐसा माइंडसेट बनाए कि हम जो खाते हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं, और जिस प्रकार से डॉक्टर जी हमें समझा रहे हैं ये बचपन से आदत बनाना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज अवेयरनेस डे पर, और हम जरूर जानना चाहेंगे डॉक्टर जी से, डॉक्टर जी साइलेंट किलर किस बीमारी को कहा जाता है और कौन कौन क्रॉनिक डिजीज इस लिस्ट में शामिल होती हैं?
0: बहुत अच्छा, देखिए ये एक सॉर्ट ऑफ मेथड्स लाइक ये वर्ड्स जो है ना बड़ा कैची होता है इसका, ये WHO स्टार्टेड दिस यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। इसका कारण ये रहता है कि हम लोग जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाए ना तो दिमाग में रह जाता है। साइलेंट किलर्स का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसके साइंस एंड सिम्टम्स आपको अर्ली दिखता नहीं है इफ़ यू डोंट ट्राई टू फाइंड इट आउट।
1: बिल्कुल,
0: ओके,
1: बिल्कुल।
0: तो आप इस लिस्ट में सबसे पहले होता है ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन इज अ वेरी वेरी स्लो किलर, और ब्लड प्रेशर यदि इवन 4 से 5 मिलीमीटर भी बढ़ता रहता है ना, 6 मिलीमीटर भी बढ़ जाता है आपकी बेस लाइन से, आपको नॉर्मल सिम्टम्स दिखता है। आपको शायद थोड़ा सा हेडेक होता है, जो सब बच्चे में भी हो सकता है, कई बार नेक पेन्स, दिस दैट, बट यू डोंट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू देम, वो ऐसे ही चलते रहते हैं। और ऐसे ही क्या होता है कि ये साइलेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ से मे बी 10 ईयर्स लेटर, जब इसने आपकी वेसल्स, आपकी किडनीज, आपकी आँखें, आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह में उसके इफेक्ट आ जाता है, तो उसके इफेक्ट आपको ऑब्वियसली दिख जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ब्लड प्रेशर आज के डेट में एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोलेबल किलर है। हम लोग डायबिटीज, बिकॉज दिस कंट्री हैज गॉट डायबिटीज इन सो मच ऑफ अबंडेंस, डायबिटीज इज ऑल्सो अनदर स्लो किलर। मेनली जो type 2 डायबिटीज होता है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफाइबल डिजॉर्डर्स है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप उसको, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस को आप वेट करवा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसको, आपकी यू कैन मेक योर लाइफ मच बेटर। सो डायबिटीज इज समथिंग विच दिस डेज ऐसा होता है कि आप प्री डायबिटिक बोल के एक टर्म बहुत चल रहा है आज के डेट में, तो उसका मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हो तो आपके जो नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो भी कम पड़ जाता है, तो सिस्टम एक हाई रेगुलेटेड शुगर पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत शुगर की इंटेक हर रोज हो रहा है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे तो मेजर सोर्सेज ऑफ शुगर क्या है, ये जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेप्सी कोला, दिस चॉकलेट्स, आपके कोई भी आप आज के डेट में जो बाजार से कोई भी लेते हैं, बच्चों को दिया जाता है, जो द किड्स फूड्स, दे आर ऑल फुल ऑफ शुगर्स। सो व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स ए हैबिट, और ब्रेन को शुगर बहुत पसंद है, तो आप इसका एक लत लग जाता है, तो जिसको आपको लगता है कि एक थोड़ा सा और ले लेता हूँ, सो छोटे से ही आप देखोगे कि शुगर इज द मोस्ट एडिक्टिव थिंग विच इज इन योर लाइफ। छोटे से आप देखोगे, घर पे कोई आते हैं तो बच्चे रोते तो एक चॉकलेट दे दो तो खुश हो जाता है, दिस इज शुगर बिकॉज द ब्रेन लव्स इट।
1: यस,
0: आइसक्रीम्स जो भी चीज आते हो सब शुगर ही है।
1: ट्रू,
0: और शुगर इज, दैट इज द रीजन इंडस्ट्री ऐसे बनाया गया कि लोगों की लत लगानी

0: के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है एंड यू नीड टू बी वेरी अवेयर, नहीं तो आपके ये दिस यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट.
1: ट्रू.
0: आप नहीं जान के भी इतने शुगर इंटेक कर लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं मैं तो शुगर लेता नहीं हूँ, लेकिन आपको शुगर लेने की जरूरत नहीं है. आप जो और चीज़ें ले रहे हैं सब में शुगर है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: आपने कोल्ड ड्रिंक्स लिए उसमें शुगर है, कुकीज़ लिए उसमें शुगर है, आपने आइसक्रीम लिए उसमें शुगर है, वॉट एवर यू आर टेकिंग हैज़ गॉट ए शुगर. सो आपके एक हद के बाद द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है वो रेसिस्टेंट होने लग जाते हैं. वो शुगर को समझ नहीं पाते कि इतना हाई शुगर है. सो दे डोंट सीक्रेट इन ए बिगर अमाउंट. कई सारे और डिजीजेज है प्लस जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होता है
1: जी.
0: जैसे आप ये जानना बहुत जरूरी है. जैसे आपने साइलेंट नन ऑफ देम आर एब्सोल्युटली अलोन. तो जो बंदे हाइपरटेंसिव होता है उन पे कई हद तक अराउंड 60-66% ऑफ देम आर सीन टू बी डायबिटिक इन द लेटेस्ट स्टेजेस.
1: well.
0: और जो प्रॉब्लम्स ब्लड प्रेशर के हैं वो प्रॉब्लम्स डायबिटीज हो तो दोनों मिलके एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं.
1: True.
0: जो मैं कह रहा हूँ एंड रिजल्ट तरीका अलग अलग है बट एंड रिजल्ट सेम ही है. हाइपरटेंशन से भी आपकी किडनी फेल होता है, डायबिटीज से भी आपकी किडनी फेल हो जाता है.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: आप देखेंगे जो सबसे बड़ा चीज हम बात करेंगे थोड़ी देर में वो है मोटापा.
1: ओबेसिटी
0: इट इज द बिगेस्ट एपिडेमिक इन द होल वर्ल्ड. Almost 72-78% population in the whole world is obese.
1: Going through this, yes, बिल्कुल.
0: And because WHO ने क्या करा, जो obesity की जो उन्होंने definition बनाया उसको बड़ा narrow कर दिया. मतलब इवन इफ यू क्रॉस बियॉन्ड 24-25 यू आर ऑलरेडी ओवरवेट.
1: बिल्कुल. तो डॉक्टर जी जब हम यंग एज की बात करते हैं यहाँ पर क्या क्रॉनिक डिजीज यंग एज में भी होता है? और आजकल तो हम कहते हैं कि 30 के एज में बीपी और शुगर रहना नॉर्मल हो गया, क्योंकि एक टाइम था जब बीपी और शुगर यूजुअली जो ओल्ड एज या हम कह सकते हैं कि 50s या 60s को क्रॉस करने वाले जो लोग हैं लगभग उनको बीपी की समस्या रहती है या शुगर की समस्या रहती है, पर आजकल यंग एज यानी 30s के अंदर दायरे में जो लोग रहते हैं उनको भी ये समस्या होने लगी है. तो डॉक्टर जी क्या ये नॉर्मल है या फिर ये भी एक तरह का खतरे की घंटी हम कह सकते हैं?
0: वेल रत्ना जी मेरे हिसाब से कोई भी डिजीज होना नॉर्मल नहीं है.
1: बिल्कुल.
0: बट प्रॉब्लम क्या होता है कि दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइलेंट किलर. आपको जब ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन रेज होता रहता है यू गेट सम माइल्ड सिम्टम्स जो आप डे टू डे आपकी प्रॉब्लम के साथ मिला लेते हो एंड देन यू डोंट टेक केयर ऑफ इट.
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल. इसी वजह से वो क्रॉनिक हो जाता है.
1: ट्रू.
0: बट 30 ईयर्स पे जब हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज होता है दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टाइम जेनेटिकली ड्रिवन. मेजोरिटी ऑफ द टाइम.
1: बिल्कुल.
0: उसमें क्या होता है उसमें ट्रीटमेंट मैंडेटरी हो जाता है.
1: सही.
0: और उसमें आपको लाइफस्टाइल ऑब्वियसली विल हेल्प यू टू मतलब आपको लंबा जीने के लिए आपको हेल्प करेगा बट ओनली लाइफस्टाइल कैन नॉट हेल्प. मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कई बार हमें ना ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैं तो हर रोज जिम में जाता हूँ फिर मेरे को हार्ट अटैक कैसे हो गया. कई बार हम लोग ये दोनों को अलग नहीं कर सकते क्योंकि देर इज लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन दिस कंट्री और होल ओवर द वर्ल्ड जो अनफॉर्चुनेटली जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है. किसी की ब्लड कोलेस्ट्रॉल बहुत रेज होता है तो ये फैमिलियली होता है इनको. छोटे से ही इनकी कोलेस्ट्रॉल रेज होता है बिकॉज इनका एक एंजाइम है वो नहीं है. सो ब्लड प्रेशर भी सेम है. कई लोगों का एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं हम लोग. उसको क्या होता है कि कई अर्ली एज से उसको होना लग जाता है. प्रॉब्लम वो नहीं है. प्रॉब्लम इज दैट टू डिटेक्ट इट अर्ली एंड ट्रीट. सो इफ यू आर गेटिंग ये सब डिजीजे बाय द एज ऑफ 25-30 देर इज नो वे इन द वर्ल्ड टिल नाउ जस्ट बाय डूइंग वेलनेस कैंपेन यू विल बी एबल टू सेव देम. बट वो बहुत छोटे अमाउंट है अभी भी.
1: बिल्कुल.
0: अभी भी उनकी संख्या इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोगों को जब ऐसा दिखता है तो बहुत अलार्मिंग होता है.
1: बिल्कुल.
0: सो यू रिमेम्बर देम बट इट इज नॉट मैंडेटरी. इट इज नॉट द रूल टिल डेट.
1: ट्रू.
0: बिकॉज इफ यू सी क्या हो रहा है कि आज लोग बहुत ज़्यादा जीते हैं.
1: बिल्कुल.
0: सो मेजोरिटी सर्वाइव्स अबाउट 70, 75, 80. सो क्रॉनिक डिजीज उनको दिखेगा.
1: बिल्कुल.
0: वो तो उम्र के साथ साथ

0: जो डिजीज होता है जो आप कह रहे थे कि उसमें तो नॉर्मल है, बट वी नीड टू एम टू कैच पीपल बिटवीन दिस एज ग्रुप ऑफ 30 to 50, जिसमें आप यदि एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, शायद आप मॉडिफाई करके अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके यू कैन चेंज द कोर्स ऑफ द डिजीज. तो मेनली हम क्या क्या सोचते हैं इस मॉडिफाइबल लिस्ट में, फूड हैबिट्स. फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं इसको डिटेल नहीं बोलूंगा क्योंकि एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ गुड फूड. बेसिकली आपको एक चीज याद रखना होता है कि बॉडी में जो स्टोमक है, योर स्टोमक नीड्स टू बी फुल. इफ योर स्टोमक इज नॉट फुल, वो बार बार आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा दिमाग में कि हमें मुझे कुछ खाना है.
1: मतलब आप हमेशा बीच में जो मील्स हैं उसको तो, मतलब आप खाते रहते हैं.
0: आपको स्टोमक को फुल करके रखना है. सो हाउ डू यू डू दैट? यू टेक लो कैलोरी थिंग्स, सो यू कैन टेक लॉट ऑफ फ्रूट्स, नॉट ऑलवेज शुगर रिच फ्रूट्स लाइक बनाना एंड ऑल. क्यूकम्बर हो गया, पपाया हो गया, दीज आर मोर ऑफ ए रफेज बट इट फील्स अप द स्टोमक. आपने यदि इफ यू टेक वाटरमेलन, आपने बहुत सारा वाटरमेलन खा लेंगे तो होल 24 आवर्स यू माइट फील फुल, व्हिच इज गुड.
1: और उसमें वाटर कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा है,
0: एंड देन द होल कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर द होल डे. सो यू नीड टू कीप योर टमी फुल.
1: यानी आपको प्लान करना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, yes. क्या इनटेक ले रहे हो.
0: यदि आप बहुत शुगर खाते हो तो क्या होता है, क्रेविंग होता है.
1: बिल्कुल.
0: सो यू विल बाय एनी मींस आप कुछ भी करके आप एक और बर्गर खा लोगे.
1: मेक यू ईट, यानी वो आपको खाने के लिए मजबूर करेगा.
0: तो ये एक सीक्वेंस होता रहता है. तो दैट्स व्हाई कई बार देखा जाता है कि एक हद के बाद लोग अपने वेट को कम नहीं कर पाते बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो खाते रहते हैं. और जब खाते रहते हैं वो लोग ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते बिकॉज वो
1: ओबेस होने लगता
0: है. ही डजंट वांट टू मूव मोर.
1: लेजीनेस, जैसे लेथार्जिक होना शुरू हो
0: जाता है. लेजीनेस की वजह से वो ज्यादा सोएगा.
1: ट्रू.
0: सोते ही उसके मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा एंड वो मोर मोटापा बढ़ेगा उसको, एंड देन ही विल वेक अप एंड ही विल ईट मोर.
1: मतलब
0: ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल है. आपको इस साइकिल को किसी भी तरीके से तोड़ना पड़ता है. सो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ वेलनेस और क्रॉनिक डिजीजेस को करेक्ट करने की, मॉडिफाई करने का है, तो आई बिलीव जो एक चीज को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है इज मोर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस ऑफ ईटिंग. एक साइकियाट्रिकल असेसमेंट होनी चाहिए होता है कि मेजोरिटी ऑफ देम हैज गॉट लॉट ऑफ क्रेविंग्स. उसको करेक्ट करने के लिए साइकियाट्रिकली आपको यदि इफ यू गेट ए गुड काउंसिलिंग एंड इफ यू बिलीव समबडी, चाहे गॉड हो चाहे भगवान के नाम से कोई मतलब बोल रहा है अच्छे बातें जो भी बोल रहा है, दिस थिंग्स वर्क्स वॉन्डर्स.
1: बिल्कुल.
0: तो उससे क्या होता है, यू देन स्टार्ट योर सेल्फ रेडी. फास्टिंग करवाने की कोशिश करते हैं या वेट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इट नेवर हैपेंस. यू नीड टू बी पार्ट ऑफ द गेम. आपको चाहिए वेलनेस, आपको चाहिए प्रॉपर लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, आपको चाहिए कि क्रॉनिक
1: हेल्दी लिविंग चाहिए, जीना है. बिल्कुल.
0: क्रॉनिक डिजीज से बाहर जाना है तो यू हैव टू ट्राई.
1: बिल्कुल. आपको अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो चलिए अभी थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज पर, क्रॉनिक अवेयरनेस. ये डिजीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और ये छोटी छोटी बातें ही हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हमें प्रेरित करती है, और इसीलिए ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं. बिल्कुल. हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर सुबीर चंद्र दास जी. तो बस इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे एक गीत के ब्रेक के बाद.

0: आज की चर्चा।
1: जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक डिजीज़ पर, जो बहुत ही बड़ी मात्रा में आज दुनिया भर में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, जो बढ़ती जा रही है। और अगर इसे काबू में ना किया गया तो आगे आप खुद सोच सकते हैं कि ये आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो भावी पीढ़ी है, उसके लिए किस तरह का खतरा हो सकता है। बिल्कुल आज के समय में हम कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो तनाव से भरा हुआ है। जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, जल्दी है खाना, जल्दी पकाना, जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और ऐसी ही चीज़ें हम ग्रैब करते हैं, हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई भूख लगी है, डेडलाइंस है, कंप्लीट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बच सकते हैं? लेट्स सी डॉक्टर जी क्या कहते हैं। डॉक्टर जी, क्या ये खतरनाक हो सकता है कि आए दिन हम जंक फूड खाना पसंद करते हैं, और आजकल देखा गया है कि बर्गर, पिज्ज़ा, ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा आकर्षित करती हैं, तो इसके लिए कैसे बचा जा सके, कैसे क्या करना चाहिए?
2: देखिए, ये लगभग घर घर की कहानी है। तो एक कहावत है कि जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा आपके जीभ को पचता है, वो आपके शरीर को नहीं पचता।
1: बिल्कुल।
2: तो आई डोंट से दैट, यू नो, एज आई सेड, कि कोई भी आप जब मॉडिफाई करते हो लाइफस्टाइल को, इट शुड बी ए प्रोसेस। इट शुड कम फ्रॉम इंटरनली। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों कहा जा रहा है ये सब चीज़ें, और एक मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बर्गर आपने खा लिया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। आपको कोई भी चीज़ आप जब ले रहे हैं, उसको मॉडिफाई करिए। रेक्टिफाई योर हैबिट्स ऑफ टेकिंग थिंग्स इन अनयूजुअल टाइम्स। जैसे आपने रात को आप उठे तो एकदम ही आपने पकड़ के पूरी बॉटल फ्रूट जूस पी लिए, आपने मिठाई के डब्बा देखा तो उसको पूरा ही उड़ा दिए, ऐसे नहीं। लीजिए, बट एक मेथड के तहत लीजिए और अपने बारे में सोचिए। यदि लंबा आपको बर्गर खाना है या पिज्ज़ा खाना है तो कम खाइए, ताकि आपको लंबा खाए, मतलब आप लंबा खा पाओ।
1: बिल्कुल।
2: आप एक ही दिन में सब कुछ खा लेंगे तो फिर उसके इफेक्ट आपको नुकसान करेगा ही करेगा।
1: सही बात, सही
2: बात। एंड द बिगेस्ट किलर इन दिस थिंग्स इज सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, ये अमेरिका में आजकल इन्होंने यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट लाइक 50 किलोमीटर की सराउंडिंग तक दे डोंट अलाउ टू सेल एनी फिजी ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये हमारे यहाँ पे भी लागू होना चाहिए, बिकॉज जब अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेस होता है, इमीडिएटली द फर्स्ट थिंग जो आप इजीली कर सकते हो कि ओपन अप ए कैन ऑफ कोका कोला एंड देन ड्रिंक इट।
1: बिल्कुल,
2: बहुत अच्छा लगता है, एंड देन गर्मी के माहौल में और भी अच्छा लगता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसका जो शुगर कंटेंट्स है और द टाइप ऑफ शुगर्स आर वेरी बैड, वेरी बैड।
1: बिल्कुल, ये एक तरह से आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। और डॉक्टर जी, जैसे हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं, तो क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी माता पिता से बच्चे में ये आ सकता है क्रॉनिक डिजीज़?
2: यस यस, मेजोरिटी ऑफ द डिसऑर्डर्स जो आज के डेट में जो पाया जा रहा है, दे ऑल हैव देर दे, जो मैं बाद में बताऊंगा, एक क्या होता है कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ होता है
1: जी,
2: दीज आर फाउंड टू बी ऑफ ए जेनेटिक।

0: एब्रेशन, इवन हाइपरटेंसिव जो हो रहे हैं, बहुत रिसर्च चल रहा है पूरे वर्ल्ड में टू फाइंड आउट कि इसकी जेनेटिकल कारण क्या है. कई सारी चीज़ों को तो हम लोगों को पता चल गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी लोगों को बहुत ज़्यादा होता है
1: जी,
0: तो वो फैमिलियल होता है. एंड देन इवन द हार्ट डिजीजेस, कई सारे फैमिलीज में जानता हूँ यहाँ पे जिनका दे लीव वेरी हेल्दी लाइफ बट दे ऑल हैव कोरोनरी डिजीज. सो ये आप प्रिवेंट नहीं कर सकते
1: जी.
0: इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हेन यू हैव ए फैमिली प्रीडिस्पोजिशन, जब होता है आपको पता है कि मेरे घर पे ऐसा हो रहा है बहुत अर्ली एज में, आपको सतर्क रहना चाहिए और आपको एक्टिवली अपने आप की जांच करवाना चाहिए. जिनके घर पे जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोरोनरी डिजीजेस है, हार्ट डिजीज जो 40-44 की पहले हो गया मेल्स में मेनली, जैसे आपको डायबिटीज़ है घर पे, फादर मदर दोनों को डायबिटीज़ है, तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग डायबिटीज़ इज़ वेरी हाई. ब्लड प्रेशर की जिसकी बीमारी है और उसके ब्लड प्रेशर जैसे पकड़ लीजिए 30-35 साल में ही पकड़ में आया था फादर को या ग्रैंडफादर को या किसी को, देन यू शुड एटलीस्ट चेक द ब्लड प्रेशर 6 मंथली इन द अर्ली डेज,
1: रेगुलरली वो होना चाहिए.
0: बिल्कुल. जैसे आप ये जांच करते रहेंगे तो आप यू विल बी एबल टू कैच दिस डिजॉर्डर्स मच अर्ली.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: कई सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आज के डेट में, मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस करना चाह रहा था कि जो साइलेंट किलर्स में ना इन्होंने अभी कैंसर्स को भी डाल दिए.
1: बिल्कुल.
0: कई सारे कैंसर्स यहाँ पे दिखता है जो साइन सिम्टम्स बड़े लेट दिखाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और इफ यू हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट दैट कि ये हो सकता है मुझे भी,
1: चांसेस है.
0: जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया.
1: बिल्कुल.
0: तो आपको अवेयर होना चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: सेकेंडली कई कैंसर्स होते हैं आपकी इंटेस्टाइन्स में, कोलोरेक्टल कैंसर्स, पैनक्रेटिक कैंसर्स, ओवरियन कैंसर्स, ये बड़ा लेट प्रेजेंट करते हैं.
1: सही बात.
0: तो जब आप इसको पकड़ पाते हो तब तक इट हैज बिकम मच
1: बहुत ज्यादा
0: स्टेज उसका 3 और 4
1: हो चुका है, एडवांस
0: हो चुके हैं, रिजल्ट्स आर नॉट गुड. बट इफ यू कैच देम इन द फर्स्ट स्टेज द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट टुडे.
1: सही बात है, क्योंकि उसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है सही समय पर.
0: एक्टिवली आपको चेकअप करना चाहिए. दोज हु आर प्रीडिस्पोज्ड, जिसके फैमिली हिस्ट्रीज है, अर्ली एज कोई भी चीज होता है तो उसको नेक्स्ट जनरेशन में जाने का चांसेस हाई है.
1: बिल्कुल.
0: तो यू शुड क्रॉनिकली, यू शुड
1: एक तरह का चेक करना. और यहाँ पर जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर टाइम पर वो लोग कैंपेन्स लगाते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सहूलियत दे सके ताकि लोग अपने आप को आकर मतलब चेक करवाएं. और ये हर गाँव में किया जाता है, हर जगह पर किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि काबिले तारीफ है. और यहाँ पर डॉक्टर जी देखा गया है कि आजकल भाई मॉडर्नाइजेशन के साथ धूम्रपान यानी स्मोकिंग करना और कैजुअली ड्रिंक्स लेना यानी ये एक मोड ऑफ लाइफ बन चुका है, तो क्या ये भी क्रॉनिक डिजीज को बढ़ावा दे सकता है?
0: देखिए मतलब दोनों जो आपने बताया,
1: हाँ,
0: ये एक सोसाइटी के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट इरोडिंग फैक्टर है. स्मोकिंग जो मैं यहाँ पे देखता हूँ इस हद तक बढ़ चुके हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट टेकिंग सो मच ऑफ स्टेप्स बाय स्टॉपिंग बाय इंक्रीजिंग द प्राइस और फिर एरिया डिमार्केट किया गया कि यहाँ पे नहीं स्मोक कर सकते फाइन ये सब. इसके बावजूद भी स्मोकिंग इन मॉरिशस इज एन कंप्लीट एपिडेमिक पे है.
1: बिल्कुल.
0: एंड द वर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ स्मोकिंग अमंग द फीमेल्स. There is a study which showed कि जो the females who intake alcohol and smoke, they are predisposed to have breast cancers at least 10 to 20 times more than anyone else.
1: यानी पुरुषों में ये उतना नहीं लेकिन महिलाओं में
0: unfortunately
1: बहुत ज़्यादा.
0: नेचर के फिजियोलॉजिकली जो है कि देखिए दोनों ही ऐसे नहीं है कि दोनों नहीं होगा तो आप जी नहीं सकते. तो ये हमारे एडिशनल फैक्टर्स है जो हमने अपने क्या बताऊँ आपकी अम्यूजमेंट की जरिए अपने इसको
1: अपने लाइफस्टाइल में उसको खुद अपने आप से शामिल किया
0: है, कर लिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो माय ओनली स्लोगन विल बी काइंडली एब्सटेन स्मोकिंग. ड्रिंकिंग का क्या होता है कि बिकॉज यू कैनॉट ड्रिंक इन पब्लिक प्लेसेज एंड अदर थिंग, एक

0: exceptionally, if you are not a psychiatrically deranged,
1: huh,
0: you will not drink except there is a party or something else.
1: Occasionally.
0: Yeah. Mm-hmm. So, uske complications and side effects are less
1: compared to the smokers.
0: Mm-hmm. But obviously, हमें बहुत patient मिल जाता है जिनको liver completely deranged, खत्म हो जाता है because of drinking.
1: जी.
0: So, वही है कि the most important part is accessibility to these things should be a little bit more stringent.
1: Mm-hmm.
0: It should not be available to anybody and everybody. It should not be sold in a pan shop or a fruit shop. वहाँ पे आप फ्रूट्स खरीदने जा रहे हैं, ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, उसके बगल में आपको अल्कोहल भी मिल जाता है, स्मोक,
1: मतलब इजीली अवेलेबल है,
0: इजी अवेलेबिलिटी जब होगा
1: तो लोग
0: कंटिन्यूअसली उसको अब्यूज करेंगे.
1: बिल्कुल सही बात.
0: आई मीन यू नीड टू डू ए मल्टी प्रोंग्ड अटैक इसको कम करने के लिए.
1: जी सही बात. और डॉक्टर जी, जैसे हम क्रॉनिक डिजीज की बात करते हैं, ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं व्यायाम की, आजकल देखा गया है कि व्यायाम, हम नहीं कहते कि लोग व्यायाम नहीं करते, पर इसकी जो कह सकते हैं कि परसेंटेज है लोगों में व्यायाम करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है. बहुत कम लोग अपने हेल्थ को उतना प्रायोरिटाइज करते हैं. डॉक्टर जी, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर व्हीकल, द व्हीकल विल रन लॉन्गर. सो हमारे जो बॉडी है, इट इज़ ऑल्सो ए व्हीकल.
1: बिल्कुल.
0: आपको फर्स्ट 40 ईयर्स पे द वे यू टेक केयर ऑफ योर व्हीकल, योर नेक्स्ट 40 ईयर्स डिपेंड्स ऑन दैट. तो यदि आप अपने ध्यान नहीं रखेंगे, चाहे प्रॉपर खाना, एब्सटेनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, एक्सरसाइजेस एंड अदर थिंग, You will have to suffer.
1: Mm-hmm. यानी आपको 40 साल तक आपकी ये जो गाड़ी है इसे संभालना है.
0: तब acute situation है. You are strong, your muscles are fine, your bones are good. You will not see.
1: Mm-hmm.
0: आपको दिखेगा नहीं उसकी problems.
1: हाँ जी, बिल्कुल.
0: But उसके बाद
1: जैसे ही cross किया
0: करने जाएंगे, तो आपको सब चीज जो आपने take over नहीं करा था, maintenance नहीं किए थे, you will have the suffering. But the one good thing of it is that whenever you want to start, you can actually start at any age. There is no barrier.
1: सही बात.
0: और आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं. 150 मिनट इन ए वीक यू शुड यूज फॉर एक्सरसाइजेस, व्यायाम कह लीजिए, चलना, वॉट एवर यू वांट टू डू,
1: कोई भी. बिल्कुल, जैसे हेल्थ को लेकर आप प्रायोरिटाइज करें अपने.
0: एटलीस्ट 150 मिनट्स यू नीड टू गिव.
1: हफ्ते का, सप्ताह का 150 मिनट आपको डेडिकेट करना ही है, तब जाकर आपकी सेहत, बिल्कुल आप सेहतमंद रह पाएंगे. और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि हमारी जीवन की जो गाड़ी है उसे हमें संभालना है, क्योंकि यही हमें आगे तक लेकर जाती है. पर अगर आप इसको पहले ही, आप बिल्कुल हेल्थ को इतना प्राथमिकता नहीं देंगे, तो ये आगे कर आपकी गाड़ी में बिल्कुल बहुत ताकत नहीं बचेगी, आपके शरीर में बहुत ताकत नहीं बचेगी, और बेशक 40 तक पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. डॉक्टर जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जब हम बात करते हैं, तो देखा गया है कि जैसे आप बता रहे हो, बीपी, डायबिटीज़ काफ़ी सारे लोगों को बहुत यंग एज में हो गई है, पर इसी के साथ, इसी के चलते, इसे मेंटली हम किस तरह से स्ट्रांग रह सके और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को असर ना करे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए अब बीमारी तो हो चुकी है, लेकिन अब हमें क्या करना है?
0: वेल, देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अदर देन दिस डिसऑर्डर्स इज ऑल्सो ए साइकेट्रिक हेल्थ.
1: बिल्कुल.
0: जब आप क्वालिटी ऑफ हेल्थ की बात करते हैं, जो चीज़ों को हम लोग नहीं ध्यान रखते हैं, वो इट्स योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, जिसके हम ध्यान रखते ही नहीं है. हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग स्ट्रेस पे भरे हुए हैं, कुछ और सोचते जा रहे हैं. ये आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. नाउ यदि किसी को भी कोई भी क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी डिटरमिंड है, ऑलरेडी डिटेक्टेड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट फोरम्स, ब्लॉग्स. आज के डेट में कई सारे सोसाइटीज़ है, ग्रुप्स है, जहाँ पे सेम डिजीज में सफ़र करने वाले लोगों की
1: सोसाइटी
0: बनते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो दे टॉक अमंग देमसेल्व्स, दे बूस्ट देम अप. फिर नए नए जो चीज़ें आते हैं उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. देखिए, एक बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाला है एंड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इज़ द स्टेम सेल रिसर्च. उसमें शायद कई हमें आशाएं नज़र आते हैं डिस्टेंस फार डिस्टेंस में कि हम लोग

से चीज़ों को, मतलब उसके प्रोग्रेशन को हम लोग रुका सकते हैं बाई चेंजिंग, बाई गिविंग सर्टेन इम्पॉर्टेंट स्टेम सेल्स इन योर सिस्टम, जिससे आप कि ये जो डीएम डायबिटीज पर टाइप टू होने वालों को आप रुकवा सकते हो, कई सारे जो क्रॉनिक डिजीजेस की ट्रीटमेंट शायद आ जाए कभी, बहुत रिसर्च हो रहा है वर्ल्ड में, आई एम श्योर एट सम पॉइंट समथिंग विल

0: more important than acutely going and correcting your health problems.
1: सही बात।
0: आपने यदि अपने ध्यान रखेंगे तो आपके हेल्थ आपके ध्यान रखेगा।
1: सही बात, बिल्कुल।
0: Otherwise, you will be constantly spoiling your time taking care of your health.
1: सही।
0: तो आपकी productivity, आपकी fruitfulness towards the society, towards your family will go down. तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए,
1: इस पर काम करना
0: इसके, है। इसके वो आपको सोचना चाहिए एंड टेक हेल्प।
1: बिल्कुल।
0: मॉरिशस जैसे कंट्री में हेल्प्स आर वेरी इजीली अवेलेबल, गवर्नमेंट्स आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, आप हेल्प लीजिए। अपने आप को पहले डिटेक्ट करिए इफ देयर इज एनी डिजीज एंड करेक्ट योरसेल्फ व्हिच यू कैन डू एंड देन रेस्ट
1: हैंड इन हैंड वो आगे बढ़ा Absolutely. जा सकता है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि बिल्कुल आज बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हेल्थ को लेकर, और बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जो हमारे हेल्थ को प्रायोरिटी दे, और इसमें केवल उनका नहीं लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम भी अपने सेहत को लेकर जिम्मेदार बने और अपने सेहत को दांव पर ना लगाए। क्योंकि कई बार हम जब लेट गो करते हैं, हम सोचते हैं कि इतना खाने से क्या हो जाएगा या थोड़ा और खा लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसको हम किस तरह से रेगुलेट करते हैं, किस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से हम अपना पोटेंशियल देते हैं, हम अपना एफर्ट देते हैं अपनी हेल्थ को, बिल्कुल जैसे हम उस पर कोई भी कह सकते हैं ना कि हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है हेल्थ को लेकर, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं जैसे क्रॉनिक डिजीज़ अवेयरनेस का दिन मनाया जा रहा है 10 जुलाई को। और बिल्कुल हम डॉक्टर जी से यही कहना चाहेंगे कि जाते जाते आज के इस कार्यक्रम को समर्प करें, और जैसे कैसे आप कैसे बताना चाहेंगे लोगों को एक लाइन में कि क्या करना है क्या नहीं। वैसे तो लोग काफी इंटेलिजेंट है पर क्या करना है क्या नहीं करना है, एक लास्ट मैसेज आज के इस कार्यक्रम का।
0: मैं कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंट टुडे एंड यू विल थ्राइव टुमारो एंड चूज हेल्थ और लिव बेटर। यदि मैं इसको हिंदी में कहूँ तो इसका ये होता है कि आज के बचाओ और कल समृद्धि, स्वस्थ चुने बेहतर जिए। बिकॉज आप इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज हेल्थ टुडे यू विल नॉट हैव एफ्लुएंस।
1: बिल्कुल।
0: यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर अर्निंग्स, यू विल नॉट बी एबल टू,
1: जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो सारा बेकार हो जाना है। बिल्कुल।
0: सो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ टुडे, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट।
1: बिल्कुल। तो आप अपने सेहत पर ध्यान करें और बिल्कुल उस पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा प्राथमिकता दें अपने स्वास्थ्य को। चलिए, जीवन में सभी लोग तनाव से गुजरते हैं पर साथ ही साथ अपने हेल्थ के लिए बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, बहुत कम लोग इस बात को मायने दे पाते हैं, प्राथमिकता दे पाते हैं। और बिल्कुल अगर आज से ही आप शुरुआत करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, उज्जवल बनेगा। और बिल्कुल हर एक इंसान के लिए जन्मसिद्ध हक है सेहतमंद रहना, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। चलिए, इसी के साथ डॉक्टर सुबीर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारी टेक्निकल टीम यूसुफ जी, साथ है उरुसा बानो और रत्नमाला मंगरू जी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आप तक पहुँच पाया है। हमारे जितने भी श्रोता, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और फिर एक और अगले कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: थैंक यू।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्टूडियो में आ गए हैं। आशा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
2: सभी को, नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभाल रहे हैं। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ, लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं। ये जान लें कि पिछले साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और उसके एक दिन बाद ये गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित हुआ था, यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद। कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिजू ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि तकनीकी खामियों का पता लगाने और उन्हें सुधारने के लिए ये परियोजना इस वक्त पायलट चरण पर है। डिजिटल हेल्थ एजेंसी के बजट को 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के आगे बढ़ने पर ऐसा किया गया है क्योंकि इसी के चलते देश भर में भर्ती कार्रवाइयां चलाई जाएंगी और साथ में बाकी बचे कार्य भी पूरे किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर एक रुपया स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने

0: के लिए खर्च किया जाएगा। हर भारी बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में स्पॉन्ज सिटी परियोजना पेश की। अडेप्ट एक्शन परियोजना के तहत आयोजित इस पहल को AFD और यूरोपीय संघ का सहयोग मिल रहा है। इस परियोजना को लागू करने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी नई भर्तियां कर रही हैं। पिछले वर्ष से अब तक संस्था अपने कर्मचारियों की संख्या दुगनी कर चुकी है और अब अधिक इंजीनियर की नियुक्ति की भी तैयारी की जा रही है। विदेशी स्तर पर केरला में लगातार भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मिट्टी का बहाव इतना तेज रहा कि लोग इससे बच नहीं पाए और मिट्टी तले दब गए। लापता लोगों की तलाश जारी है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में अशोक समाचार। शुमेशिवाला कौटिमलित्या में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मिनी जगेसर पैदाइशी नाम बरोसा और जो पद्मिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3 बजे उनके बेटे अविनाश जगेसर के मकान शुमेशिवाला कौटिमलित्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। एमिलियन स्ट्रीट पुद्रोदो विलाश में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड के श्री राधानन को जो राधा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सपहर 3:30 बजे उनके मकान एमिलियन स्ट्रीट पुद्रोदो विलाश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर
1: बुधवार 8 जुलाई घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:05 रेडियो मॉरिशस पर पुनः हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति धारा लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। तो श्रोताओं, भक्ति धारा ये जो कार्यक्रम है, आपको याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो चलिए अभी के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। कहते हैं कि जीवन जो है वो एक बार ही हमें मिलता है, इसलिए जीवन के अनमोल क्षणों को हमें कभी भी जो है व्यर्थ के कार्यों में गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ की चिंता में गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ की चीज़ों में गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ये जीवन जो चला जाता है, समय जो बीत जाता है वो लौट कर नहीं आता है, फिर हम अफसोस करते रह जाते हैं। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आपने ये जीवन दिया है तो हमें इतनी शक्ति भी दे, इतनी समझ भी दे कि हम आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके और अपने जीवन के हर एक क्षणों को सही तरीके से व्यतीत कर सकें।

0: श्री भगवान गणेश के नाम से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भगवान गणेश जो है विघ्नों को हरते हैं, तो हम इनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी जो भी विघ्न हैं इस जीवन में, उन सभी को हर ले भगवान और हमारे जीवन को सुख शांति एवं समृद्धि से भर दे। तो चले, इन्हीं कामनाओं के साथ अब हम बढ़ेंगे विनय अंजलि इस कार्यक्रम की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। तो आइए उनको सुनते हैं।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। विनय अंजलि में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे गायत्री मंत्र से। आप इस गान को सुनिए और आनंदित होइए।

0: श्रोताओं, आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर गौतम खट्टर जी। आप अच्छे लेखक, प्रखर वक्ता, वैदिक विचारक हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। युवा हैं और भारत में आपका बहुत ही मान होता है युवकों के बीच में और बड़े अच्छे कार्य करता है। हम स्टूडियो में श्री गौतम खट्टर जी का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करेंगे कि अभी जो गायत्री गान किया गया है, इस गायत्री मंत्र पर आप कुछ विचार व्यक्त करें। आदरणीय श्री डॉक्टर गौतम खट्टर जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस मॉरिशियस की पावन धरा पर आपने ये कार्यक्रम वेद मंत्रों की श्रृंखला के रूप में प्रकाशित करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो गायत्री मंत्र हमने सुना, इसको वेदों के अंदर एक ईश्वर की स्तुति के मंत्र होते हैं, एक ईश्वर की प्रार्थना के मंत्र होते हैं और ईश्वर की उपासना के भी मंत्र होते हैं। लेकिन जो ये गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर की उपासना तीनों का संयुक्त मंत्र माना जाता है। अर्थात ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो संध्या उपासना के मंत्र हैं, उसमें भिन्न भिन्न ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्र दिए हैं, परंतु ये जो गायत्री मंत्र है, ये तीनों ही चीज़ें, यानी कि स्तुति भी, प्रार्थना भी और उपासना भी, तीनों का एक मैशअप मंत्र, यदि आज की भाषा में इसको कहें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल जैसे हम सुनते हैं मैनिफेस्टेशन का जो सिद्धांत है, यानी कि व्हाट यू थिंक यू गेट, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वही आप बन जाएंगे, जो आप सोचेंगे वही आप पाएंगे, ये बार बार हम अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण का जो सिद्धांत है, द सीक्रेट करके इस पर एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो ये जो भी विचार हम सुनते हैं, ये जब हम उपासना करते हैं या जब हम अपनी संध्या वंदन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें एक ओम जय जगदीश हरे, एक हम आरती भी गाते हैं परमात्मा के लिए, और उसमें एक वाक्य भी आता है, जो ध्यावे फल पावे। और ये जो ध्यावे फल पावे है, ये हम कई वर्षों से, अनंत अनंत समय से हम अपने मंत्रों के माध्यम से गा रहे हैं। और आज जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो वो बोलते हैं अंग्रेजी में व्हाट यू थिंक यू गेट यू बिकम। तो ये व्हाट यू थिंक यू गेट यू बिकम का जो सिद्धांत है, ये पूरा का पूरा गायत्री मंत्र में समाहित है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का एक ही रूल है कि एक चीज़ जो आप चाहते हैं उसे बार बार बार बार बार बार सोचते रहें, उसका चिंतन करते रहें, वही चीज़ गायत्री मंत्र में है। हमको 108 बार गायत्री मंत्र क्यों जपना है? क्योंकि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसके जब मूल में जाएंगे तो पाएंगे गायत्री मंत्र का अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह

0: परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। यानी ये एक वाक्य है जो गायत्री मंत्र के रूप में हम बार बार बोलते हैं, 108 बार बोलते हैं, बार बार इसका चिंतन करते हैं। इसमें क्या चिंतन, मूल में क्या चिंतन है? मूल में चिंतन है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। अब जब हम परम पिता परमात्मा से, अगर वैदिक वांग्मय के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार कहें, तो वो जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, उसको परम पिता परमात्मा का या ईश्वर कह लीजिए या परम सत्ता का उसको नाम दिया गया है। जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो उसमें इसको एनर्जी कहते हैं, उसको नेचर कहते हैं, उसको एक प्रकृति का सिद्धांत कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो प्रकृति से मांग लीजिए, वो आपको मिलना निश्चित है। यहाँ हम प्रकृति ना कह करके वैदिक धर्म के अनुसार उसको परमात्मा कहते हैं। यानी परमात्मा से हम बार बार ये आग्रह करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाओ, बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाओ, बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाओ। तो जब बार बार बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बुद्धि सन्मार्ग पर जाएगी। और बुद्धि इस मानवता में ऐसा एक तत्व है कि जिसकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चली जाए उसको फिर सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। अगर किसी के पास बहुत धन है पर बुद्धि नहीं है तो क्या करेगा? धन बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, संसाधन बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो उसका हश्र जो है, उसकी जो गति है वो दुर्योधन की तरह होगी। धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, संपदा बहुत है, पर बुद्धि लैक कर रही है, तो वो दुर्योधन की तरह हो जाएगा। और स्टीफन हॉकिंस, बुद्धि है लेकिन शरीर काम नहीं करता है, बुद्धि है पर संसाधन नहीं है, बुद्धि है पर अपने हाथ से खा नहीं सकता, बुद्धि है लेकिन अपने पैर से चल नहीं सकता, पर बुद्धि है, इसीलिए दुनिया में इतने सारे आविष्कार करने में वो सक्षम है। यानी बुद्धि अगर है और आपके पास कुछ भी नहीं है, बुद्धि अगर आपके पास है, आपके पास धन नहीं है, तो धन आ सकता है। धन है और बुद्धि नहीं है तो आपका अधोगति की ओर जाना निश्चित है। इसीलिए गायत्री मंत्र को मूल क्यों कहा गया है? ये जो गायत्री का मंत्र है, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, केवल 108 बार नहीं, बल्कि 24 लाख बार इस मंत्र का जप करने के लिए आग्रह कहा गया है। क्यों? क्योंकि 24 लाख जब मंत्र का जाप करते हैं तो उससे एक पुरश्चरण हो जाता है, और जब एक पुरश्चरण हो जाता है तो उसको बहुत वैदिक धर्म में उसकी बहुत महत्ता है। तो इसी प्रकार जो ऋषि मुनि योगी सुधीजन साधक तपस्वी संत लोग होते हैं, वो दिन भर हमेशा बार बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं और एक नहीं 24 पुरश्चरण करते हैं। माने एक पुरश्चरण में 24 लाख गायत्री का जप, और 24 पुरश्चरण करेंगे तो 24 लाख गुणा 24 कर लीजिए, इतनी इतनी बार गायत्री का जप करने का विधान है। सिर्फ इसलिए क्योंकि एकमात्र पूरे वैदिक वांग्मय में मंत्र है जिसमें ईश्वर की स्तुति भी है, उनकी प्रार्थना भी है और उनकी उपासना भी है। एक ही मंत्र से हम ईश्वर के समीप, उपासना, उसके निकट भी वास कर सकते हैं। एक ही मंत्र में हम ईश्वर से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हमको सन्मार्ग दिखाओ, हमको सही रास्ते पर ले जाओ, हमारे दुखों का नाश करने वाले हे परमात्मा, हे परमात्मा आप सुख स्वरूप हो, हे परमात्मा आप न्यायकारी हो। ये सारी बातें स्तुति में आ जाती हैं। तो स्तुति भी हो गई, प्रार्थना भी हो गई और उपासना भी हो गई, तो ये गायत्री मंत्र है।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं डॉक्टर गौतम खट्टर जी को गायत्री मंत्र पर बहुत नए तरीके से अपना संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने आपके सामने तीन बातें रखी, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, और बताया कि इस मंत्र में हम स्तुति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। प्रार्थना ये है कि उन्होंने बताया कि हम बुद्धि की मांग करते हैं, बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, और बुद्धि न हो तो क्या हो सकता है? हम श्री गौतम जी से ये पूछना चाहेंगे, जिस बुद्धि की हम प्रार्थना करते हैं, यदि वह बुद्धि हमें प्राप्त न हो तो हमारे जीवन की कौन सी दिशा दशा हो सकती है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए।
0: देखिए, मैंने पहले ही संकेत में कहा कि

0: बुद्धि यदि ना हो तो व्यक्ति दुर्योधन बन जाता है, बुद्धि यदि ना हो तो एकलख पूत सवालख नाती तारावण घर दिया न बाती। यानी जिसके 1 लाख पूत हों, 1.25 लाख नाती हों, जिसके वंश में इतने सारे लोग हों, जिसके पूर्वजों का गौरवशाली ईश्वर भक्ति का इतिहास रहा हो, जिसके पास स्वर्णमयी लंका हो, उसके बाद भी उसका सर्वनाश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सब कुछ है, धन है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, संसाधन है, पर एक चीज़ नहीं है, बुद्धि। इसलिए कहा है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी विवेक, सही और गलत का निर्णय करने की असक्षमता जो है, ये जब समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति का विनाश होना तय है। रावण के साथ वही हुआ, सब कुछ था लेकिन उसके पास बुद्धि उसकी डावाडोल हो गई, तो उसने माता सीता के साथ जो अनैतिक व्यवहार किया, जो उनका अपहरण किया, उसका जो अंततः गत्वा परिणाम क्या हुआ कि वो उसका विनाश हो गया। उसके पास विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरों में सबसे सुंदर स्त्री मंदोदरी उसकी पत्नी के रूप में उसके पास उपलब्ध थी, पर उसके बाद भी बुद्धि चली गई तो उसको वो दूसरे की स्त्री को प्राप्त करने की आकांक्षा जागृत हो गई और उसका जो हश्र हुआ, जो उसका अंत हुआ, वो बहुत ही विनाशकारी हुआ। बुद्धि ना हो तो व्यक्ति कंस बन जाता है, व्यक्ति बुद्धि ना हो तो ऋषि की संतान होने के बाद भी व्यक्ति राक्षस हो जाता है, और अगर बुद्धि हो तो सत्य काम जाबाल, एक वैश्या का पुत्र होने के बाद भी एक ऋषि की उपमा को धारण कर लेता है। बुद्धि किसी भी तत्व के मूल में है, ये ऐसा ही है मानो दीपक है, मानो आपके पास मिट्टी का दिया है, आपके पास रुई की बाती भी है, लेकिन अगर उसमें तेल भी है परंतु अग्नि का स्पर्श ना हो तो दीपक का होना व्यर्थ है। बुद्धि वही काम करती है जो दीपक में अग्नि करती है, बुद्धि वही काम करती है जो पानी में शीतलता करती है।
1: बहुत सुंदर विचार आज आपने सुने। श्रोताओं, हम श्री गौतम खट्टर जी को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या बहुत ही निराले ढंग से की है। अवश्य ही आपने लाभ उठाया होगा। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप में साथ दिया श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं। आपने सुना, आभार। अब अंत में आप श्री प्रकाश आर्य जी द्वारा एक भजन सुनेंगे और हमें अनुमति देंगे। फिर मिलेंगे। नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: तो श्रोताओं, अभी हम विनय अंजलि इस कार्यक्रम को सुन रहे थे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और भक्ति गीतों का ये जो कार्यक्रम है भक्ति धारा, इसमें आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस अगले भक्ति गीत के साथ हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। इस अगले भक्ति गीत द्वारा भगवान राम और माता सीता का स्मरण हम करते हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर का नाम जो होता है हमें बहुत सारे दुखों से पार लगा देता है। इसलिए जब हम चिंता में अपने आप को, मतलब कि चिंता में डूबे हुए होते हैं, तो उस समय अपने परेशानी के बारे में, चिंता के बारे में न सोचकर यदि ईश्वर का नाम ले तो आधी चिंताएं ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओ, कहते हैं कि ईश्वर को पुकारने के लिए बस सच्चे मन से उन्हें पुकारना पड़ता है। ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए हमें दिखावा नहीं करना पड़ता है। ईश्वर को सच्चे हृदय से स्मरण करने के लिए हमें कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है जो हमारे क्षमता से बाहर हो। ईश्वर तो मन के भावों को समझ जाते हैं। ईश्वर तो हमारे जो है इच्छाओं को समझ जाते हैं। ईश्वर जो है बिना कहे हमारी सभी बातों को समझ जाते हैं। तो चलिए, ईश्वर का ध्यान करते हुए कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं।

चले भक्ति धारा का ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, आप सभी के साथ के लिए धन्यवाद। बुधवार का दिन है तो हमने सोचा कि भगवान गणेश पर आधारित एक और भक्ति गीत हो जाए। और श्रोताओं, आज के इस व्यस्त जीवन शैली में कभी कभार हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, अपने परिवारजनों को समय नहीं दे पाते हैं। इस व्यस्तता के कारण हम अपने जीवन में इस तरह से उलझ जाते हैं कि कभी कभार जीवन के

जो है छोटे छोटे क्षणों को हम जीना भूल जाते हैं, छोटे छोटे क्षणों को हम अपने परिवारजनों और अपने प्रियजनों के साथ व्यतीत करना भूल जाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा समय हमें हर रोज़ निकालना चाहिए कि परिवार के साथ मिलकर पूजा करें, प्रार्थना करें। सवेरे अगर हमें समय नहीं मिलता है तो सांझ के समय, संध्या के वक्त जो है हमें दियाबाती करते हुए अगर पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा प्रार्थना करेंगे तो पूरे दिन में ये समय हमारे सामने होगा जहाँ पर हम ईश्वर की आराधना में पूरा परिवार एक साथ जुड़ सकता है। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात होती है जो परिवार में प्रेम, भक्ति भाव और एकता के प्रतीक को दर्शाता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दो विज्ञप्ति सुन लीजिए। कौशलोत शिमेग्रेनिये रिवेदे गाले, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कौशलोत शिमेग्रेनिये रिवेदे गाले, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल गुरुवार 9 जुलाई को सुबह के 9 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है ओंस जोंसे त्याकासे प्रोविडेंस फिशरीज बॉम्बू वेरिए बौदे जामुरित, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर शुक्रवार 10 जुलाई को सुबह के साढ़े आठ से दोपहर के तीन बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी दो विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: और श्रोताओ, इसी के साथ हम भक्ति धारा इस कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत आभार। बस जाते जाते यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर अपनी कृपा जो है आपके जीवन पर सदा बरसाते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति, पुनः आप सभी से भेंट होगी। 11 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद जो है आप सुन पाएंगे उर्दू भाषा में प्रोग्राम। उर्दू भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे सैयदा की पेशकश में। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को। हम

0: यशा के स्टूडियो में लेकर संक्षिप्त समाचार, उनसे मिलते हैं। नमस्कार
1: सभी को। नमस्कार, सुनिए संक्षिप्त समाचार। आज बुधवार 8 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता संभाल रहे हैं। इस समिति की जिम्मेदारी है फाइनेंस बिल 2026 को अंतिम चरण तक पहुंचाना। भले ही ये विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ, लेकिन कई कदम पहली जुलाई से ही अमल में लाए जा चुके हैं। ये जान लें कि पिछले साल के लिए फाइनेंस एक्ट को 8 अगस्त यानी 5 जून 2025 को बजट पेश किए जाने के लगभग 2 महीने बाद ही स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट गैजेट में प्रकाशित किया गया था। कल राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने ई हेल्थ परियोजना पर जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि लोगों को भर्ती करना जरूरी है, इसी कारण ये रकम बढ़ाई गई है। ये रकम आपको बता दें कि 25 से 45 मिलियन रुपए तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में इतनी रकम की ज़रूरत नहीं थी और 19 मिलियन रुपए वापस कंसोलिडेटेड फंड में जमा किए गए थे, लेकिन अब जब काम आगे बढ़ रहा है तो इन पैसों की भी ज़रूरत पड़ रही है। पूर्व सरकार द्वारा उन्होंने कहा कि 2 इलाकों में कोई भी कार्य नहीं किए गए थे, और जहाँ तक फाइनेंस की बात है उन्होंने कहा कि ये उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि खर्चों पर पूरा ध्यान रखें। लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी द्वारा एक नई परियोजना पर विचार किया जा रहा है, जिसका नाम है स्पंज सिटी। हर बारिश के बाद देश के कई इलाकों में पानी जमा होने की समस्या आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी ने कल राजीव गांधी साइंस सेंटर में इस परियोजना की अवधारणा पर एक कार्यशाला आयोजित की। स्पंज सिटी ऐसे शहरों का निर्माण करना है जहाँ पर जो टारकोल और जो ज़मीन है वो पानी को सोख कर उसे रिसाइकल कर सकते हैं। फिलहाल इस परियोजना को पर अभी के लिए विचार ही

0: किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए कल राउंड ऑफ 16 के लिए अंतिम मैच खेले गए। अर्जेंटीना का सामना हुआ इजिप्ट के साथ और अर्जेंटीना का स्कोर रहा 3 इजिप्ट 2, जबकि स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच का मैच आखिरी समय तक ड्रॉ रहा 0-0। अंत में पेनाल्टी में स्विट्जरलैंड बाजी मार गया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना गया। कल गुरुवार रात 12 बजे क्वार्टर फाइनल्स का पहला मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रामदानी रोड प्लेंडी पपाई में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री विजय बहादुर की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी गुरुवार को सुपहर 3 बजे इताली में किया जाएगा। शुमेशी वाला कोची मृत्या में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती पद्मिनी जगेसर पैदाशी नाम भरोसा और जो पद्मिनी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुपहर 3 बजे उनके बेटे अविनाश जगेसर के मकान शुमेशी वाला कोची मृत्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:30 PM। आले ब्रियन कास्टेल में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की मिसिज़ ज़ुबैदा बीबी तमन पैदाशी नाम गोकुल इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 12:30 बजे उनके मकान आले ब्रियन कास्टेल से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वसत सहरा दे दे, मैं के ज़र्रा हूँ मुझे वसत सहरा दे दे, कि तेरे बस में है ख़तरे को भी दरिया करना, कि तेरे बस में है ख़तरे को भी दरिया करना। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फ़रोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक हम और नातो सलाम। ताखीर न करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो सब चीजों का मालिक है, यानी वो कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और आखिरत में भी उसी की तारीफ है, और वो हिकमत वाला है खबरदार है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है और जो उसमें से निकलता है, और जो आसमान से उतरता है और जो उस पर चढ़ता है, सब उसको मालूम है, और वो मेहरबान है बख्शने वाला है।

और काफिर कहते हैं कि कयामत की घड़ी हम पर नहीं आएगी। कह दो, क्यों नहीं आएगी? मेरे परवरदिगार की कसम, वो तुम पर जरूर आकर रहेगी। वो परवरदिगार गैब का जानने वाला है, जर्रा भर चीज भी उससे पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में, और कोई चीज जर्रे से भी छोटी या बड़ी नहीं मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।

इसलिए कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको बदला दे, यही हैं जिनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, और जिन्होंने हमारी आयतों के बारे में हमें हराने की कोशिश की उनके लिए सख्त दर्द देने वाले अजाब की सजा है।

और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो यकीनन हक है और उस अल्लाह का रास्ता बताता है जो गालिब है काबिल-ए-तारीफ है।

और काफिर कहते हैं कि भला हम तुम्हें ऐसा आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम मरकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो तुम नए सिरे से पैदा होगे, या तो उसने अल्लाह पर झूठ बांध लिया है या उसे जुनून है। बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो आफत और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है।

0: और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बर्तरी बख्शी थी और कहा था, ऐ पहाड़ों इनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनका मुसख़र कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो, और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूँ।
1: ولسليمان الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

और हवा को हमने सुलेमान के ताबे कर दिया था, उसकी सुबह की मंजिल एक महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी महीने भर की होती, और उनके लिए हमने तांबे का चश्मा बहा दिया था, और जिन्नों में से ऐसे थे जो उनके परवरदिगार के हुक्म से उनके आगे काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ करेगा उसको हम जहन्नम की आग का मजा चखाएंगे। वो जो चाहते ये उनके लिए बनाते, यानी कले और तस्वीरें और बड़े बड़े लगन जैसे तालाब और देगें जो एक ही जगह रखी रहें। ए आले दाऊद, शुक्र करते रहो और मेरे बंदों में शुक्रगुजार थोड़े हैं।

फिर जब हमने उनके लिए मौत का हुक्म सादिर किया तो किसी चीज से उनका मरना मालूम न हुआ मगर घुन के कीड़े से जो उनके आशा को खाता रहा। फिर जब वो गिर पड़े तब जिन्नों को मालूम हुआ और कहने लगे कि अगर वो गैब जानते होते तो जिल्लत की तकलीफ में न रहते।

अहले सभा के लिए उनके वतन में एक निशानी थी, यानी दो बाग, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। कहा गया कि अपने परवरदिगार का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहां तुम्हारे रहने को यह पाकीजा इलाका है और वहां बड़ा बख्शने वाला मालिक। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाओ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुकरी की सजा दी और हम सजा नाशुकरे ही को दिया करते हैं।

और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर हमारा मकसूद ये था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुमताज कर दें। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज पर निगहबान है।

कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर चीज के भी मालिक नहीं है और न उनमें उनकी शिरकत है और न उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के हां किसी के लिए सिफारिश फायदा न देगी मगर उसके लिए जिसके बारे में वो इजाजत बख्शे, यहां तक कि जब उनके दिलों से इस्तेराब दूर कर दिया जाएगा तो कहेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया है, फरिश्ते कहेंगे कि हक फरमाया है और वो आली रुतबा है, ग्रामी कद्र है।

पूछो कि तुमको आसमानों और जमीन से कौन रिस्क देता है, कहो कि अल्लाह, और हम या तुम या तो सीधे रास्ते पर हैं या खुल्लम खुल्ला गुमराही में। कह दो कि न हमारे गुनाहों की तुमसे पुरसिश होगी और न तुम्हारे आमाल की हमसे पुरसिश होगी।

कह दो कि हमारा परवरदिगार हमको जमा करेगा, फिर हमारे दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर देगा, और वो खूब फैसला करने वाला है, साहिबे इल्म है। कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने अल्लाह का शरीक बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

0: और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।
1: सदकल्लाहु अज़ीम। मौज़े सामीन, कुरान पाक पढ़ने के बेशुमार फ़वाद हैं। हदीस मुबारका में है कि कुरान पाक को देखना भी इबादत है। कुरान पाक पढ़ने से बीमारियों से शफा हासिल होती है। चुनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शफा है। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: और जिस तरह तूने सूरज को उसके मदार में चलाया ताकि वो ज़मीन पर हर रोज़ नई रोशनी फैलाए, वैसे ही हमारे लिए भी हमारी ज़िंदगी के मामलात आसान कर दे और हमारी अंदरूनी रोशनी को ऐसा बना दे जो कभी गुरूब ना हो। आमीन। मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:27 हो चुके हैं। बुध का दिन है, जुलाई की 8 तारीख है और माहे मुहर्रम की आज 22 तारीख है। अब आप समाअत फरमाएंगे। खतीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन वअला आलिही वअस्हाबी अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद, वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तश्उरून। आमंतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु الأمين المتين الأمي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। आप लोगों ने इमाम हुसैन رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا تک کی داستان کو سماعت کیا, اب اس کے آگے کے حالات ہم بیان کرتے ہیں। آج ہم शहादत इमाम हुसैन पढ़ने जा रहे हैं। इंसान के लिए जहाँ पर मरना या शहीद होना मुकद्दर होता है मिन जानिबिल्लाह, ऐसे हालात व असबाब पैदा होते हैं कि हज़ार हा रुकावटों के बावजूद भी इंसान आखिरी वक्त में उसी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। सैयदुश्शुहदा या हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिनका करबला में शहीद होना अज़ल में मुकद्दर हो चुका था, इनके लिए ऐसे असबाब और हालात पैदा हुए कि आप करबला की तरफ जाना उनका ज़रूरी हो गया था। हज़रत मुस्लिम अकील रदी अल्लाह तआला के ख़त के आने के बाद इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की कूफियों की दरख्वास्त कबूल करने में कोई माकूल उज्र बाकी न रहा था। अब इराक जाने के लिए तैयार हो गए और सफ़र के असबाब दुरुस्त होने लगे थे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला, मक्का वालों को आपकी इल्म के तैयारी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपको जाने से रोका। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी, बहुत सारे सहाबा ने आपको आकर के रोका, लेकिन आपको जाना मुकद्दर ही था लिहाजा आप तशरीफ लेकर गए। लिहाजा उसके बाद रास्ते में भी बहुत सारी बातें सामने आईं और सामने आते हुए रास्ते में कई मरतबा ऐसी रुकावटें आईं कि आप करबला ना जाएं। बहरहाल एक मकाम ऐसा आया जहां आने के बाद आपका काफिला रुका और रुकने के बाद आपने देखा सालबिया के मकाम पर। जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद हजरत मुस्लिम नकील की शहादत की खबर आपको मिली। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजून पढ़ा। उसके बाद अब्दुल्ला बिन सलीम और बहुत सारे लोगों ने जो हज से फारिग होकर मकाम जू वादी में पहुंचे थे और उन्होंने काफिला देखा तो उन्होंने जाकर कहा कि आप वापस चले जाएं, हालात बहुत ख़राब हैं। इस तरह से ये काफिला बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते जब आगे पहुंचा तो एक मकाम पर जिसका नाम है मकाम कूह जी हशम, वहाँ पर यह काफिला पहुँचा तो देखा खायम जन है। उधर से हुन बिन यजीद तमीमी 1000 का लश्कर लेकर आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुँचा। यह दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत प्यासे थे। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने सबको पानी पिलवाया, गालिबन इस हमदर्दी के सबब कि आपसे कुछ कहने की जुर्रत ना कर सकें। यहाँ तक कि जब जहर की नमाज का वक्त आ गया, अजान पढ़ी गई तो आपने हमदो सलात के बाद हुर और उसकी फौज को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ कि मैं इस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं आ गए। नहीं आ गए, आप हमारी तरफ आए हैं, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपके सबब हम लोगों को खुदा ताला की हिदायत पर जमा फरमा दें। आप तुम लोगों अपनी बात पर پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہ گئی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

अब हुर से पूछा कि तुम हमारे साथ नमाज़ पढ़ोगे या अलग नमाज़ पढ़ोगे। हुर ने कहा आप नमाज़ पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जब इमाम हुसैन मौजूद हैं तो कोई दूसरा इमाम कैसे बन सकता है। इमाम हुसैन वाला जद्दी ही वाली सलाम ने जो है अपना जो है नमाज़ पढ़ाई, सब ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। अल्लाह अकबर। जब सब ने नमाज़ पढ़ ली उसके बाद में ये काफ़िला यहाँ पर ठहरा। नमाज असर का वक्त आया तो यही हाल हुआ। उसके बाद में जब रात का वक्त हुआ तो थोड़ी दूर काफ़िला चला। उसने कहा इब्ने रसूलल्लाह, मुझे जंग के लिए नहीं भेजा गया, आपको गिरफ़्तार करने के लिए भेजा गया है। लेकिन ऐसा होगा कि रात में आप अपने काफ़िले को लेकर के आगे चलें और मैं अपने काफ़िले को पीछे कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह से यह सफ़र आगे बढ़ा और सफ़र आगे बढ़ते हुए जब आपने दूसरी सिमत जाने का इरादा फरमाया तो आपने पूछा, आप अपने साथियों को लेकर के उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर कुछ खारदार दरख्त थे और वहाँ पर जो ज़मीन रेतीली ज़मीन थी। आपने अपने साथियों से पूछा कि ये क्या है। कहा सामने ये फरात का दरिया बह रहा है। आपने फरमाया इस जगह का क्या नाम है। तो लोगों ने कहा हाज़ी ही करबला उन मौज़ी उन करबू बला इन हादा मनाख उन रिकाबीना व महतु रिजा रिहालीना व मन तकीलु रिजालीना। फरमाया ये वो मकाम है करबला, यही हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है, यही हमारे मालो असबाब उतरेंगे, इसी मकाम पर हमारे साथी कत्ल किए जाएंगे। ये मुहर्रम हराम की 61 हिजरी है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने काफ़िले को उतार दिया और उसके बाद जो है मुहर्रम शरीफ की ये तारीख़ें आगे बढ़ती रहीं। और जैसे ही ये तारीख़ें आगे बढ़ती हैं तो दिन ब दिन ये लश्कर बढ़ता गया, 1,000, 2,000, 10,000, यहाँ तक के 22,000 का लश्कर जर्रा ठहर गया। और उसके बाद में हर तरफ से ये हुआ कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के लिए पानी को बंद कर दिया गया। और पानी को बंद करने के बाद में आपके ऊपर अल्लाह अकबर, जब पानी को फरात के बंद कर दिया गया और पहरा लगा दिया गया कि पानी के कतरात वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो अब ये दिन भी आया कि जब 10 तारीख हुई तो साद ने कहा कि हम जो है आप जंग के लिए तैयार हो जाइए या यजीद के हाथ में बायत कर लीजिए। आपने फरमाया सर तो दे सकता हूँ लेकिन हाथ नहीं दे सकता, अगर हाथ ही देना होता तो मदीना छोड़कर नहीं आता, मक्कतुल मुकर्रमा छोड़कर नहीं आता, अपने भाई को कुर्बान नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। इस मैदान जंग का हाल ये हुआ कि आपने फरमाया एक रात हमें दे दो, सुबह को जो अल्लाह को मंजूर है वही फैसला होगा। ये आशूरा की रात थी। अल्लाह अकबर। इस आशूरा की रात में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला और आपके जानिसार के दरमियान बातचीतें होती हैं। बहुत खुतमे आपने इरशाद फरमाए, फरमाया आप लोग चले जाएं। आपने चिराग को बुझा दिया और उसके बाद जब चिराग जलाया तो उसके बाद जितने लोग पहले मौजूद थे इतने ही लोग बैठे हुए मौजूद रहे। कहा इब्ने रसूलल्लाह हम आखिरी कतरे तक आपके साथ में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह का वक्त हुआ, आपने फरमाया जंग के जाकर के नक्शे का जायजा लो, मैदान को देखो। अल्लाह अकबर। उस मैदान का जायजा लिया गया। सुबह का वक्त हुआ तो जंग का नकारा बजता है। अब यके बाद दिगर आपके जानिसार हैं वो कुर्बान हो रहे हैं, कुर्बान होते रहे, कुर्बानियाँ अपनी पेश करते रहे। सुबह से वक्त शुरू हुआ, जुमे का दिन था। अल्लाह अकबर। 10 तारीख थी मुहर्रमुल हराम की। अब ये जंग का नक्शा ये है कि सुबह से शुरू हुआ और अजान जुमा तक और जुमा की नमाज तक ये पूरा मसला ख़त्म हो चुका था। अब जानिसारों की बारी आई, जानिसार कुर्बान हुए। उसके बाद जब वो सारी अपनी शहादत पेश कर चुके तो उसके बाद में खानवादे रसूल आले बैत रसूल के खानवादे की बारी आई। यके बाद दिगर जवान अपनी कुर्बानियाँ पेश करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अली असगर की शहादत हुई है, हज़रत अली अकबर की शहादत हुई है, कासिम बिन हसन की शहादत हुई है, हज़रत अब्बास अलम्बरदार रदी अल्लाह तआला के बाजू काटे गए हैं। किस तरह से किस अंदाज में करबला की ज़मीन पर शहादतें हुई है। हज़रत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह तआला जो इमाम हसन मुस्तबा की यादगार थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनकी शहादत की बारी आई थी आप तशरीफ़ लेकर गए और ले जाने के बाद आपने फरमा हल में मुबारिस है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला। अल्लाह अकबर। कोई मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में जो बहुत बड़ा फरजक नामी एक शख्स था, फरजूक जो बहुत बड़ा जो है अरजक नामी शख्स था, जो बहुत बड़ा पहलवान था, उससे अमर बिन साद ने कहा कि तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा कि तुम मेरी बदनामी कराना चाहते हो, एक छोटे से जवान के मुकाबले में मैं इतना बड़ा पहलवान जाऊँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बेटे उठे और उठने के बाद ये के बाद दीकर 4 या 5 बेटे उसके जहन्नम रसीद हो गए। उसके बाद अरजक आया, अरजक ने मुकाबला किया। हज़रत कासिम बिन हसन रदी अल्लाह ताला ने उसे भी जहन्नम के हवाले कर दिया। प्यास की शिद्दत लग रही थी, आप अपने चचा के करीब आए और फरमाया चचा जान अल अतश पानी चाहिए, पानी चाहिए, अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो मैं अकेला पूरे मैदान के लिए काफ़ी हो जाऊँगा। चचा

सुल्तान ने अपनी बाहों को फैला दिया और कहा, बेटे आज तक तेरे चचा के दरबार से कोई खाली नहीं गया। ये अहले बैत अतहार की रीत है कि हमारे दरवाजे पर जो भी आया है उसे पूरा कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीर अपनी जबान को निकाला और उनके मुँह में डाल दिया। हज़रत कासिम कहते हैं, जब मैंने अपने चचा की ज़बान को चूसा तो मुझे सुकून हासिल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा उनकी शहादत उज़्मा हुई और इस तरह से शहादत हुई हज़रत इमाम हसन कासिम बिन हसन की। अमर बिन साद ने कहा, अकेले तनहा इसका मुकाबला करोगे तो ये 22,000 को अकेला निपटा देगा, चारों तरफ से इसका मुकाबला किया जाए। अल्लाह अकबर, अब चारों तरफ से कोई तीर बरसा रहा है, कोई बर्छी मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है। ये हुसैनी जवान अल्लाह अकबर कबीरा हसनी जवान चारों तरफ से निकलता हुआ अपनी जान की हिफाजत भी कर रहा है, तलवार भी चला रहा है। अल्लाह अकबर, आखिर में शेश बिन साद नामी एक नापाक आदमी ने सीने पर ऐसा नेजा मारा कि आप घोड़े से नीचे गुजर नीचे तशरीफ ले आए और अपने चचा को याद किए, या अम्मारा अदरिकनी, ए चचा जान मेरी खबर लीजिए, खबर लीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके बाद आपकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, जिसम के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आवाज आई, हुसैन अपने भाई भतीजे की लाश को उठा कर ले जाओ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद जब आपने देखा तो जिस्म का एक एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और आपने अपनी चादर को बिठा करके बिछा करके अपने भतीजे की लाश के टुकड़ों को रखा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर घर में हंगामा बरपा था। सैयदा सकीना कह रही है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने छोटा सा 6 महीने का बच्चा हज़रत अली असगर को गोद में दिया और गोद में देने के बाद फरमाया था, भाई हुसैन, इनकी दुश्मनी हमसे है, ये हमारे खून के प्यासे हैं, ज़रा छोटा सा बच्चा लेकर इनके सामने जाओ और कहो कि इस बच्चे के मुँह में पानी के कतरे डाल दो, क़यामत में होते कोसर का पानी दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे माहौल में जब सैयदुश्शुहदा ने फरमाया था, बहन मैं जानता हूँ इनके दिल बहुत पत्थर हो गए हैं, ये पानी नहीं देंगे। हज़रत कासिम ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अली असगर को अपनी गोद में ले जाकर उठाया, कहा, ए लोगो, तुम जानते हो मैं सैयदा फातिमा का बेटा हूँ, तुम जानते हो मैं मोहम्मद रसूलल्लाह का लख्ते जिगर हूँ, तुम जानते हो मेरे गोद में ये हाथों में एक छोटा सा मेरा बच्चा अली असगर है, पानी का प्यासा, इसको पानी की कदरे दे दो। अल्लाह अकबर, एक ज़ालिम ने मला ने अपना तीर ताना उतान करके ऐसा बच्चे के हलकूम पे मारा के पेवस्त हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने ला करके सैयदा ज़ैनब की गोद में दिया, कहा, ये अब कभी पानी नहीं मांगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटे बच्चे को देखा तो सैयदा तड़प उठी। उसके बाद हज़रत अली अकबर की शहादत हुई, हज़रत अब्बास अलमरदार की शहादत हुई। जब ये सारी शहादतें हो गईं तो आखिर में करबला का ताजदार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु करबला के सिपे सालार बनकर के तशरीफ लेकर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने अपना रुख मुबारक करबला के मैदान की तरफ फरमाया, अल्लाह अकबर, ये हुसैनी, ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह तआला का लख्ते जिगर है, ये अली पाक मुतज़ा रदी अल्लाह तआला का शेर है, ये मुस्तफ़ा की आगोश में खिला हुआ है। करबला के मैदान में उतरे हैं, सर के ऊपर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के मुस्तफ़ा का अमामा है और हज़रत अमीर हमज़ा का पट्टा बंधा हुआ है, ज़ुल्फ़िकार हैदरी साथ में है और अपने भाई का लिबास पहने हुए अल्लाह अकबर कबीरा घोड़े पर सवार हुए और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने जाकर के इत्तिमाम हुज्जत के लिए खुतबा इरशाद फरमाया। उन ज़ालिमों ने नहीं सुना, यके बाद दिगरे सबका मुतालबा यही था कि बैत करो, ये कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तबारक व आला अनहु है, आपने फरमा, बैत नहीं करूंगा, सर दे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम की खातिर सर कुर्बान करा दिया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अब यके बाद दिगरे लोग आते रहे, मुकाबला करते रहे, लेकिन किस्में इतनी जुर्रत है कि इमाम हुसैन की तलवार का मुकाबला करे। जब करबला की ज़मीन पर इमाम की तलवार चली है तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर बिजली खड़क रही है। अल्लाह अकबर, जो सामने आ जाता था सफाया होता चला जाता था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला लोगों ने समझा था, 3 दिन
तक खाना नहीं खाया हुसैन ने, शायद तलवार ना चल सके, पानी नहीं पिया है हुसैन ने, शायद तलवार ना चल सके, लेकिन लोगों को नहीं मालूम था इसकी रगों में हैदर इकर्रार का खून है, इसने सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा का दूध पिया हुआ है, मुस्तफ़ा जहनमत का लुआब दहन इसके मुँह में गया हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे माहौल में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला पर फिर यजीदियों ने जंग के कानून को तोड़ा और फिर चारों तरफ से हमला किया। अब 22,000

लश्कर है, इमाम हुसैन तन्हा है, टूट पड़ा है। अल्लाह अकबर, उन सफ़ों में जिधर को भी हुसैन का घोड़ा गुजर रहा है, तलवार बिजली की तरह कड़कती चली जा रही है और लोगों की गर्दनों का सफाया होता जा रहा है। ना जाने कितने यजीदी जहन्नम के हवाले होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में भी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला है, कभी बर्छी का दावार लगता है, कभी तलवार की नोक लगती है, कभी तीर लगता है, कभी कुछ लगता है, हत्ता कि आप मुकाबला करते रहे और एक जालिम ने तीर आपकी छाती में ऐसा मारा के सीने में आकर के पावस्त हो गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपने घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, जमीन पर जब आप लाए हैं तो सर से लेके पांव तक तकरीबन 72 तलवारों के और पर्चियों के जख्म थे, जिस्म पर कोई हिस्सा बाकी नहीं था जहां से खून न फूट रहा हो और खून की नदियां ना बह रही हो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर तशरीफ लाए, लोगों ने समझा हुसैन जमीन पर आ गया। आपने फरमाया, लोगों मुझे कूफा की मस्जिदों से अजानों की आवाजें आ रही हैं, बताओ तो क्या वक्त हुआ। लोगों ने कहा कि नमाज जुमा का वक्त हुआ है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने उसी वक्त नियत फरमाई और जुमा के लिए आपने सर्व सुजूद हुए। लोगों ने यजीदी लश्कर में कहा, बहुत अच्छा मौका है, अब इस वक्त जो है इनकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। माज़ल्लाह, अगर इनकी गर्दन नहीं शहीद की गई है तो फिर अगर इनका सर उठ गया तो कोई जिंदा बाकी नहीं रहेगा। सर सजदे में था और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की गर्दन पर तलवार चली है और तलवार चलने के बाद गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसी नमाज इश्क इमाम हुसैन ने पढ़ी है। सजदे जो सब ने किए पस तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुद खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहादत हुई है। लोगों ने इमाम हुसैन के सर को उठा करके नेज़े पर बुलंद करके अपनी अपने जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हुसैन की शहादत हुई। लेकिन शहादत हुसैन ये बता रही है, और वह उन्होंने जो है नेज़े पर सरों को उठाया और फिर जुलूस निकाले और ढोल और लंगाड़े बजाए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैनी वो हैं जो ढोल के करीब नहीं जाता ही, यजीदियों ने ढोल बजाया था। और जब ढोल को बजा करके जैनब के खेमे के करीब लेकर गए, कहाँ तेरा भाई हक पर नहीं था, देखो इसका सर हमने उठा कर नेज़े पर पलंद किया। तो अली के लहजे में सैयदा जैनब ने जवाब दिया था, अमर बिन साद तो इतना भी नहीं जानता है कि जो जीतता है वह ऊपर होता है, जो हारता है वह नीचे होता है। नज़र उठा करके देख, मेरे भाई का सर आज भी तुमसे बुलंद है। जब उसने नज़र उठाई तो लब हिल रहे थे और लबों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी। तभी तो किसी ने कहा, कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुसैन पाक की सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमाए और हुसैन पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अनु की मोहब्बत से हमारे सीनों को आबाद फरमाए और क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे जगह अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक सबक आमूज़ बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। जुम्मा 10 जुलाई, जी हाँ, जुम्मा 10 जुलाई सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिज़वी पोर्ट लुइस निकोले रोड में शैला आपा की सरपरस्ती में, जी हाँ, शैला आपा की सरपरस्ती में नियाज 12 इमाम के मौके पर खवातीन के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ुहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा जुम्मा 10 जुलाई, जी हाँ, जुम्मा 10 जुलाई बाद नमाज इशा, जी हाँ, बाद नमाज इशा कास्टेलिना हॉल कोचमिल्टेया मॉरिशस में मोहतरम मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी की सरपरस्ती में दावत इस्लामी की जानिब से एक बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। अबू अली और अम्मी शमीमा वजद अली के लिए उनकी बेटी शिफा, उनके इंदामात अजमेर और उनके नवासे एजान ने ढेर सारी दुआएं और प्यार भेजा है। इसके अलावा सैंपल से रिहाना और रियाज एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

Person. दोपहर के ढाई पड़ चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं अभी आपकी पसंद प्रोग्राम, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और आज बुधवार 8 जुलाई 2026 गीतों का कार्यक्रम, आप लोगों की पसंद, आपके कब पसंद के गाने हम चलाएंगे ज़रूर। और आपको फ़ोन करना है 4028085408085 और नंबर आप भेज सकते हैं मैसेजेस 5251700 5। तो चलिए आज का पहला गाना हम सुनने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, किशोरदा की आवाज़ में, जहरा जहरीला इंसान फिल्म से लिया गया। तो चलिए ये गाना एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी मौसम जो है ठंड है, रोमांटिक है, और कुछ लोग घर पर है ज़रूर, लेकिन कुछ लोग तो काम भी कर रहे हैं, तो इस ठंड मौसम में काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपको इनकरेज करने के लिए हम यहाँ पर है, और ये गाना आपके नाम।

चलिए आपके पसंद प्रोग्राम और यहाँ पर आज की पहली फरमाइश विश्वानी डुमन जी के लिए। वो हमें सुन रही है वाकवा से और गाना खासकर वो मांग रही है बहन इंदिरा शारदा, सहेली नीला प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए। चलिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ रोज़ अपनों के लिए गाने मांगते हैं, अच्छा लगता है कभी कभी तो। और ये गाना फिल्म मजेदार का ये खूबसूरत गाना एस पी बाला सुब्रमण्यम और साथ में अलका याग्निक जी को भी हम सुनेंगे। तो चलिए 90s के चाहने वालों के लिए।

जहाँ सागर से गहरा है प्यार हमारा, जी हाँ, प्यार कभी कभी जब सच्चा हो जाए तो वो गहरा होता जाता है। और यहाँ पर गाना खासकर हम चलाने जा रहे हैं अगला गाना, और ये गाना फिल्म 20 साल बाद झूठा कहीं का फिल्म से लिया गया है, जी हाँ। और ये गाना खासकर अमृता जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम और आलबेया, और गाना वो मांग रही हैं करुणा, अमृता, कविता के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। चलिए, जीवन के हर मोड़ पर अगर मिल जाए कि हम सफ़र, तो ज़िंदगी और खूबसूरत बन जाएगी।

बरसात के मौसम में अभी ज़िंदा रहने दो, पीना है तो पीने दो, लेकिन अभी क्या पीना है, अगर पीना भी है तो चाय पी लीजिए गर्मा गर्म। 2:52 हुए हैं और इस गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। और अभी के लिए ये प्यारा सा गाना नजायज़ फिल्म से लिया गया, ये गाना खासकर धनी जी के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बुआशेरी, और ख़ास गाना वो मांग रहे हैं यश और हेमिश के नाम। तो चले ये गीत आप लोग एंजॉय कीजिए इस मौसम में, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। साझा अस्पताल अफलाक में अब नई सीटी स्कैन सर्विस शुरू हो गई है। मुरशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में ये पहली बार है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने आज सीटी स्कैन सर्विस का उद्घाटन किया। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी और मरीजों के बेहतर इलाज के वास्ते अच्छी सेवाएं प्रदान करने की सरकार की कटिबद्धता का उल्लेख किया है। इस नई सिटी स्कैन सेवा से मरीज पूर्वी क्षेत्र में ही अपना स्कैन करवा सकते हैं और उन्हें दूसरे अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। आज एमरशस के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर सातो हाजी अब्दुल्ला पोटवी इंटरमीडिएट अदालत में पेश हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ग्रांट थॉर्नटन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड और एमरशस के बीच ठेके को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत उनसे पूछताछ की गई थी और इसी सिलसिले में वो पोटवी अदालत में पेश हुए। रणनीतिक तिजारत और ख़रीदारी के सिलसिले में मुरशस और सिंगापुर अपना सहयोग और गहरा कर रहे हैं। गए 6 जून को मुरशस में सिंगापुर के उच्चायुक्त मिंग यान लिम ने दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने की दिशा में व्यापार मंत्री सीक्यूएन से मुलाकात की। तिजारती यानी व्यावसायिक साझेदारी के अलावा सिंगापुर की महारत बांटने पर भी बातचीत हुई है। विदेश में मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है क्योंकि दोनों देशों के बीच हवाई हमलों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इस बीच तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी आई है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

3:10 हुए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। चलिए इस खूबसूरत प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। याद दिला दें, नंबर है 4028085408085। और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं सुदेवी जी के लिए। वो हमें सुन रही है फ्रॉम वाक्वा और गाना खास कर वो मांग रही है दीदी ललिता, कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, देवीना, बिंदु, संगीता, जीवराज, मालेंगा के याशना, नीरज, लक्षिका, कृषिका, राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुआगू परिवार, रागुबर परिवार के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से आपने किसी को मिस भी नहीं किया है अभी। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे 20 साल बाद फिल्म से लिया गया

keep us in. एक दिल सौ अफसाने, जहाँ फिल्म का नाम है, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में अगला गाना सुनते हैं और ये गाना जाएगा माला सुमाहु जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम काठरबोर्न और साथ में शिमला जी भी है। नमस्ते आपको। गाना मांग रही है अपनी बहन रूमा आरती, इंदिरा और भाई राकेश, धीरज और बेटा है नमलेश, बेटी कीर्तिना और आप हैं शिमला, आप रहती हैं रोजबेल, तो चलिए आपके लिए भी ये गाना जाएगा।

प्यार करते हैं और उसको जताना भी चाहिए। आरका याग्निक और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ों में। तो चलिए अगला गाना हम सुन रहे हैं, और गाना खासकर ज्योति जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम यूनियन पार्क। गाना खासकर वो मांग रही है प्रीति मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: तीन बजकर 19 मिनट हुए हैं और चलिए अगला गाना जुअल टीफ फिल्म से लिया गया लता जी की आवाज़ में, और ये गाना जाएगा खासकर अनीता जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिकॉ फ्लाक, और गाना वो मांग रही है अपने लिए, अपने सभी दोस्तों और परिवार के लिए, और ख़ासकर विद्या जी जो हमें सुन रही है फ्रॉम यूनियन पॉक, आपके नाम जाएगा

0: की पसंद।
1: तीन बजकर 23 मिनट हुए हैं और श्रोताओं, जैसे कहते हैं ना, कर्म अच्छा होना चाहिए और बाकी सब अच्छा ही होगा। और यहाँ पर फिल्म का नाम है अरब का सोना, फिल्म से लिया गया नितिन मुकेश की आवाज़ में। और ये गाना खास कर हम चला रहे हैं बंधु परिवार जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम थयोले।

3:30 बज चुके हैं और यहाँ पर अगला गाना, चलिए 90 से लिया गया ये प्यारा सा तराना, टाल फिल्म से लिया गया, अलका जी और उदित नारायण की आवाज़ों में, और ये गाना खास कर उन सभी लोगों के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। सो वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और साथ ही साथ में अजय जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बासा रोड काठरबोन, उनके लिए भी ये गाना।

और श्रोताओं, जी हाँ, खासकर गाना हम चला रहे हैं नाविद के लिए। जी हाँ, नाविद का जन्मदिन है आज, तो उनको हम ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

की पसंद। जी हाँ, ताल से ताल मिला, सुर से सुर मिला और यहाँ पर आप लोगों के गाने हम चला रहे हैं, खासकर ऑन रेडियो मॉरिशस। नंबर है 4028085402808 और आपके मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5251700005। और चलिए अगला गाना आजकल। जी हाँ, फिल्म का नाम है नगीना, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में, और ख़ास गाना हम चला रहे हैं मुकेश मोहन के लिए और दिव्यानी जो रहते हैं ओरिएटा वाक्वा।

आपकी पसंद। तीन बजकर 43 मिनट हुए हैं और चलिए मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ के बाद हम सुनेंगे गाने। और लता जी की आवाज़ में खासकर गाना हम चला रहे हैं इंदिरा लॉटन जी के लिए, और वो इस समय हमें सुन रही है। गाना वो मांग रही है खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, गिन गिन तारे।

की पसंद। ऐसे सुंदर सुंदर गाने सुनने को मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और आपके डेडिकेशन, आपकी फरमाइश के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गुमनाम फिल्म का ये खूबसूरत गाना, अगला गाना खासकर रेहाना के लिए जो हमें सुन रही है, फ्रॉम फेनिक्स, जाने चमन शोला बदन, बाहों में आ जाओ, रफ़ी साहब और शारदा की आवाज़ों में।

Bellissimo. चलिए प्रिया श्रोताओं, आपने साथ दिया इस खूबसूरत प्रोग्राम में, और ये गाना जाएगा माँ हिंज के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। धन्यवाद आपको, और ख़ासकर नसरीन जो रहती है वाकवा। क्षमा कीजिए, आपके गाने हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन फिर भी आपके नाम हमने लिया है। और नसरीन जो है गाना मांग रही है नानी नाना के लिए, और उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। हमारी मुलाकात होगी शाम के 5 बजे अंताक्षरी प्रोग्राम में। तब तक इस गीत को आप लोग एंजॉय कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द।

0: स्वर तरंग,
1: स्वर तरंग,
0: स्वर तरंग, स्वर तरंग,

0: वजह मुस्कुराने की।
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 5:16, और ये जो गाना था फिल्म एक अधूरी कहानी और सैयारा फिल्म का गाना, वी आर डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू पूजा, अरुणा, मेधा, पूजा, दामिनी और अंसोफी तथा दीपशिका के लिए। वो खुश हो गए होंगे, चिल्ड्रंस कोर्ट के कोर्ट में वो कार्यरत है। और अभी 5:16।
0: अंताक्षरी

0: हमारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और राधा। अंताक्षरी प्रोग्राम में आप लोगों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं और आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि उषा जी आपके मध्य में हैं।
1: जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। और वैसे तो आज बुधवार है, बुधवार का दिन, तो अंताक्षरी प्रोग्राम आप सुनते हैं यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर, और खास पर यहाँ पर हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं। तो हमारे जो लिसनर्स हैं, तो आप अगर सुन रहे हैं, आप हमें देख भी सकते हैं ऑन टिकटॉक।
0: बिल्कुल, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। और आज का जो विषय है बड़ा ही आसान सा है, तो चलिए पहला गाना हमेशा की तरह आप अपना खुद का गाना गाएंगे जो आप बेहद पसंद करते हो।
1: बिल्कुल।
0: और जो दूसरा गाना होगा वो होगा म्यूजिक राउंड। हालांकि म्यूजिक डे तो समाप्त हो गया
1: लेकिन क्या करें, म्यूजिक डे तो है ही, लेकिन देखा जाए रोज सुबह शाम लोग जुड़े रहते हैं रेडियो के साथ, और यहाँ पर बिना विषय सुने लोग फोन करने लगते हैं।
0: क्या कह रहे हैं, अंताक्षरी का जादू ही ऐसा है। तो चलिए जो म्यूजिक राउंड हम करेंगे आप लोगों के लिए, धुन चलाएंगे, वो रहेगा स्पेशल जिन कलाकार ने इस जुलाई महीने में जन्म लिया या उनके देहांत हो गया है। उन जैसे संजीव कुमार साहब है, रणवीर सिंह है, वगैरह वगैरह हम आपको बताएंगे। तो चलिए नंबर बता दीजिए बहना,
1: 402-8085 और ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप खेलना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप
0: इस नंबर पर फोन
1: कर सकते हैं और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5251700 5।
0: बिल्कुल। हाँ, तो तीन प्रकार के माध्यम है आपको अंताक्षरी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, फोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा या फिर टिकटॉक द्वारा।
1: बिल्कुल। और तो क्या करें, यहाँ पर एक
0: श्रोता है, उनको ले लें।
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, चलिए ले लेते हैं उनको। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी।
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी।
0: ऑन एयर? हाँ, तो सुन रहे हैं थोड़ा बहुत?
1: हाँ जी, हम आपको सुन रहे हैं।
0: हेलो।
2: हाँ, मैं श्यामा विलमे से हूँ।
0: हाँ श्यामा जी, विलमे से आप बात कर रही हैं, आपका स्वागत है श्यामा जी। हाँ। तो चलिए पहला गाना आप गाइए, अपना पसंदीदा गाना गाइए प्लीज।
2: हाँ, तो कल संजीव कुमार के जन्मदिन है ना, तो उसी के लिए एक गाना।
0: बहुत अच्छा, गाइए।

0: जी हाँ, तेरे नाम का दीवाना, अब तो अंताक्षरी की दीवानी निकली। बहुत अच्छा, तो चलिए अब आपके लिए संगीत राउंड। और ये जो संगीत है, इस धुन को आप पहचानिए, देखते हैं आप जानेंगे या नहीं। सुनिए।
1: एक हसीन सफर, रेडियो मॉरिशस।
0: कैसा ये गाना कंटिन्यू होता है बताइए। याद आया आपको? नहीं, कोई बात, ये तो एक जिंगल है, मैंने आपसे मजाक किया। अब ये गाना सुनिए, राजेंद्र कुमार साहब का की बरसी शनिवार को या रविवार को है।

0: जी श्यामा जी, गाइए।
1: हाँ, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत से
0: सारे जमाने पे
2: से
0: मौसम
2: हाँ,
0: सुहाने पे।
2: मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे, बेचारी से दीवानी आप आए बाहर आए ये
0: जी हाँ, आपने सही गाना गाया, आप आए बाहर आई।
2: हाँ
0: बहुत धन्यवाद श्यामा जी, बनती है फर्स्ट ऑफ द वीक आप। ओके, बाय
2: ओ
0: बाय
2: ओके बाय
0: बाय।
1: चलो,
0: हाँ उषा जी, कुछ कहना चाहती
1: यहाँ
0: हैं?
1: पर इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, हम उनका नाम लेंगे
0: क्यों नहीं?
1: क्योंकि टिकटॉक पर भी हमने बोला है कि ये कार्यक्रम आप देख भी सकते हैं।
0: और सुन भी
1: और
0: सकते
1: यहाँ
0: हैं।
1: पर हमें देख रहे हैं मीनाक्षी, नमस्ते आपको, और नाविद भी है, नमस्ते माया रामदोस, और वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू
0: हैप्पी
1: नाविद
0: बर्थडे टू यू।
1: और गुचिना गंगा भी सुन भी है, हाय हाउ आर यू, फाइन, जी हाँ हम भी ठीक हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम, शोभा जी नमस्ते आपको, वीर
0: नमस्ते।
1: सिंह है नेपाल और मॉरिशस, सेम सेम एफएम रेडियो, क्या
0: क्या
1: बात
0: बात,
1: है।
0: बहुत बढ़िया,
1: तो क्या करें, एक और श्रोता को हम लेते हैं।
0: जरूर ले लेंगे।
1: हेलो
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, नमस्ते उषा जी,
1: नमस्ते
0: नमस्ते
1: हाउ आर
0: सरिता जी
1: यू,
0: फ्रॉम कटरबोन।
2: आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू।
0: फाइन, यस ऑफ कोर्स, इफ यू आर फाइन वी जस्ट शाइन हियर। चलिए सरिता जी, अगर आप शाइन करना चाहती हैं तो पसंदीदा गाना गाइए, प्लीज गाइए।
2: जी, मैं तेरे प्यार में

0: बहुत सुंदर सरिता जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, इस प्रोग्राम से पूर्व उषा जी मुझे बता रही थी कि उन्होंने क्या खूब ये गाना सीखा है
1: जी
2: धन्यवाद,
0: और बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया है। ओके
2: तो, एक मंदिर का गाना।
0: हाँ जी बिल्कुल, कल संजीव कुमार साहब का जन्मदिवस है, तो उस पर आधारित ये धुन सुनिए और पहचानिए। ओके सुनिए।

0: बिल्कुल, आपके बिना जिंदगी से शिकवा नहीं है। धन्यवाद सरिता जी, ऐसे ही आप गाते रहें। बाय
1: बाय बाय। और यहाँ पर नर्वदा रमा स्वामी है और
0: क्या बताती है वो,
1: हम इन हाई बोल रहे हैं।
0: Hello,
1: जैसे कि हमने कहा कि आप लोग टिकटॉक पर भी हमें देख रहे हैं और वैसे क्वेश्चंस जो है गाना आप सुन रहे हैं, शुरुआत आप जवाब दे सकते हैं कैसे लिखना है और यहाँ पर आपका नाम भी लेंगे। अगर आपने सही जवाब भी दिया है तो ये भी बताएंगे।
0: बिल्कुल, अगर आप फोन द्वारा नहीं भाग ले रहे हैं लेकिन टिकटॉक द्वारा, तो यही सही। बहुत अच्छा।
1: हाँ जी,
0: तो चलिए बहना, अगर कोई और है तो ले लेते हैं।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते रोशन जी।
0: ओ नमस्ते देवी जी।
2: नमस्ते उषा जी।
1: नमस्ते आपको।
0: कैसी हैं आप?
2: मैं

0: ठीक है।
1: बहुत ठंड पड़ रही है हाइलैंड्स में, है ना? तो
0: बहुत
1: चलिए ठंडी,
0: बारिश भी
1: हाँ ठंडी
0: ठंडा
1: ठंडी हवा, ठंडे ठंडे मौसम में कोई ठंडा ठंडा गाना गाइए।
0: ठंडा। मैं सोच रही थी कि क्या गाऊं, तभी
1: गाइए।
0: मुझे याद आया कि आज नीतू सिंह जी का जन्मदिन
1: अरे
0: है,
1: वाह, क्या बात।
0: तो उन्हीं के लिए
1: गाइए।
0: बचपन का गाना है।
1: हाँ गाइए।
0: मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे,

0: क्या बात है
1: देखी।
0: देवी जी, बहुत सुंदर। मुझे तो एक और गाना याद आया, पड़ोसन अपनी
1: बच्चे
0: मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा जवान हो गया। ओके देवी जी, ये तो हो गया आपका पहला गाना। अब
1: हाँ
0: आपने नीतू सिंह जी का नाम लिया है ना, क्योंकि आज
1: हाँ
0: उनका जन्मदिवस है, तो हम भी पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं।
1: हाँ
0: तो ये नीतू सिंह जी पर आधारित है, सुनिए और पहचानिए।
1: ओके। एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। थैंक यू।
0: बिल्कुल देवी जी, हमने ये जो आज का राउंड चुना है बहुत ही इजी राउंड है। उषा जी ने कहा दो सप्ताह,
2: गाना खत्म होने से पहले ही आपने गाना
0: शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो आपने झट से आपने पहचान लिया, क्या बात
1: आज
0: है।
1: प्रोग्राम था आज सुबह ना,
0: हाँ क्या बात है, इसीलिए आपने झट से पकड़ लिया।
1: पता चला कि आज उनकी,
0: हाँ तो बहुत अच्छा होमवर्क कर रही हैं आप हैं। बहुत अच्छा, ओके धन्यवाद,
1: सुबह से ही।
0: बाय
1: बाय।
3: दोनों मिले इस तरह,
0: जी उषा जी, दोनों मिले इस तरह।
3: मन में हो रहा है ये तो होना ही था।
2: एक मैं और एक तू,
0: बिल्कुल मिलने की वो तो गुंजाइश है ही यहाँ पर, है ना। चलिए,
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
4: नमस्ते बहन।
2: नमस्ते भैया, कैसे हैं आप?
0: जय भाई।
4: अच्छा बहन,
0: कैसे भाई जी, ठीक हो?
2: अच्छा हाय। अरे आपके जो रेडियो है ना, वॉल्यूम कम कीजिए क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है।
4: आतान कर रहा
0: था, आतान नहीं कर रहा, आतान
2: कैसे कर
0: रहा, आतान कर रहे
2: थे, आतान आतान कर रहे हैं। और यहाँ पर रेशमी है। रेशमी कैसे हैं आप? और हम आपको यही बताना चाहते हैं, जो लोग ये लाइव देख रहे हैं ना, तो इस पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच,
0: बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई,
2: हाँ
0: जी
2: सुन रहे हैं।
0: नमस्ते भाई जी, तो चलिए आप अपना पहला गाना गाओ।
4: हम आता तो बात है, गीत गावा थे।
0: अच्छा गावा, लेकिन अंतरा नहीं गई है।
4: अच्छा, गावा। अच्छा। ये

0: तो रोजे आंसू, मैं हंस लूं तो हंस दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
1: बहुत अच्छा भाई जय जी, बहुत ही पुराना गाना और रेया गाना आपने चुना है। अब आंसू भी हंसने लगे, क्या बात है, क्या बोल है इस गाने के, बहुत अच्छा लगा।
2: बोल अच्छे हैं लेकिन दर्द भरे गीत भी है।
1: बिल्कुल, और आप जब आते हैं
0: ज्यादा गाती लेकिन आपका
1: हाँ
0: वक्त नहीं बना,
1: वक्त नहीं बाय को दूसरा दिन तो हरा इत्मीनान से बोला वापस तब गई है।
0: हाँ, नहीं, नहीं, कुछ बात नहीं भैया,
1: तो चलो भाई। हाँ, हाई धुन सुना और पहचाना, और ये जो धुन है रफी साहब पर आधारित है, उनकी बरसी है 31 जुलाई को, तो चलिए सुनिए।

0: क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम ये इरादा। क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम ये इरादा।
1: भूलेगा दिन जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा।
2: सुना आपने, वादा निभाना पड़ेगा आपको। ओके ओके जय भाई, आपने पकड़ लिया बहुत अच्छी तरह से, और ऐसे ही आप भाग लेते रहें। ओके भाई जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, धन्यवाद आपको। और यहाँ पर मोहन राज बंसी है, नमस्ते आपको। और कौन है, माधवी, हेलो टू मिस्टर हरनम।
2: ओ नमस्ते, हेलो टू यू माधवी जी। हाँ जी,
1: हाँ जी,
2: आपको हम नमस्ते करते हैं, बिल्कुल।
1: और भी लोग हैं, लेकिन अभी के लिए हम एक और कॉलर लेंगे। हेलो,
2: चलिए लेते हैं। हाँ जी, दिल नहीं भूलेगा आपको। कौन है आप? हेलो,
3: उषा जी को और रोशन जी को आशा दलों के ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: कैसी हैं आप आशा जी?
3: मैं अच्छी हूँ, आप दोनों कैसे हैं?
2: हम भी ठीक हैं जी।
1: हाँ जी,
2: चलिए, आप कौन सा गाना बेहद पसंद करती हैं इस सप्ताह का?
3: अभी आपने कहा ना, कोई ठंडा ठंडा गाना।
2: ओह अच्छा, चलिए, केवल आप ही पर अमल हुआ हमारा, जो हमारी जो बात है। चलिए गाइए।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से रुत गए, गुलों के शोखियाँ आज भौरे आके लुट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाल क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं।
1: हाँ, अच्छा। गाना अच्छा है, लेकिन जो दो फर्स्ट लाइन है आपने वो धुन ही चेंज कर दिया। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ के, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके। हाँ जी, क्योंकि अगर आपने धुन थोड़ा सा यहाँ वहाँ कर दिया ना, तो ये एक और ही सुर दे जाता है।
2: कोई बात नहीं आशा जी, लेकिन आपने लुटेरा का
1: गाना आपकी पसंद, और यहाँ पर सुनिए ये धुन।
2: इस धुन को आप पहचानिए, अनूप जलोटा जी का भी जन्म दिवस जुलाई महीने में ही है, तो चलिए उन पर आधारित ये धुन बहुत ही आसान।

0: बहुत अच्छा, तोहफा मोहब्बत फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत ही जबरदस्त आपने पहचान लिया है आशा जी, धन्यवाद आपको।
1: थैंक यू, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या।
2: और यहाँ पर नर्वदा रामा स्वामी है, एक फरमाइश कर रही है कि अंत में मैं ये गाना गाऊं, लेकिन अंत का क्यों, अभी से गा लेती हूँ।
0: हाँ जी, कौन सा
2: शीशा हो।

0: जी बिल्कुल। और उषा जी ने ये गाना गाया है, लेकिन लगता है उन्होंने ये मांग की क्योंकि आशा का नाम सुना और फिल्म का नाम भी आशा है और ये गाना आपने आपसे कहा कि गाने के
1: हाँ
0: लिए
1: जी,
0: बहुत
1: और
0: ही
1: यहाँ
0: अच्छा।
1: पर दीना गंगवा कैसी हैं आप? मंजुला कावले सोहाई डियर,
0: हाय
1: ना
0: मंजुला
1: हाँ
0: जी।
1: जी, नाइस सॉन्ग। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है, मैं उनसे मिली हूँ और वो

0: 2 सप्ताह पहले, मेरे
1: अच्छा
0: ख्याल से 2 हफ्ते पहले मैं मिली हूँ।
1: अच्छा तो देखते हैं
0: हेलो
1: कौन है वो।
2: हेलो उषा बहन, नमस्ते।
0: हाँ जी,
1: नमस्ते।
2: मेरे भाई को भी मेरी प्रणाम।
1: प्रणाम अमृता जी,
0: कैसी हैं
1: आप
0: आप?
1: बहना से
2: मैं
1: मिली?
2: ठीक हूँ, आप दोनों ठीक?
1: हाँ जी, हम ठीक हैं। आप तो मिल गई उषा जी से।
0: हमारी मुलाकात
2: हाँ,
0: हुई और मैं
2: हो
0: इतनी
2: गई
0: खुश
2: है।
0: हुई कि हाँ चलो, ये अमृता जी हैं ऑफ ओकुले। वैसे आप लोगों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, लेकिन आपका जो चेहरा हम देख नहीं
1: बिल्कुल नहीं
0: पाते,
1: पाते
0: और जब
2: हैं।
0: आप लोग सामने आ जाते हैं तो बस दिल खुश हो जाता है।
1: बहुत अच्छा, क्या
2: वो हाल
1: सही बात
2: मेरे भी
1: आपने
2: है।
1: कही है। बहुत अच्छा, हमारे जो श्रोता है ना, बहुत प्यार बरसाते हैं हम पर।
0: बिल्कुल
1: तो चल अमृता जी, आपका नाम ही अमृता है, केवल उषा जी पर नहीं बल्कि सबों पर अपना प्यार जताइए
2: हाँ,
1: और गाना
2: सभी
1: गाइए
2: ये
1: प्लीज।
2: सही है। बरसात पर
1: बरसात पर गाइए।
2: जी सीता।

0: रिम रिम झिम सितारों का नहीं, झिम सितारों का। मेरा ख्याल से ज्यादा बरसात है ना, इसीलिए रिम झिम किया था। हाँ,
1: लेकिन आपने क्या खूब रिम झिम को उस गाने में फिट कर दिया है, इतनी चालाकी के साथ
2: है।
1: कोई बात नहीं, तो चलिए अब ये धुन सुनिए। और संजय दत्त संजू बाबा का भी जन्म दिवस जुलाई महीने में है, तो चलिए ये धुन सुनिए और पहचानिए।

0: हाँ जी गाइए,
1: पते।
0: याद आया आपको, बहुत ही आसान है ये तो, तिनामुने मोरे संजय दत्त।
2: कौन सा गाना
1: का ये
2: है?
1: जो
2: बोलिए
0: बोलिए, टिकटॉक पर भी आप लोग जवाब दीजिए।
1: देखिए, शायद बन
0: उषा जी जरा मदद कर दीजिए प्लीज।
2: रॉकी मूवी।
0: रॉकी मूवी,
2: यहाँ पर किसी ने सही जवाब दिया है,
0: क्या
2: रानी
0: बात है।
2: जोईसूरी। और गाना है, क्या
0: सुनिए।
2: यही प्यार है?
0: हाँ ये

0: कोई बात नहीं,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: ये प्यार है,
0: यही प्यार है अंताक्षरी के प्रति, यही प्यार है अमृता जी।
2: धन्यवाद भाजी।
0: ओके बाय बाय,
2: मेरी प्रणाम
0: प्रणाम।

0: जी हाँ, पूरे मॉरिशस भर को अंताक्षरी प्रोग्राम से प्यार है।
1: और यहाँ पर हमें देख रहे हैं फ्रॉम कनाडा,
0: कनाडा से
1: हेलो गाइस, हाउ आर यू, संधिया हियर फ्रॉम कनाडा। वाओ, एवरी वेंसडे वी वेट, ओ माय गॉड, फॉर योर शो टू सी लाइव। क्या बात है, बस यही सुनना था हमें।
0: और
1: हाँ जी, और यहाँ पर लोग मांग रहे हैं कि हम गाएं, गाना ये है

0: क्या बात है, दिल है हाँ ये मानते नहीं फिल्म का गाना।
1: और कुछ लोग हमें क्यूपिप से भी देख रहे हैं।
0: बहुत अच्छा, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, हमेशा आप ऐसे ही
1: और
0: गाते रहे।
1: शावी भी है, हेलो शावी। और जोयसुरी रानी जो है वो इटली से हमें देख रही हैं,
0: इटली से, कनाडा से।
1: धन्यवाद। और हम यही मांग करते हैं कि आप इस प्रोग्राम, इस लाइव को शेयर करो,
0: लाइक
1: करो और फॉलो करो।
0: फॉलो भी करो, बिल्कुल फॉलो द लीडर। तो चलिए अब देखते हैं किसकी बारी है।
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो सर,
0: इंदिरा जी मोडालबिया से। कैसी हैं आप इंदिरा जी, ठीक हैं?
2: मैं अभी ठीक हूँ। हाँ जी हाँ, नमस्ते, बहुत शुक्रिया।

0: जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे।
1: सुंदर सा गाना आपने गाया, बच्चे मन के सच्चे, बहुत ही अच्छे। तो चलिए अब ये गाना आपको गाना पड़ेगा, धुन चल पड़ा। और ये जो धुन है, नसीरुद्दीन शाह साहब और जुगल हंसराज दोनों के जन्मदिवस जुलाई महीने में ही है, सुनिए।
2: याद है पंचम, जब भी कोई नई धुन बनाकर भेजते थे तो साथ कह दिया करते थे, ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ गए हो पंचम,
1: सुनिए।
2: जिंदगी का ये खेल अकेले नहीं खेला जाता, हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो।
1: जी कौन सा गाना है?
0: मुझे याद नहीं
3: है।
1: ये गाना आपको याद नहीं है इंदिरा जी? आपने तो हम दोनों को मायूस कर दिया। ओ
3: अब तो सच में हम नाराज हो जाएंगे।
1: नाराज हो जाएंगे, लेकिन सुनिए सुनिए ये गाना और आपको याद चला आएगा।
3: तो
1: जी

0: आपको याद आया अब।
1: अरे सुर से सुर मिला लिया मैंने।
0: हाँ देखा आपने, बिना सुने ही
1: बिना सुने सुर से सुर मिला लिया।
0: कोई बात नहीं नीरज जी, धन्यवाद आपको, बाय।
1: ओके हेलो स्वीटी, नमस्ते बोथ ऑफ यू, शारदा फ्रॉम प्लेंडे पपाई।
0: नमस्कार, हम स्वीकार करते हैं शारदा जी।
1: और यहाँ पर जय भी है, जय जो हमें देख रहे हैं। नमस्ते जापानीज गुड़िया, पता नहीं मुझे जापानीज गुड़िया बोलते हैं
0: तो सयोनारा कह देना उनको।
1: सयोनारा
0: लगता है कि बहुत ठंड का मौसम है ना।
1: हाँ, और यहाँ पर अजमेर खान भी है, जुड़ चुका है। और यहाँ पर शोभा जी, गाना मेरे लिए गाना देना, ओ मेरे शामे, ओ
0: मेरे शामे गुबार।

0: नहीं होता। चलिए हमको मार, हम हमें मार खाएंगे, हम मार खाएंगे क्योंकि यहाँ पर
1: लोग इंतजार कर रहे हैं गाने के लिए, लेकिन फिर भी अब फरमाइश भी तो पूरी की जा सकती है ना। चलिए अब हम देखते हैं कौन लाइन पर है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी, उषा जी।
1: नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, अभी तक खांसी हो रही है लेकिन
1: अभी तक
2: स्ट्रगल कर रही हूँ।
1: स्ट्रगल कर रही हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप पर विश्वास रखें और पहला गाना गाइए मीनाक्षी जी।
2: जी
1: गाइए।

0: बहुत अच्छा, बड़े दिल वाला फिल्म का गाना आपने गाया है,
1: या
0: बहुत ही सुंदर सा गाना। चलिए अब आपके लिए जो धुन चलेगा भी वो जरीना वहाब पर होगा। और उनका जन्मदिवस भी जुलाई महीने में ही में।
1: ठीक, बहुत
0: ओके,
1: बढ़िया।
0: आप
1: ओके, बाय
0: मायूस ना हो,
1: बाय।
0: सुनिए सुनिए आप
1: कहाँ से बाय बाय।
0: सुनिए।

0: जगदीप जले आना
1: नहीं
2: जी, इसी फिल्म का एक दूसरा गाना है जी।
1: कौन सा गाना है
2: आ रहा है अभी
0: तुझो मेरी
1: वेरी गुड।

0: ही है।
1: क्या बात है, पकड़ लिया आपने 70s का
0: एरा। दोनों गाने के म्यूजिक
1: म्यूजिक है, सुर मिला लिया आपने और सफल भी हो गए।
0: ओके,
1: धन्यवाद मीनाक्षी जी,
0: बाय।
2: आज लगता है आप यशुदास के गाने सुनना पसंद कर रहे हैं।
1: हाँ, क्यों नहीं।
2: हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो,
1: चलिए मुलाकात करते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
3: रोशन जी और उषा जी को मेरा प्यार भरा
1: नमस्कार। लीला जी
2: नमस्ते, नमस्कार आपको।
1: लीला जी फ्रॉम बोशेरी।
3: बोशेरी से बोल रही हूँ, आप कैसे हैं दोनों?
1: ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, और आप की दुआ है। तो चलिए लीला जी, आप अपना पहला गाना गाइए।
3: तो मैं नीतू सिंह और कपूर पर गाऊंगी।
1: ओके, गाइए।
3: उन लोगों की जोड़ी तो बहुत
1: लाजवाब है ना। हाँ जी, अमर जोड़ी है, गाइए।

0: देखे।
1: बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया, कभी कभी फिल्म का गाना है, बहुत ही अच्छा लगा नीला जी। अब देखते हैं कि आप ये धुन पहचानती हैं या नहीं। और इस फिल्म का डायरेक्टर है गुरुदत्त साहब, जिनका जन्मदिवस कल है। ओके, सुनिए, बहुत आसान है।

0: कभी यार कभी पाटना।
1: अच्छा है, गाइए।
0: ठीक है,
1: अच्छा है, गाइए।
0: कभी यार कभी पार लागा धीरे नजर, सैया घायल हुआ रे मोरा जी राजी कर।
1: बहुत ही अच्छा, और आपने पहचान लिया लीला जी, क्या बात है, आपकी लीला रंग लाई है।
0: बाय बाय, शुभ रात्रि आपको।
1: शुभ रात्रि, लीला जी खुश हो गई। बहुत सुंदर सी आवाज है उषा जी, शमशाद बेगम जी की,
2: बिल्कुल।
1: और टिकटॉक पर,
2: और यहाँ पर लोग चाहते हैं कि मैं गाना गाऊं, अब मैं पूरे प्रोग्राम में गाना गाऊंगी,
1: क्या करेंगे
2: तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें धक्के कर
1: निकाल दिया जाएगा दोनों को।
2: बिल्कुल नहीं, हम नहीं इतना गा सकते हैं, लेकिन आई प्रॉमिस लास्ट जो है हम गाना गाएंगे, ठीक है। थैंक यू शिवेश, और यहाँ पर जब मैं गा रही हूँ तो यहाँ वहाँ पर जय भाई हमें 20 पॉइंट दे रहे
1: हैं।
2: कोई नहीं, हम यहाँ पर एक और
1: श्रोता को लेंगे
2: जी।
1: ओके, चलिए देखते हैं। हेलो
2: हेलो
3: हेलो
1: हेलो, नमस्ते कविता जी।
3: नमस्ते उषा जी और रोशन भैया।
1: कैसी हैं कविता जी?
3: प्यार भरा नमस्कार।
1: प्यार भरा नमस्कार आपका हम स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए कविता जी, सैपिया से आप बात कर रही है ना?
3: हाँ हाँ।
1: ओके, तो पहला गाना हंसते हंसते गाइए।
3: शादी करके आई सैपिया।
1: अरे बाप, आपने तो पूरा अपनी हिस्ट्री बता दी। अच्छा गाइए पहला गाना आप। ओके गाइए।

0: ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है, सफर का गाना आपने गाया है, बहुत ही अच्छा। अब आप ये गाना सुनिए और पहचानिए। और इस गाने में हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक दिया था और उनका जन्मदिवस भी जुलाई महीने में ही है। बहुत आसान है,
0: कोशिश
1: सुनिए।
0: करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो 2000 के गाने
1: अगर उषा जी गाएंगी तो आप पहचान जाएंगे।
0: देखा यहाँ पर लोगों को पता चल गया है यहाँ पर जय है क्योंकि फिल्म से लिया गया है ना। और
1: तेरे नाम से
0: तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।
1: देखा आपने, ये था गाना फिल्म तेरे नाम का। और आपने क्या कोशिश की है इसके लिए, हम आपसे आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। ओके
2: सभी को धन्यवाद, बहुत
0: धन्यवाद आपको। थैंक यू,
1: बाय।

0: लगता है।
1: जी उषा जी, बहुत अच्छा लगता है जब टिकटॉक पर वो लोग जवाब दे रहे हैं,
2: जवाब दे रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साबिना है, हेलो जी, और सत्यम सोहोगाई। कभी कभी आप लोगों के नाम जो है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन प्रोनाउंस में मुश्किल हो जाता है,
1: लेकिन
2: फिर भी आपका नाम
1: जैसे
2: हमने ले लिया हमने ले लिया आपका नाम। और देखते हैं यहाँ पर कौन है। हेलो,
1: नमस्ते जी। हेलो,
3: नमस्ते रोशन भाई और उषा बहन।
1: नमस्ते, क्या नाम?
3: मैं गीता हूँ, प्लेंडे पपाई से।
1: प्लेंडे पपाई से गीता जी का स्वागत है। कैसी हैं आप? ठीक?
3: शुक्रिया जी, हाँ अच्छी हूँ अभी।
1: ओके, तो आप अपना गाना गाइए प्लीज। गाइए।

0: ठीक है।
1: बिल्कुल ठीक है गीता जी, क्या बात है, आपने बहुत ही सुंदर आवाज़ में इस फिल्म का गाना गाया, मन मंदिर, है ना। तो चलिए अब हम आपके लिए ये धुन बजाते हैं, सुनिए। और ये जो धुन है आलोकनाथ पर आधारित है, आलोकनाथ जी का जन्म दिवस भी जुलाई महीने में है, सुनिए।

0: बहुत हाँ गाइए। अच्छा है, आपने अच्छी तरह से आपने शुरुआत की है। हाँ
1: आया
0: आइया, सुनिए आप,
1: मिल नहीं रहे, भुला गई
0: कोई
1: हम।
0: बात नहीं, आप सुनिए।

0: याद आया आपको?
1: अब याद आया।
0: कोई बात नहीं, आपने कोशिश की है गीता जी, बहुत धन्यवाद आपको। बाय
1: बाय
0: बाय। जी हाँ, हमारे मालिक हमारा भला करेंगे अवश्य, क्योंकि दिल अगर साफ हैं तो कोई हमें नहीं करेगा माफ, हमें पसंद करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ अंताक्षरी प्रोग्राम का समय समाप्त हो गया, लेकिन समाप्ति की ओर बढ़ेंगे और इतनी सारी फरमाइशें आए हैं, उषा जी आप ये गाएं, उषा जी आप वो गाएं। अब मैं कहूँगा आप जो गाना आप गाना पड़ेगा आपको, वो मेरी फरमाइश की होनी चाहिए।
2: आपकी फरमाइश।
0: हाँ जी, आप देखें अगर फरमाइश पूरी करना चाहती हैं तो अवश्य। और चलिए आप गाना शुरू कीजिए और इसके बाद हम प्रोग्राम में फुल स्टॉप लगाएंगे।
2: कौन सा गाना बोल रहे हैं?
0: जो भी आपने कहा था प्रोग्राम से पहले कौन सा।
2: अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन गाऊंगी। कोई जो है जो अपना जन्मदिन अपना बर्थडे मना रहे हैं तो उनके लिए ये गाना।
0: ओके फाइन।
2: सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरे लाज ने मुझको भी

0: सुर लय से लय मिलाते हुए ताल फिल्म का गाना, और फरमाइश तो पूरी हो गई है। और ये जो तालियां हैं श्रोताओं के लिए और खासकर उषा जी के लिए।
1: चलिए, ये गाना जो आप बोल रहे थे

0: सुनो सजना, सुनो सजना।
1: बहुत ही सुंदर सा गाना है ये, और बहुत लोग इस गाने को सुनना चाहते थे, और बहुत ही कठिन सा गाना है। तो चलिए, उषा जी की आवाज के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। आप लोगों ने साथ दिया टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर और फोन के द्वारा और रेडियो सेट के भी द्वारा। ऐसे ही आप भाग लेते रहें और हमारे साथ आप जुड़ते रहें, और अगले सप्ताह तक हम दोनों को आप अनुमति दें। नमस्कार।
0: चलिए, जो भी लोग हमें देखा आज, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे बहुत जल्द आज दिलों की आवाज प्रोग्राम में। अच्छा। भूलिएगा नहीं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि आपको।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब। समाचारों में आप सभी का स्वागत है।

सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3 से ज्यादा फीसद की बढ़ोतरी। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। फिलहाल मुर्शस के कैदखानों का जायजा लिया जा रहा है। ड्रग्स और जुर्म के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दफ्तर UNODC एक जायजा ले रहा है। प्रोफेसर कोलिंस ओडुटे इस हफ्ते मुर्शस में हैं ताकि वो एक ऑब्जर्वेशन मिशन कर सकें और कैदखानों में सुधार को लेकर सिफारिशें दे सकें। पहली जून से कैनाल प्लस के ग्राहकों को TF ग्रुप के चैनलों का एक्सेस नहीं है, यानी 5 चैनल

0: कम है, इस फैसले से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। ग्रेट ब्रिटेन में नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक एक क्रिप्टो करेंसी बिलियनेयर ने नाइजर फहाश को 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का तोहफा दिया। बैंकरों ने एनसीए को ये जानकारी दी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का शक। और फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स की आज रात से शुरुआत। नमस्कार, आदाब। इस बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3 से ज्यादा फीसद की बढ़ोतरी आई है। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। इस हालत से कमजोर समझौते को लेकर मध्य पूर्व की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने का डर मंडला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। इन दिनों मुशरस के कैदखानों का जायजा लिया जा रहा है। ड्रग्स और जुर्मों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र दफ्तर UNODC एक जायजा ले रहा है। प्रोफेसर कोलिंस उदुती इस हफ्ते मुशरस में हैं ताकि वो एक ऑब्जर्वेशन मिशन कर सकें और कैदखानों में सुधार को लेकर सिफारिशें दे सकें। मुशरस UNODC के 9 गिने देशों में शामिल हैं जो कैदियों के साथ सलूक और कैदखानों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करें। इस मिशन के सिलसिले में प्रोफेसर कोलिंस उदुती ने कई कैदखानों का दौरा किया। MBC की एक टीम भी बोबासा के न्यू विंग प्रिजन में उनके साथ गई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र में खासतौर पर दिमागी सेहत के सिलसिले में अक्सर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बर्नआउट की बातें होती हैं। इसके चलते सार्वजनिक, निजी, शैक्षिक, धार्मिक और स्वास्थ्य क्षेत्र एक साथ आकर हल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट हाउस खेजवी में आज इस पहल की शुरुआत की गई। कल रात राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी गईं। इस विधेयक का मकसद शिकार लोगों को की बेहतर हिफाजत करने के साथ साथ हिंसाओं की किस्मों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। इनमें आर्थिक हिंसाएं, मानसिक और जज्बाती हिंसाएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा सजाओं को और मजबूत किया जाएगा और रोकथाम के कदमों को भी ठोस किया जाएगा। कल राष्ट्रीय सभा में ही प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछा गया जो पाई में स्मार्ट सिटी को लेकर के संदर्भ में रहा और उन्होंने ये कहा कि फंड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया था।
1: दमन लिपाई स्मार्ट सिटी परियोजना के एक प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के समर्थन का उल्लेख किया, खासकर 97 बीघा जमीन पर इसके विकास को लेकर। उन्होंने ये भी बताया कि चीनी प्रमोटर ने निर्धारित फंड का केवल एक हिस्सा ही लगाया है, जिससे गंभीर चिंता हो चली है। प्रधानमंत्री ने कहा,
2: and it has several dimensions. I'm informed by the State Investment Corporation
1: ये एक स्कैंडलस परियोजना है पूर्व सरकार के शासन में, और इसके कई आयाम हैं। स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से सूचित किया गया है कि उसने भारी मूल्य वाले उन जमीनों को लीज पर नहीं दिया है, बल्कि उन्हें निश्चित रूप से ट्रांसफर किया है ये हाई इमारतों के साथ। ये संपत्तियां अब से ये हाई की हैं, जिनका प्रमुख शेयरहोल्डर यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड है। अतः ये प्राइम लैंड स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नहीं, उन्हें एक विदेशी की ओर से संचालित एक कंपनी को ट्रांसफर किया गया है, जिसने अपने वचनों का पालन नहीं किया और इस पर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच चल रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नए प्रशासन की ओर से कई चिंताजनक मुद्दों का पता चला है। स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड पर ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया नहीं चलाई गई और शेयरहोल्डरों के बीच संधि पर हस्ताक्षर से पहले एम ली हाई पर भी ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात, यहाँ के कायम होने पर ये तय किया गया था कि सभी चेक्स पर एम ली हाई और स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे। प्रारंभ में मिसिस बनुमती विरासामी ये पद संभाल रही थी, जिसके बाद एम अनुप नीलांबर इस पद पर आए। फिर भी 2018 के मार्च महीने में येहाई की प्रशासनिक परिषद ने एक प्रमुख बदलाव किया। एम लीहाई खुद केवल 10 मिलियन रुपए के सभी चेक्स पर हस्ताक्षर कर सकते थे। इससे ज्यादा वाली रकम के लिए एम लीहाई और अनुप नीलांबर के हस्ताक्षर चाहिए थे। इस असाधारण मेकानिज्म की बदौलत एम लीहाई ने येहाई अकाउंट से भारी रकम में पैसे निकाले। इस तरह उन्होंने कुल 107 मिलियन रुपए निकाले, जिनमें से मार्च और मई 2022 के बीच 3 महीनों के अंतराल में हर एक के लिए 9,431,240 रुपए के 10 विथड्रॉवल्स किए। 31 जुलाई 2019 में लीहाई और अनुप नीलांबर ने एक रेजोल्यूशन पारित किया, जिसके तहत लीहाई को मासिक रूप से 5 लाख रुपए के वेतन पर सहमति बनी। इनकम टैक्स खुद येहाई ने चुकाए, उन्होंने नहीं। 2026 के फरवरी महीने से स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नए मैनेजमेंट ने इस प्रक्रिया को समाप्त किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड को इस परियोजना में कई खामियां दिखी हैं, जैसे देरी, प्रशासन की समस्याएं और फाइनेंसिंग के साथ जुड़ी कठिनाइयां। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और FCC की जांच के चलते एक स्मार्ट सिटी प्रमाण पत्र को रद्द करने का विचार किया जा रहा है। ऐसी भी जानकारी है कि चीन के 2 नागरिकों ने फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन में आरोप लगाए हैं। ये बताया गया कि येहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के शेयर होल्डिंग में लीहाई की वित्तीय भागीदारी के संबंध में विवाद पाया जाता है। दोनों ही नागरिकों ने ये भी बताया कि एम लीहाई अवैध पैसे को वैध बनाए जाने में संलग्न हो सकती हैं, जिसके लिए FCC ने उन पर एक अस्थायी आरोप लगाए हैं। FCC की तरफ से की गई मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लीहाई के बैंक अकाउंट को लेकर फ्रीज करने के आदेश जारी किए और साथ में येहाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सभी शेयर्स को भी। 2026 के मई महीने में स्टेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने FCC में लीहाई के खिलाफ फंड की हेराफेरी की भी औपचारिक शिकायत दर्ज की। अभी FCC अनुप नीलांबर और लीहाई से संबंधित तथाकथित हेराफेरी के मामले की जांच कर रहा है। बता दें कि एम नीलांबर को बाद में पूर्व सरकार की ओर से स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नामजद किया गया। ये एक वृहद मामला है जिसमें भारी सार्वजनिक रकम, राष्ट्र की अहम जमीनें, एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल, गलत गंभीर संचालन, येहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, शेयर होल्डर की बेईमानी और निवेश की हानि संलग्न है। मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन पर एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि फाइनेंस एक्ट 2022 की बदौलत कुछ अवधि के लिए इसे नियमबद्ध करा पाया। इस कदम का मकसद है उन महिलाओं को बेवा का पेंशन प्राप्त कराना जो इसके हकदार है। प्रधानमंत्री ने कहा,
2: I'm informed by the Muslim Family Council that during the registration exercise,
1: मुस्लिम फैमिली काउंसिल की ओर से सूचित किया गया है कि रजिस्ट्रेशन कार्रवाई के दौरान 368 मांगे प्राप्त हुई। इनमें से 322 को मंजूरी दी गई और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स दिए गए। 109 जीवित महिलाओं से संबंधित रही, 46 मांगे इनकार की गई क्योंकि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। 31 जीवित महिलाओं के हैं। ये भी जानकारी दी गई कि रजिस्ट्रेशन की अवधि के ढलने के बाद 31 दिसंबर 2022 तक 38 अतिरिक्त मांगे की गई। कानूनी मोहलत ढल जाने के बाद इन मांगों पर काम नहीं हो पाया। सभा को ये भी बताना चाहेंगे कि मुस्लिम रिलीजियंस मैरिज की रजिस्ट्रेशन नई अवधि बढ़ाने की संभावना पर अभी काम चल रहा है। मुक्लाउड एप्लीकेशन के जरिए उपलब्ध सिविल स्टेटस के कागजात के विषय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ संस्थाओं की ओर से QR कोड द्वारा दी जा रही प्रतियां स्वीकार्य नहीं, जिनमें बैंक, नोटरी, अपोस्टिल सेक्शन शामिल हैं। उन्हें मान्यता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे की जाँच की जा रही है।
0: पहली जून से कैनल प्लस के ग्राहकों को टीएफएन ग्रुप के चैनलों का एक्सेस नहीं है, यानी 5 चैनल कम है। इस फैसले से लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। पहली बार नहीं है कि ऑडियोविजुअल क्षेत्र के 2 बड़े ऑपरेटरों के बीच इस तरह का झगड़ा है। सन 2018 से बातचीत में राय अलग अलग रही है, लेकिन समझौते बनते गए। एक स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना और बच्चों के भविष्य में

0: और ज्यादा निवेश करना, ये जोश शॉल बुनियाद का मकसद है जिसने आज अपनी फोटोवोल्टाइक परियोजना की शुरुआत की। उद्देश्य संस्था की गतिविधियों के खर्चों को बहुत हद तक घटाना है और सामाजिक समर्थन को मजबूत करना है। एमबीसी प्ले अभियान के संदर्भ में ORM-1 और ORM-2 पर आयोजित मुकाबलों के दो विजेताओं को हेलीकॉप्टर में यात्रा करने का मौका मिला। शालिनी बिसंबर और अश्विन बालू ने हेलीकॉप्टर में पूरे टापू का दौरा किया। उन्हें सी बीच क्लब और बेलोम्ब नेचर रिजर्व की तरफ से भी तोहफे मिले हैं। एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ने यात्रा को मुमकिन बनाने में मदद दी है। हम आपको बता रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच हवाई हमलों की दोबारा शुरुआत से तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी आई है। तेहरान पर वाशिंगटन ने फिर से पाबंदियां लगाई हैं। इस हालत से कमजोर समझौते को लेकर मध्य पूर्व की सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने का डर मंडला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता खत्म हो गया है। अब्दुल बुला की रजनी बेकर।
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते हिंसा की फिर से हुई शुरुआत। पिछले महीने तय युद्धविराम ज्यादा समय तक टिका नहीं, असल में हमले और जवाबी हमले के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है। हिंसा के बढ़ने से संबंधित मुद्दे यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग, जहां से विश्व का करीब 20% पेट्रोल और नेचुरल लिक्विफाइड गैस होकर गुजरता है। वाशिंगटन के अनुसार 3 व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाया गया। इसके लिए तेहरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि उसने जवाब में ईरान में 80 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद जवाबी हमला करते हुए ईरान ने ऐलान किया कि उसने कुवैत और बहरीन में कई अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर आक्रमण किया। मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। खाड़ी के इन दो देशों में सायरन की आवाजें चल पड़ी। इसके अलावा धमाके भी हुए ईरान के बंदरगाह बुशहर में, जो कि अहम पेट्रोल संयंत्रों के बहुत नजदीक है। अंकारा से नेटो शिखर बैठक में भाग लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ लड़ाई बंदी अब समाप्त हो गई। फिर भी उन्होंने संकेत दिया कि वार्ता फिर से जारी रखने के लिए समझौता बातचीत की जा सकती है। हिंसा के फिर से भड़क उठने पर मंडियों में हलचल सी मच गई। पेट्रोल के दाम में 5% की बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट के लिए प्रति बैरल की कीमत $78 तक पहुंची। वैश्विक सप्लाई में रुकावटों की चिंता के चलते ऐसी स्थिति आन पड़ी। कूटनीतिक स्तर पर कई देशों ने संयम की मांग की, जैसे कुवैत, कतर और चीन, जिन्होंने हिंसा रोकने की मांग की। नई सिरे से हिंसा बढ़ने की स्थिति ऐसे वक्त पर पैदा हुई है जब पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। उधर ईरान अपने सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की विदाई में संलग्न, जिसकी मौत इसी साल हमले में हुई थी। मध्य पूर्व में व्याप्त संकट की स्थिति के बढ़ने की चिंता हो चली है।
0: चीन के केंद्र में रिकॉर्ड तोड़ बरसातों की वजह से कम 17 लोगों की मौत हुई है। 67,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। दक्षिण में सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, हजारों लोग बेघर भी बताए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक एक क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर ने नाइजल फराज को £5 मिलियन स्टर्लिंग का तोहफा दिया। बैंकरों ने NCO को यह जानकारी दी क्योंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का पहले से ही शक था। इससे रिफॉर्म यूके के नेता पर दबाव बढ़ गया है। स्थानीय स्तर पर लौटते हैं। कल रात राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पर बहसें जारी रखी गईं। इस विधेयक का मकसद शिकार लोगों की बेहतर हिफाजत करने के साथ साथ हिंसाओं की किस्मों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा। इनमें आर्थिक हिंसाएं, मानसिक और जज्बाती हिंसाएं शामिल रहेंगी। इसके अलावा सजाओं को और मजबूत किया जाएगा और रोकथाम के कदमों को भी और ठोस किया जाएगा। अनिशा मदया की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: Auparavant, c'était 14 jours. Maintenant, c'est 7 jours pour l'obtention d'un protection order. Mais considérant la gravité des circonstances, parfois, c'est long. Et là, je fais un appel pour qu'il y ait un triage des cas qui sont rapportés au ministère du genre et de la famille pour les récidives et surtout, hautement sérieuses, pour que ces PMI soient délivrés dans un minimum de 3 jours.
3: We support this bill, but we must ensure that it does not become... another law that protects victims strongly on paper while leaving them exposed in real life. That I do not doubt that the minister has the greatest of intentions in this bill. But what I do

0: पाए और पहली बार क्वालिफाई हो सकते थे क्वार्टर फाइनल के लिए, लेकिन इजिप्ट की टीम बहुत करीब आकर हार गई। अर्जेंटीना को जमीन आसमान एक करना पड़ा, तब जाकर अर्जेंटीना की टीम आगे बढ़ पाई। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना 2-0 से पीछे थी। इब्राहिम पहला गोल स्कोर करता है 15वें मिनट पर इजिप्ट के लिए। यहां पर अर्जेंटीना के फैंस जो बहुत थे एकदम असमंजस में आ गए, और इसके बाद तागलियाफिको को पेनाल्टी दी गई। मेसी पेनाल्टी बनाने में नाकाम रहा। सेकंड हाफ में इजिप्ट की टीम काउंटर अटैक पर आगे बढ़ी। जीको का गोल हासन के इस क्रॉस पर रेफरी को लगा कि इस एक्शन को शुरू होने से पहले फाउल हुआ था, इसलिए ये गोल नहीं दिया गया। लेकिन दिफाओं यानी इजिप्ट की टीम फिर से वापस आती है। सलाह हासान को गेंद देता है, हासान जीको को, और जीको इस बार दूसरा गोल बनाता है 2-0। यहां से लग रहा था कि अब इजिप्ट बाजी मार जाएगी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के लिए रोमेरो एक गोल कम करता है मेसी के पास पर। उसके बाद मेसी इक्वलाइज करता है। यहां तक अब लग रहा था कि मैच जीत जाएगा अर्जेंटीना, और अंतिम मिनट में या यूं कहें इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में फर्नांडेज गोल स्कोर करता है 3-2 की जीत मेसी के लिए। ये एक कीमती जीत है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा, जिसने पेनाल्टी पर कोलंबिया को हराया।
1: और आज से क्वार्टर फाइनल्स के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को 12 बजे रात को दो बार चैंपियन रही फ्रांस की टीम अफ्रीकी मुल्क मोरक्को के मुकाबले खेलेगा। और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। मस्कमिंस के दक्षिणपुर में ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी जो ज़्यादातर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में होगी, और दूसरे इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। आज दिन के दौरान घने बादल होंगे, ऊँचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुंदर खराब रहेगा, 3.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। दूर समुंदर में ना जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 18 से 21, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:47 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहंगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। थोड़ी देर में शोक समाचार सुनिए।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: पायोंकू रोड मोसेलमों सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 78 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जगवंती राजकुमार, श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदायशी नाम जोदोआ जो इंद्रानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी बाद में उठाई जाएगी। इटली में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री विजय बहादुर जो विजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और रामदानी रोड प्लेंदीपापा के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल तीन बजे इटली में उठाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। रिजर्वर रोड उलियोद नंबर 1 वाकवा में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद जो प्रेम

के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनके घर रिजर्वोयर रोड उलीहूद नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मिल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। गुरुवार 9 जुलाई 2024 सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक कौशालू, शुमैगनिये और रिविया दी गाले में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और गुरुवार 9 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक आल्बियों और आसपास के इलाकों में मौसलमा राफ्रे, मौसलमा बेजराज, मौसलमा बेलव्यू, अवेन्यू ओरुगान, अवेन्यू विक्टोरी, अवेन्यू सेंट जेरान, अवेन्यू बाउंटी, अवेन्यू अल्बाट्रोस, अवेन्यू डालिया, अवेन्यू ट्यूलिप, अवेन्यू फ्रांजिपान, अवेन्यू रोज, अवेन्यू ओये और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और गुरुवार 9 जुलाई को दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक हाईलैंड्स और आसपास के इलाकों में मौसलमा MTMD, मौसलमा वाल्डवाज, मौसलमा ब्लूप्रिंट, मौसलमा पामेसा, मौसलमा ओमनिकेन, मौसलमा VRS, बेल्टेयर, NHTC हाईलैंड्स, सिटी 50, बासन रोड, बाउंड्री रोड, रेलवे डिस्पेंसरी रोड, नाडस रोड, फाइल रोड, कैंपमेंट रोड और टू कोट रोड और ओवाडाली रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台7月8号的节目，我是您今天的节目主持人张大威。今天是歌曲节目，今天所播放的歌曲有只要有你、世界有你有我、不见不散、红旗飘飘，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Welcome to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandariki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
9: तो चलिए श्रोताओ, एक बार फिर से हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। समय हुआ है भजले प्रभु का नाम का। ये कार्यक्रम जो है समर्पित है जितने भी श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात्रि का समय है, हम आपके लाए हैं चंद भक्ति गान जो ईश्वर से संबंधित होता है। तो चलिए हमेशा की तरह चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान जो है कुछ आपकी ओर से कुछ मेरी तरफ से। कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा जो है प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के नाम हम करते हैं। तो आइए विघ्नों को दूर करने वाले भगवान देवता को, भगवान गणेश जी को हमारा सादर प्रणाम।

श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैन भक्ति गाना आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं, तो चलिए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। वैसे

जब हम बात कर रहे हैं श्रद्धा के बारे में, भक्ति के बारे में, तो मन में हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही हमें भगवान तक पहुंचाता है। जब मैं मन में अटूट विश्वास रहता है तो हमारी छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर तक ज़रूर पहुंच जाती है, और हमें सत्य के मार्ग पे हमेशा चलना चाहिए। हमें अच्छे कार्य करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में हमें सफलता प्राप्त हो। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रख रही है। जब हम जिंदगी की राह में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर दिल में विश्वास हो तो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर जरूर आती है और हर अंधकार के बाद जरूर उजाला होता है। तो विश्वास ही वह ताकत है जो गिरकर भी हमें फिर से उठना सिखाता है। तो यही सीख हमें लेकर आगे बढ़ना है जिंदगी में।

श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण, ये सब कुछ जो है बहुत ही मायने रखता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि इसी के सहारे जो है कठिन से कठिन राह को भी हम आसान बना लेते हैं और जिंदगी की हर चुनौती का पार भी हम कर सकते हैं। तो विश्वास जो है केवल दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर और ईश्वर पर भी होना आवश्यक है।

श्रोताओं, आइए एक अनमोल विचार आपके नाम हम करेंगे। विश्वास टूटने में एक पल लगता है, आप सभी को पता है ये बात, लेकिन उसे दोबारा बनाने में समय और सच्चाई दोनों लगती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بيشك अल्लाह नरमी करने वाला है और सारे कामों में नरमी को पसंद करता है। बहवाला अबू दाऊद शरीफ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जो उसको बुरा लगे वो मुझको भी बुरा लगता है, और जिस चीज़ से उसे तकलीफ़ पहुंचती है उससे मुझे भी तकलीफ़ पहुंचती है। बहवाला बुखारी शरीफ। इब्ने माजा की रिवायत है, हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है और उनके वालिद उनसे बेहतर है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन व हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। बहवाला सनन इब्न माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को अपने कंधे मुबारक पर उठाए हुए थे कि एक सहाबी ये मंज़र देख कर बोले, ए बच्चे, तुम कितनी बेहतरीन सवारी पर सवार हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया, सवार भी तो कितना बेहतरीन है। बहवाला तिलमिज़ी शरीफ। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। शब बख़ैर। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: संगतिया लोग घड़ी में डाला ये वक्त रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुना तो एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन।
1: RM3 रेडियो

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
2: गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो।

चलो आज बुधवार की रात 8 जुलाई साल 2026 सबको के स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉर्चस पर और जय प्रताप सिंह हम एक सभी से लेकर रात के 11 बजे रे भोजपुरी तड़का मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमैया का जगह देवी जगह विद सैंग 4028085 या फिर हमने के रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सब अपन SMS भेजे और बेशक भोजपुरी गीत मांगे की प्रोग्राम है इधर उधर की बात ना करिया और टिकटॉक पर टेलीफोन नहीं करिया का जगह दे विद जगह विद सैंग पर और गीत के बीच नहीं टेलीफोन करिए जब गीतवा चला था गीतवा पूरा हो जाए तब सुने करिए कहे कि जब गीत बजे रहा था ढेर कोई खुशी रहा गीतवा कंप्लीट सुने के तब बीचवा गीतवा हमने नहीं काटब सर एगो फैंसी पहरा हर काम के तो हमने के जो उद्देश्य है कि सब कोई खातिर हमने गीत चलाब सर पर छा धीरज धरे के बारी बारी से तिलों के गीत चली 2 घंटा के प्रोग्राम बा मैक्सिमम 24 गाना सकब से चला एक से जस्ती नहीं कहे कि ओकर में जालोक भी बा और ये सब बात चेहरा कौंपो है के और जब टेलीफोनी कर बा धीरे चलिए और राजू के बोली में कमती कर दिया वरना नहीं सकब से बचिया राजू के बोली में जोर से डलवा तो नहीं सकब से टेलीफोन वाले पर ही हमने के फोन वहाँ काटे के माफ़ी चाहते हैं पर बोल रहे हर काम के गो फांसी रहेगा तो आज है बुधवार की रात 8 जुलाई साल 2026 गमत ही गमत हो हमने के संगे और ये प्रोग्राम में ढेर कुछ दोहरा मिली सीखे के जी हाँ ढेर कुछ हमने नए से तैयार करके एक तरफ तो हर गीत चली साथ में ढेर कुछ तो लोग सिखाओ अब जो ई प्रोग्राम के दौरान जेकर शीर्षक है भोजपुरी तड़का और जय प्रताप सिंह के साथ तो चले संगत लोग बता दे रहे कि प्रोग्राम चल रहा था दुगो चैनल पर

रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन, साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी प्रोग्राम चलता सकत और प्रोग्राम देखे और प्रोग्राम सुने भी। तो चल जितना कोई हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर और जितना कोई सुना था एमबीसी रेडियो पर है गीत तो लोग ना मामा और पापा और अगवा के लेके मामा और पापा और अगवा के लेके

संगतिया लोग, कुछ दिन पहले वेनेजुएला में गो बहुत ही ज़बरदस्त सलसला रहल, भूकंप आ रहल, और जो पिछले सूत्र से पता चला था कि लिवेंका

चंके भूकंप आ रहा वहाँ पर ही। एकर में 3,600 लोगन के मृत्यु हो गल बा, 16,000 लोग घायल होवन सर, 18,000 लोग लापता। बताए जो आपदाल बा एगो नेचुरल कलामिटी है कि कोई नहीं सकेला रोके, पर बहुत दुख के बात है कि 3,600 लोगन की मृत्यु। कांग सिगुन में माटी थरथराल, माटी कांपल और थमलो देते होल और इतना हानि हो गल। तो भगवान जितना कोई के परिवार वो लोग खोले हों सर, भगवान लोग की कुहास दे फास करे के, कहे कि आसान नहीं है, फासिल नहीं है कि जब तोहर अपन जब एगो प्राकृतिक आपदा में जान खो दे सर। तो याद रखिए हमने के सूत्र से पता चला बीबीसी न्यूज़ से कि 3,600 लोगन के मृत्यु हो गल भाई भूकंप में, 16,000 लोग घायल हों सर, 18,000 लोग लापता। तो जैसे नेचुरल कामिटीज है तो कोई नहीं सकेला रोके, का सकब सक करे भी। आज दुनिया में ऐसा ऐसा कांड हुआ था कि क्या बोल बा। रात की 9:09 जितना कोई हमने के सुनता सब कोई के स्वागत करते थे जा MBC रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर भी। अगला गाना नारी जन्म लिली बेटी, इंदु एक गीत और कहते देवन नदी वाला गीत और नाम शैलेंद्र एल ब्रेड और फिर गणेश वरुण, फिर है गीत चलो निष्ठा खातिर, फिर है गीत चली सुरेश पुलामी विष्णु सेजवाल साथ में धीम, है गीत शोभा माला विश्वानी देसाई प्रीति शालिनी की ओर से अगर घर वाला विशाल और गुद्दू को बेटी और सब हिरू परिवार लाफलोगा से बानी पहसान बबीता नेमन दिनेश मातो करुणा पुनीत, फिर है गीत चली तेज सनातन दिनेश गोपी अक्षय ओरियो ग्रीन तारा, है गीत संजीत मलिक राक्स और है गीत चली चंद्र रुकामर और है गीत चरावप्स जल हदलायु के नाम शीला सिधारी रिशन, है गीत और नाम राधोकित और आकाश सर्वेश, है गीत और खतीर रीना सीताराम अंजिला, है गीत चली मिकायल खतीर भी लक्ष्मण भाई भी उनके साथ देवोत्थवन मनोज दीना जानकी भावना भैरव लिशनी प्रसान कर माता जी पिताजी खतीर दंजय भावना भैरव, है गीत और नाम जेनी रोजी प्रीति और गीत चली ईश्वरी कोमल जानकी प्रसाद परिवार लालमाटी से आतिश भाई होन उनके साथ देवोत्थवन थैंक यू। लिशनी प्रसन्न की ओर से उकर मामा के नाम उकर मामा बोलता है हमारा आवाज़ बड़ी पसंद आवेला और चाची बोलता है वो गीत डाल दे के तो जरूर गीत चली। लिशनी प्रसन्न गीत और मामा तो पापा और सब परिवार के नाम साथ ही गीत और खातिर और फिर बीबू मौलिक भी हमने के साथ देवोत्थवन चला एक साथ ही गीत और सुनब सर नारी जन्म ले ले बेटी दुर्गा की शक्ति तोर में बा। और नारी जो है वो बहुत शक्तिशाली है, नारी दिखा आज की नारी जो है आधुनिक नारी घर में भी काम करेला घर के बाहर भी काम करेला और अच्छी तरह से अपन भूमिका निभावेला। एगो माँ है, एगो बेटी है, एगो बहन है, एगो बहू है, जो नारी के रूप है तो ये कोई नहीं सकेला ले। नारी जो है देवी है, शक्ति है, जननी है। नारी ही घर के स्वर्ग बनावेला, नारी यो घर के नरक बनावेला। तो नारी के समान करिया जोन घर में नारी के समान होला वो घर में लक्ष्मी वास करेला और धन संपत्ति हमेशा रहेला। सब नारी लोग के नाम है गीत जो रात के मुख्य सुनता सब ब्यूटीफुल लेडीजों के नाम और चल एक साथ सुनने है गीतवा गैले हवन भोजपुरी बॉयज और कुणाल बाबूलाल

और अपनी बात करब से सोयाबीन के बारे में, देखिए हम सोया बोला से ढेर प्रकार के सोया बा, उजर सोया, लाल सोया, सोया जोन कुल मागों रहेला और पीछे पीछे सोया रहेला। तो सोया जोन है वो पौष्टिक खाना है, मौन से वेज है और एकर में प्रोटीन बा, कार्बोहाइड्रेट बा, फाइबर बा, कैल्शियम बा, आयन बा, मैग्नीशियम बा, फॉस्फोरस बा, पोटाशियम बा, जिंक, फोलेट बा और विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन K भी बा, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी बा। ये जो सोया है तो एगो पौष्टिक खाना है, शरीर के जो है इम्यून सिस्टम के आगे बढ़ावेला, ओके सुदृढ़ करेला और हमने के खून खातिर अच्छा है और हमने के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हमें खाई पचेला तो सोया खेबर तर से हमने के डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेला। ढेर को बोला सोया खेबर तो गाज होला, झूठे है भात है बात झूठे है। सोया में ढेर मना तत्व बा और बेशक सोया जो है एक सकब सोया के होगाई में पकाए, मसाला में पकाए, होगाई के चटनी बनेला, होगाई के विंदाई भी बने, सोया के माफ करिए सोया के जो है सोया होगाई में पकेला, सोया मसाला में पकेला, सोया के चटनी होला, सोया के विंदाई बनेला। तो है सोया जो है एगो वेजिटेरियन खाना है और बेशक ये चहला अच्छा है खाई के स्वास्थ्य खातिर एकदम परफेक्ट है। तो हमेशा याद रखिए सोया से तेल भी बनेला, सोयाबीन ऑयल और सोया के ओकर जो है ढेर प्रकार से प्रयोग कर जैसे बोली एक में ढेर तत्व बा। लैका लोग नहीं खुशिया खाई के पर हमने के चाह लैका लोग को आज करके ताकि तकेल की स्वास्थ्य अच्छा रही। अगला गीत कैसे बनी, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, माधुरी माधवी जुमार गीत और कटी समंदा रामजीत बानुसुकिया और कातून है गीत थोरो नाम चला बबजा मानती चितामन हम के साधे वन याशना राम पर्सन आशना नुषा रक्तवा गीत और खातिर रोहित ठाकुर है गीत और नाम अंति शंकुश नेहा और सब दुलाल परिवार लालमाती से है गीत चलाते इस के यान दुमार से यान प्रियंका मेविन आके

0: मालवी और सब धुमार परिवार, धुमार परिवार के नाम बनु सुख दुखिया गीत हो खातिर केतन गीत मांगली हवन का सब संगतिया के नाम, साथ में है गीत चली सामिंदा रामजीत के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ, और है गीत कविता अनु के नाम नीना देवी है गीत तोहर खातिर, और जितना को अभी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन सुनता है गीत हो नाम और संगतिया बा लाइन पे कर से मिलब जा। हेलो हेलो बात कर जा। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्ते प्रताप जी।
0: नमस्ते के हवा जा।
1: हाँ
0: तो स्वागत बा गीता बोला।
1: तो गला हमारा नाम बजा दिया, सब केदू परिवार का नाम डाल दिया।
0: सब केदू परिवार कहाँ रहे हैं सर?
1: हाँ अशराक के हमारे बेटी बारूमा जगत कृष्णान और दूगो लैका बा वैष्णव विभा
0: सोया के चटनी जोड़ी से बनावे ला प्याज या दाल के
1: प्याज
0: बोला था कैसे सोया के चटनी बोले बताओ
1: हाँ
0: गरमा गरम फराता सोया के चटनी थोड़ा सा विदा कर हम खाला सोया के चटनी। बहुत धन्यवाद टेलीफोन नहीं कर रहा और बोलब सर शुभ रात्रि। हाँ जी हाँ हाँ तो सोया के चटनी भी बने रहा। अब सोया के बुई कर दी बा गर्म पानी में, अब ओके पैसे कर दी बा तो कर में पुलामून पीमा इस सब डाल के जोड़ी से खांसे कर दे बा सिर में, तब छोंक दिया गर्म तेल में नमक डाल के गर्मा गर्म फगाता पकैया ओकर में सोया के चटनी डाल के खैया मोम। लवना है गीत थोड़ो खातिर विकास बिगू जो रहे फौजी साग शिखा नवनी अनुषा अनुषा और सब बिगू परिवार के नाम, केविन पाजिया है गीत थोड़ो खातिर, फिर है गीत केविन वायदलिंगम है गीत थोड़ो खातिर चली बहुत बहुत प्यार के साथ, और नीना दाब हम के साथ देवथवन यशना राम प्रसाद है गीत थोड़ो खातिर, और फूफू के नाम भी मानती चितामन है गीत थोड़ो नाम, आशना नुषा रक्त हुआ है गीत थोड़ो खातिर, शाकुबाई है गीत थोड़ो नाम गीताबाई, और जितना कोई रात के भी हमने किस सुनाता है गीत तो के नाम कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। याशना राम प्रसाद है गीत तोहर खातिर तोहर माँ के नाम भी

फोला मुन बिना चटनी कैसे बने, फोला रे बिना चटनी कैसे बनी। चटनी छा तीता तीता बना की वो कैसे चटनी जो तीता नहीं हुई हाँ कि नहीं मतलब एगो पोलामुन के चटनी बनावत हुआ तो कर मैं कुतुर मिनी दलबा पीमा एगो बुत लहसुन अब सिर में खाजे कर दीबा तब ओके बन हाथ से रमजबई से काच के तब ओके मैं थोड़ा नमक डालिया मिलाओ से करिया चटनी बन गल। अब चटनी की सकबा गर्मा गर्म भजिया के साथ खाई या फिर आटा में थोड़ी चटनी डाल के खा लिया और रात के 9:26 हुआ था। तुझ सुनते भोजपुरी तड़का प्रोग्राम और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे ली हमने आज के गुजाफे के मौके कर लें इससे ढेर कोई नए कुर्सी रहा पकाए के जहाँ बुलबा पकाए के बाप रे महाभारत हो लग रहा था कहा आजकल ढेर महिला लोग नए कुर्सी सब पकाए के सकेला वो लोग काम करे जालन सब फाचगे हो जालन सब घरे आवेलन से तो कोजरन सब केवल के पका के दे अब कोनो कोनो पति पकावेला पर ढेर पुरुषों तो नहीं पकावेला पर बा ढेर कुछ पकावेला है हम अपन के गुड एग्जाम देते हैं हम अपन घर में पकाएला कोनो भी रही भात रही तकारी रही दाल रही चाहे वेज रही नॉन वेज रही अगर हमार पत्नी एक दिन बीमार हो गई या पत्नी घर में नहीं बा तो हम सकब अपन लेका के खाए पका के खाए हमार प्रॉब्लम नहीं बा पर ढेर पुरुष लोग नहीं जाने ला पकाए हमने जाने ला सब पर देखिए ना से एगो आलस्य लिखा हो गल बा ढेर कोई नए खुशियन से पकाए के खाली खाली कौन सा बहरा खाए के देखा फास्ट फूड खाए के मना नहीं बा अच्छा है कब को फाची के जेब जाके खेला अब रोज के बाहर के खाना खेब तो थोड़ा सब पैसा फिर जाए भैया तब कॉम्प्लेन कर लाबी से बा तो है बाहो बा तो लाबी से तो लोग भी करते हो सर कहे कि पैसा आवता पर तो लोग खाली भाड़ा खाते हो सर तो पैसा कहाँ बची कहाँ रही पैसा भैया खाली रात दिन बाहर खेब तो पैसा फिनी हो जाए हाँ कि नहीं ये कहते बुझ रहा सर हम समझी रहा सर कि आजकल पति पत्नी दोनों काम करे रहा फांसी नहीं बा कबू कबू फाचगी हो जाए बा आजकल तो ठंडा करा था शान के बत हाथ निमन का पानी में डाले के बर्तन तन धो के पर एक दो दिन खेला भाड़ा अच्छा बा अब रोज के भाड़ा खेब भैया रोज के नहीं पकेब तो कैसे हो बोला था तो अगला गीत जो चली मच्छी मरवा हमर नाम है गीत चलावे सर केविन जाक खतीर आप रहे नुवेल फ्रांस इंद्रानी बिहारी है गीत तोहरा खतीर और यो गीतवा मंगले हवन ओकर माता जी इंद्रानी बिहारी के नाम मच्छी मरवा हमर नाम हम मच्छी मारी रहा चला गीतवा सुनब जा है गीत चली ललिता खतीर और सुम खतीर नीरव हमने के साथ देवतन हाय नीरव और इजाबेल भी हमने के साथ देवत हवन और

बेशक एगो प्लेटफॉर्म है गीत मांगे के इधर उधर बोलबा तो नहीं अच्छा रही क्या कि गीत मांगे के थिया जब अपन कोनो विदा करत हो कोनो मिसाज तो ध्यान रखे कौन सी विदा करत हो पब्लिक दिखाता ठीक बा हम एक सजेशन नहीं बोला तो लोग इंटेलिजेंस तो लोग जानते सब क्या बोला थे जा तो अगला गीत इजाबेल खातिर केविन जाग ललिता है गीत दोरो नाम विशाल नाथू है गीत थोरो खातिर और विशाल हवन इटली से विशाल मंडप और पत्नी और बेटी और मॉरिशस में और माता जी और बहन बा और रुद्र अश्विन रामदे के साथ होते हैं नर्मदा राम सौ हाय नर्मदा हम जाने से थोड़ा गीत बड़ी पसंद आई देवयानी भी हमने के साथ देवत हवन और चला ये सब संगतियाँ जो हमने किए देखा था सुनत लोग खातिर रीता सीतारू मोहतवा से होवन और दुगो बेटा साइलेंस आई देकर पतु और सब परिवार के नाम मंगल सुरेंद्र देव कुमार है गीत तोहरो नाम चली सुचिता है गीत तोहरो खातिर रागिनी भी हमने के साथ देवत हवन और फिर संगीता मिरन हवन बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देखा तेर और है गीत चित्रा जी हवन मोदार वैसे और घरोला ज्ञान और कमला दीनू मोहतवा से और नाती नारोही और अनिता लाल जी फ्रीकॉम्फ्लाक से अनिता हवन फ्रीकॉम्फ्लाक से अनिता लाल जी मोदार वैसे इन इंदिरा हवन मेबर्ग से और इंदिरा लौटन है गीत हरो नाम मच्छी मरवा हमार नाम चले एक साथ सुने

0: On the hour, every hour.
1: Radio Marches.
2: RM3 Radio.

इस दुनिया में दो ऐसन लोगन के कबो नहीं भुलाया जोन दुख के समय में तोहर साथ छोड़ देलक और जोन दुख के समय में हमेशा तोहर साथ देवेला। इस दो लोगन के कबो नहीं भुलाई के कहे के जोन तोहर साथ छोड़ के चल जाला

ओकर ओकर पर फिर से भरोसा नहीं सब करी, पर जन दुख के समय में तोहर साथ देवेला ओके हमेशा अपन दिल में रखिया, सोचने वाली बात बा हाँ कि नहीं। रात के 9:45 था हमने के साथ देवत हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद हमियों के, अच्छा लगा था कि हमने के साथ देवत हुआ। टिकटॉक पे छोरा खातिर इंटरप्ट कर नहीं सका है कि अभी पोता आप सहज में बा, 10 बजे से फिर से टिकटॉक लाइव रही रेडियो मॉरिशस पर, और तो लोग सब हमने की देखे 10 बजे से 11 बजे रहे, थोड़ा धीरज धरिया होला कभी को पोता आप जो नहाओ का छाछ भी नहीं हो जा रहा था, छाछ में दल नहीं सा तो रेडियो पर तहाँ सा ना, तो 10 बजे फिर से टिकटॉक लाइव रही रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर के टिकटॉक पेज पर, और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर सब सुने। अब अगला गीत जो है वो प्यारा गीत है चाय के पत्ता, ढेर कोई खुशिया चाय पिए के मगुशियाँ लोग मॉरिशस वासी था चाय के शौकीन है वनसा, अब अदरक वाली चाय बा फिर मसाले वाली चाय इलायची वाली चाय और एक बोल कड़क चाय, कड़क चाय लाओ। तो ठंडा के मौसम में कड़क चाय चाय भी के फौसे लोग भी हैं, वो लोग हर दिन तो में चाय पिए रहें, इन टास दे टे सिल बुपले इन टास दे काफी सिल बुपले। कड़क चाय लाओ प्यास लगी है। हाँ तो चाय जैसे भी रह रहा है, चाय की कोई मौका नहीं चल रहा है, अब ढेर कोई घरे रह रहा था चाय पी, ढेर कोई ब्यूहो में काम कम देख रहे हैं सब, ब्यूहो में हर आधा घंटा में चाय पिए लन सर एगो मानी है, ढेर कोई रात के खुशा चाय पिए के कड़क चाय। तो चला है गीत सुन अब सुग्रीव गौरी और बाहर गौरी ब्रदर्स की आवाज़ में, गीतवा की टाइटल है चाय के पत्ता। गीत चलावत इस निशान सिंह छुबा के नाम रहे लन, तो अब एक ओकर पत्नी ओकर बेटी ओकर सब परिवार के नाम उमा जगह नायक लिस्काली से ओकर बेटी दृष्टि ओकर बेटा जगह अंगलितिया में बा, और सब जगह नायक परिवार के नाम, और जो कोई खुशी रहा इसे बोले कि ए एक कड़क चाय लाओ मेरे लिए, तो लोग के नाम भी बाहर गौरी सुग्री गौरी की आवाज़ में चाय के पत्ता। रिहाना सिनारी हमन फिनिक्स में वो भी बता ए कड़क चाय, वो भी खुशी रहे डायलॉग बोले के चला गीत सुन।

0: से बोलो भाई।
1: तूर के जला चाय के पट्टा डाल दे हमर पैयावा में, कमियों लेके लीजिन जला, निमन निमन चाय बनेला।
0: बोल भैया।

0: कल से हमने के देश में काफ़ी ठंडा करता, खूब ही ठंडा गिरा था, तापमान में 3 डिग्री गिरा हुआ था। अलबा कहा कि वो जोरदार एंटी साइक्लोन बा मास्कारिन के दक्षिण में, और ऐसा अनुमान लगाया जाता कि अभी रात के मौसम में सकेला 13 डिग्रीज करें, नुवल दिकुवेत में 14 डिग्रीज, मोका में 15 डिग्रीज, वाकवा में 15 डिग्रीज, रिश्ते में 19, पोर्टिस में सकेला 20 डिग्रीज सेल्सियस करी। और मौसम ऐसे नहीं, हवा पानी पानी रही सप्ताह के, और तापमान में काफ़ी गिरावट आल बा, और गिरावट हते रही कह के बोली ग्वांटी साइक्लोन से बात तो से जुड़ल जो नई ठंडा के लहर हमने के देश में ओकर प्रभाव पड़े था। तो खाली मोरिस में नहीं है, नाकिनो मोरिस और गोदिक में भी ऐसे जो है एकर प्रभाव पड़े था। और ये एंटी साइक्लोन के बाद और ग्वांटी साइक्लोन आए तो ओकरों से भी काफ़ी ठंडा के लहर हमने के देश पर पड़ी। और सब कोई आजकल प्लेइंग होता बोलते सब बाप इतना ठंडा करता, तो हमने इसे प्लेइंग होते इसे दूसरे देश में जाने लगा कितना ठंडा करेगा, कहूँ कहूँ पर -40 -10 एन डिग्री तब का बोल सर, पर का कर मौसम की तकाजा है बा, तब हम त्रिको जाके तो के बोलू दल्ले रे धेर को जो रात के जाला काम करी अपन जिसकी बोनेरी जालन सर, तब पास्कुल डालिए गला में अपन कपार पर गो कास्केट डाल लिया, जैकेट को हाथ में लीगो गो सुसे निमन से दलिया। और रात वक्त सोई समय हमने की जो लड़का लोग है लोग के छाल निमन से ढोंपे के कह के लड़का लोग कभो इधर उधर जो है कभो चादर उधर निकाल दे रहे तो लड़का लोग के लोई हो रही है कह के बड़ी ठंडा गिरी आज रात के भी। और अभी जब हम बताते हैं MBC मौका में तो अभी पूछा था कैंस या कातूस देखे कर लगभग हमने यहाँ पर यहीं से भितरे में यहीं से, पर बाहर में जो है एगो ले ग्लासियाल बा तो तेमुस में या गुद में गर्म पानी रख ले रही है, जब तोहरा प्यास सगी तो छेद पानी गर्म पानी पिया और उनके साथ देते रहिए। अभी तो रात के 9:50 हुआ था, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ही तो ट्रेलर है अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, रात के 11 बजे रहे तो लोगों संगी बात करते रह जा। अगला गीत जोली छोकरी से प्यार करेगा और एगो संगत है लाइन पे को से मिल अब जा। हेलो
1: हेलो जी,
0: नमस्ते जी, के हवा जी?
1: उमा
0: है। उमा कहाँ से?
1: फोन जी साक्ष से।
0: तो आज स्वागत बा, और वहाँ कैसे रहता हूँ करोगा? बढ़िया ठंडा
1: ना ये गो भाव परवा?
0: ओ उतना ठंडा नहीं करोगा तो हर बगल
1: बा, लेकिन ये गो भाव परवा।
0: हाँ दिन के कैसे रहता हूँ रहा? पानी पानी?
1: हाँ जी, रिम झिम बरसात।
0: ये गो लापुशिया लिखा पानी?
1: पियर
0: पियर उठी के ललका नगिनवा ना
1: हरियर
0: हरियर नगिनवा
1: जी हाँ
0: हाँ। और गीत
1: उनका रे खातिर, लेकिन मेल वॉइस
0: मेल वॉइस सुला गाना

0: अतन खुद ते से गीतवा गेले बा संतोष महादेव मेल
1: बस आले
0: फिकर ने करियो चला दियो अब सर ठीक बा
1: बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि और कुछ संगत बा लाइन पे हेलो नमस्ते हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते
2: नमस्ते
0: के हवा जा
2: प्रताप जी
0: के हवा जा
2: सीधीमती
0: सुयाक
2: से हाँ
0: और वहाँ पानी बरसता सुयाक में सुनते
2: हैं हाँ बहुत पानी बरसता
0: खूब ठंडा करता है ये लोई चंद मन से लोई होड़े के रात के भरी ठंडा
2: ठंडा बहुत और पानी भी बरसता तो हर हाँ तो पानी नहीं बरसता ना
0: बाप यूँ तो इसने नहीं तो मौताबा में तो इसने करे मौका में भी
2: माता नो आये हुआ था
0: बाप रे बाप इतना पानी तब पनियो चैनल है माता जी
2: हाँ तो एको गीत डाल दिया हमारे कहते ठीक है महादेव के संतोष महादेव के गीतवा तो अभी तो बहन जी मांग लेना ना
0: पियर पियर उठी के
2: हरियर नगीना वा
0: हाँ
2: तो ये गीतवा डाल दा सब चंद्र मुनि परिवार खतीन
0: हाँ
2: और सब महिष परिवार इस कालिये के और आपके लिए भी
0: अरे हम दोस्त को हम दोस्त को बात पूछा अभी ठंडा करा था एक मान ला है मान ला एक कुछ लानेज गिरी लगी तो क्या करब सर
2: क्या करो सर नाले जीरी जा घर में हिल के मोलता मोलता होड़ के ताकि सुतर रह पा क्या कर बा
0: दिखे ला दूसरा देश पे दिखे ला कैसे रानीस गिरेला
2: हाँ हाँ
0: और हिमालय में लैंड में कश्मीर में
2: हाँ वहाँ गई ली तो सगरो तलाने में घूम ली
0: कहाँ गर ला कौन पे ही गर ला
2: लैंड में गर ली तो हुआ तो गई ली सा कश्मीर गई ली सा
0: कश्मीर बढ़िये जोली बा ना बढ़िये जोली
2: बहुत जोली देखे चाहिए ना
0: अब कब जेबा घूमे फिर से कश्मीर
2: अब नहीं सको बाप सब अब खूब घूम ली तीन महीना
0: ओके ओके कोई बात
2: खूब घूम ली तीन महीना तो अब तो नहीं सको अब लाज में हो गई थी ना
0: हाँ हाँ
2: नहीं सब उतना चली ना
0: आली श्रीमती तो हर गीत चली अभी है बहुत बहुत धन्यवाद हमने की टेलीफोन नहीं कर ला और एक संगत जावा लाइन भी अकस्मिन अब जाए हेलो
3: हेलो
0: नमस्ते प्रेमिला जी आप आए बाहर आई क्या बात है ए वो गीत गा दा आने से उसके आए बाहर हाँ नहीं गीता सुन ली हुआ ना एक और शायद सुनते हैं और आज के दिन कैसे बीता प्रेमिला जी
3: आज के दिन
0: अच्छी तरह से घर ही रहला घर अलग घूमे थोड़ा बहुत नहीं
3: घर नहीं पर पानी बरसा में कहाँ जे वैसे
0: आजू काल से देखा कैसे ठंडा कर रहा था ना
3: बहुत ठंडा
0: अभी है सेवन के से ठंडा करी दिमाग की फिर से ग्वांटी साइक्लोन आए और ठंडा करी हाँ दिमाग की तरह लेते वास्ते में जहाँ निकल बता पानी बरसता जुलियत और उतवा में उत महीना में जैसी ठंडा करी
3: सावनी मास रही शायद थोड़ा सा अच्छा रही
0: श्रावण मास में हो रहा ना और
3: श्रावण मास में सब रूप पूजा पाठ हुई ना
0: हाँ और अगला गीत के कर खातिर
3: अगला गीत में गीत के बोल बोलत
0: है आली बोला
3: धरीला चरनिया
0: धरीला चर गीतवा के गई लगभग
3: सुनीता नंद
0: सुनीता ननकू गीत गई वन और गीत के खातिर केकर खातिर मांगते हो
3: बहुत लोग परिवार में
0: सब परिवार लोग
3: सब
0: एगो दुर्गा माँ के एगो दुर्गा माँ के गीत है अम्बे अम्बे माँ नहीं
3: दुर्गा भवानी
0: खोजते अभी
3: तुहार है जगदम्बे भवानी
0: आले आले खोजब सर पास की लापागियों में तापी कर देता हंके देवता बोला था अम्बे माँ नहीं
3: कोई बात नहीं माँ डाल दिया
0: आले आले डाल को भजन में जोड़ी सी डाल दे वापस
3: ना लोग काम करते हैं
0: हाँ
3: रात हो गई ना
0: हाँ अभी रात के ठंडा में काम करेंगे भाई मौका में जाने तो कितना ठंडा कर रहा था देखी कर लगभग हाँ कैपी पर फोकस साइड में तो वहाँ तो बुझा बाप रे बाप का बोल अब लानेस गिरी ये सब भगवान के काम है दुनियादारी है चेहरा निभाई की ना आली माता जी तो हर गीत चला दियो अब से है आली बहुत धन्यवाद आदमी के साथ दे बता और एगो संगतिया वाला लाइन नहीं एगो संगतिया मिसाज जा कर लगभग हेलो प्रताप जी सुदेवी हवन वाकवा से गीत मांगते हुए

जी ललिता, कुशल परिवार, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालंगा के अनुषा, किरण, रामरतन परिवार और सब कोई के नाम जे कोई भी रात के हमने के सुना था बहुत बहुत प्यार के साथ।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: घड़ी मिलाल वक्त रात के 10:15 होवत बा। तू सुनत हुआ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और हमने के देखा था टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर लाइव एंड डायरेक्ट फ्रॉम एमबीसी मोका। और बोला सा कि जो वैवाहिक जीवन है ई एगो नया जीवन है जहाँ पर पति पत्नी के चेहरा एक दूसरे के साथ देखी। हाँ कबो कबो होला पति पत्नी में नोक झोंक या पति को बात बोला कि पत्नी आमे देगा या पत्नी को बात बोला कि पति आमे देगा पर चेहरा को कॉम्प्रोमी करे के कॉन्सेशन करे के शादी को कॉम्प्रोमाइज है। जोन चीज पति बोली वो पत्नी नहीं करी तो जोन दिन जोन चीज पत्नी बोली पति नहीं करी तब भी झगड़ा होला महाभारत होला। हाँ तो जब कोनो भी प्रॉब्लम रही तब पति पत्नी के चाहे बैठ के बतियाई के ये कि नहीं कि जब घर में कोनो चीज हो तो पत्नी माँ के सुने करता या बेटा पर माँ के सुने के बोलता कि ऐसे बन नहीं। पति पत्नी जब शादी कर ला तो एगो नया जीवन शुरू होता एक में ख्वाजम जीवन के नहीं चाहे लेके ख्वाजम पैसन जब हेरी रहा तभी घर में झगड़ा होला महाभारत होला। तो अपन शादीशुदा जीवन अच्छी तरह से ले जाइए। आजकल देखिए ऐसा ढेर शादीशुदा जो जीवन है टूटले जाता शादी जो हर दिन तलाक केसेस होता है खातिर हमने नहीं चाहे ऐसा कोई कि घर टूटी। जब कोनो भी प्रॉब्लम रही तो पति पत्नी के छाप बैठ के बतियाई की और लड़का के आगे कबू झगड़ा नहीं करिए ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है लड़का लोग की साइकोलॉजी पर। लड़का लोग तरह से कुछ नहीं बोली पर जब लिकुल जालन सा कुड़े जालन सा तब लोग के जो मानिए रह रहा सब सौझे हो जा रहा तो प्लीज़ लड़का लोग के आगे झगड़ा नहीं करिए जा। हमने के काम समझाए कि अब तो लोग देखिए कौन चीज़ अच्छा लगी या कौन चीज ना अच्छा लगी। मार ताली मार हमार संगे मार ताली मार है गीता चलाते से उषा खातिर साधना जी के नाम यज नाम की साधे उतन शीला कुमार मगर फिर अजय है गीत युवा खातिर और है ये गीत चली क्या ना हेलियो ना के नाम मॉक्स जीवी है गीत और नाम नदानी जगरू दरिदा के साधे उतन में बक्स हाय दरिदा सुमन जलसा ग्रुप हमने के साधे वन बुझावन मिंता नतालिया फिर भी हमने के साधे उतन और फिर हवन कविता हरबोसी हेमंता राणा सचिता बिहार भी हमने के साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कॉप्स हमने के साथ देवतवन शीला बोली रॉयल मगर स्वीट बनी वो भी हमने के साथ देवतवन अंजू भी हमने के देखा था टिकटॉक पेज पर और शास्त्री बनमाली हवन उनके साथ देवतवन और है गाना रातिश श्रीपोल के नाम और शादी बकाल तधे बना प्यारा आशीर्वाद रातिश श्रीपोल के एगो संगतिया की ओर से धे मना प्यार और आशीर्वाद। ललिता रामचंद्र उनके साथ देवतन श्यामा पांचू नमस्ते सुस्वागतम तचा एक साथ सुने गीत मार ताली मार हम संग मार ताली मार है गीत छरी प्रताप की ओर से और बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम हिरीश नारायण रहलन मिडलैंड्स तो हिरीश नारायण है गीत खासम खास तोहर नाम तोहर दोस्त प्रताप की ओर से मार ताली मार।

संगतिया लोग पैसा ऐसे रंगो चीज है, कबो तोहर हाथ में बा तो कबो जर के हाथ में बा। पैसा हमेशा एगो जगह नहीं रहेगा, कबो हाई हाथ से हाउ हाथ, कबो हाउ हाथ से हाउ हाथ, तब पैसा ऐसे एगो हाथ से दूसरे हाथ चलते रहेगा। पर पैसा जरूरी है जिए के, खासकर महंगाई के जमाना में पैसा के बड़ी मोल बा। अगला गीत सुंदर परी, अरे गीत तो चलाओ थी सब MGI के ओल्ड बॉयज एंड गर्ल्स खतेर लाने का था। जिस का था जिस जितना संगत या लोग हमने के संगे रहा MGI कॉलेज में, तनुजा प्रणव दुखन फिर हमके याद आवता कौन।

भुलागिरी बर्तनु जा के नाम याद आल प्रणव दुखन रहल फिर रहल गोविंद किशोर राव रामा बुसर नुकालू प्रिया हाँ प्रिया भी रहल संगे शर्मिला ओके और तरन जा के रहल हमने की संगे हमने की ग्रुप में किम शर्मिला प्रिया रामा राव गोविंद चेतना हाँ चेतना चमन चेतना ऑस्ट्रेलिया में बा शादी कर लगभग वहाँ पर ही कर लड़का सब ठीक ठाक चेतना अंग्रेजी अध्यापक हवन जा गीतांजलि भी साथ में रहन और के रहल साथ में बोलत तनुजा ओके अनुजा गीतांजलि चेतना किम शर्मिला प्रिया और की रहल मनीष अचामी सिंह मनीष अध्यापक हवन पी पढ़ावेलन एम जी आई कॉलेज में अनुजा भी रहल तो जितना कोई हमने की साथ एम जी आई में पढ़ाई कर ली सा उतना साल है कतवा जिस ले आधे कोई अध्यापक बा लेक्चरर बा पुलिस ऑफिसर बा बड़ा बड़ा काम करते वन सा तो सब कोई के सलाम बोलत है और हमने की जितना अध्यापक लोग रहन बहन जी बंदन बहन जी जोमादो गुरु जी रामफल बहन जी अरुण बहन जी झमन बहन जी गोकुल और के रहल अनुजा तनुजा हमने के अध्यापक गुरु जी की तारत हाँ गुरु जी की तारत पर वो संसार में नहीं हवन और के रहल के हमने के पढ़ावत रहल मिश्र राम गुलाम रहल मैडम नाइक रहल मिस्टर मिसेस देशा ना हाँ और हाँ दहारी गुरु जी रलन झा हमने के पढ़ावत रहल और के रहल तो जितना अध्यापक लोग रहल बहन जी बंधन गुरु जी दहारी बहन गुरु जी गीतारत गुरु जी जगन्नाथ बहन जी रामधुनी तो जितना अध्यापक लोग एम जी आई में उनकी पढ़ेलन उस सब कोई खातिर एगो प्यारा संगीत चलावत है जा सुंदर परी चल इस साथ गीत सुने गीत चला जैसे दाबित के ओर से संगत जा के नाम शेखर भी हमने के साथ देवतवन हेलो शेखर फिर है गीत चली डेजी के नाम डेजी हमने की बहुत प्यार से सुना थवन बहुत बहुत प्यार और बोला थवन प्रताप जी ऐसे ही नचते गाते रहिए हमने की नचाते रहिए और जितना कोई भी रात के बुलौशे में काम करता पुलिस विभाग में अस्पताल में डॉक्टर लोग बा एफएमए लोग बा नर्स लोग बा कॉल सेंटर में काम होता सिक्योरिटी गार्ड लोग काम करता कोनो कोनो कंपनी में मितियों में काम होता अभी रात दिन मितियों में काम होते रहे 24 घंटे और हमने के जो है मौसम की जानकारी देना मौसम जिससे बुलल जाता है सप्ताह के इसे पानी पानी कर ले रही ठंडा कर ले रही था जितना कोई काम पे जाए फजीर के लड़का लोग कॉलेज देखो जाए आजकल मॉक एग्ज़ाम हुआ था गार्ड निफ गार्ड ओंस गार्ड थ्रेस के तरह लड़का लोग अपन प्रिकॉशन लिया अपन छाता अपन रेनकोट अच्छी तरह से और ठंडा चीज़ ग्लासी चीज़ नहीं पिया जा गर्म पानी पिया चेत पानी पिया ठीक बा अपन स्वास्थ्य के ध्यान दिया और हमने के साथ देते रहा जितना लड़का लोग सुना था जितना प्रोफेसर लोग हमने की सुना था हर गीत तो लोग के नाम भी है जितना लेक्चरर लोग बा एम जी आई में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड ह्यूमैनिटीज़ की बी ए फ्रेंच एम ए फ्रेंच पी एच डी फ्रेंच फिर हिंदी बी ए एम ए पी एच डी में जितना कोई एनरोल बा सब जिले और प्रोफेसर लेक्चरर लोग के नाम है गीत सुंदर परी गीत खासम खास तनुजा खातिर है गीत चली कियाना हेलियोना की ओर से ओकर पति श्याम के नाम आज श्याम और कियाना के शादी के सालगिरह बा शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक कियाना और श्याम

फिर कोई बोलेगा कि स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन फिर से वापस नहीं आए। दोज आर द गोल्डन डेज ऑफ आवर लाइफ। सच की ना, कॉलेज है बकुनो त्राका नए फजर के खाली उठ के पारोई के जोड़ी से चाली कुल में पढ़ाई कर कुलो त्राका नहीं, पर एडल्ट जीवन में धेमा त्राका बा आशों की निके चहला लड़का लोग के देखे के पति पत्नी की सेवा करे के समाज में भाग दे के तभी अजील था तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहे रहा। पर बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ जैसे तनुजा हमके बोलता रहे प्रताप भाई, बेस्ट डेज हमने की कॉलेज के दिन रहल, हंसी मजाक हाँ कि नहीं। तो चलो अगला गीत सुनब जा। वंदना वंदना वंदना हमर सुना, वंदना वंदना वंदना हमर सुना। गीत चलावत संजय हरिचंद के नाम रहे पीतों कर पत्नी संजय बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के लिए। अश्विन भाई है गीत तोहर खातिर है गीत चलावत नासिम रेहान के नाम और है गीत चली अनिता पैतोप खातिर इंदिरा के ओर से गीत राजेश उगर के लिए डिम्पल हम के साथ देवत हवन। फिर है गीत चली एलेक्स के नाम आप हवन आरबियों से डेविड बिम के साथ देवत हवन। हेलो डेविड भाई क्या हाल है, हो जाए कड़क चाय। माफ करिए कड़क चाय कि श्रीदेवी की कुछ डायलॉग है चारबाज में रहल डबल रोल में तो झगड़ा हुआ था रोहिणी हटेंगे और रनपन कैसे बोले एक कड़क चाय हो जाए। यू चल अभी कड़क चाय नहीं बोल सब सब वंदना वंदना तू हमर सुना। जितना खूबसूरत हसीनालों के नाम वंदना है गीत सब वंदनालों के नाम और है गीत चली दीपा तिवारी दुखित के नाम आप हवन कनाडा में गणपति केविन बेटा और सब दुखित परिवार के नाम और तीना बुद्धा है गीत और खातिर तोहर सब परिवार के नाम। कृष्णा जीता नमस्ते है गीत और खातिर तोहर सब परिवार के नाम और वीएस सीयू हवन कनाडा में है गीत और खातिर तोहर सब सीयू परिवार के नाम भी और कृष्णा जीता है

गीत खासम खास तौर खातिर वंदना वंदना। जितना कोई हमने के सुना था रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर, जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर देखा था, गीत लोग के नाम गीता रामकरण है गीत तोहरों खातिर।

जिके हमनी अनुशासन भइला से डिसिप्लिन एगो बहुत जरूरी चीज है सबके जीवन में चेहरा अनुशासन एगो लड़का के जीवन में।

अडल के जीवन में बड़ा से छोटा, छोटा सर के बड़ा लेके सबके जीवन में चेहरा अनुशासन, जैसे को फजीर के गुलेर हेला, नींद से जागे के, फिर चा पिए के, तैयार होके स्कूल जाए के, फिर स्कूल के बाद घर आए के, सब एगो डिसिप्लिन रहेगा, पर डिसिप्लिन चेहरा फॉलो करे के। अब डिसिप्लिन नहीं रह तो जिंदगी में कुछ नहीं सक पाए। चेहरा जानी ना सकी ठंडा करे था, पर जब फजीर के तोहरा 20 वाले के 6:00 तो तू 6:30 सुतल नहीं सक रहे ना। कोनो कोनो लड़का लोग देरी आवला पूछबा कि फे दिन भी तो मिशो मन हाट 20 मन लेब तो नहीं है, लेब तो वा को बहाना है। फजीर के जब एगो लड़का के लिकुल बाहेले के 8:00 तो के चला 7:00 घर से निकल जाए कि ताकि ऊ बीते वहाँ कैंस ले लिकुल चल जाए। जब कक्षा में गैला समय पर प्रोफेसर स्पीकिंग करता पोमिया पेयोद डिजेम पेयोद, अब नहीं कि जब पोमिया पेयोद हो गल तब क्लास में ही रहता हुआ तब प्रोफेसर फिर से स्पीकिंग करी, उतना लड़का लोग स्पीकिंग कर दिला। हाँ एक कुछ सकेला एगो देरी हो जाए, एगो लड़का नहीं सकेला रोज के रोज देरी जा। हमने देखी ऐसा जो लड़का कॉलेज के पास रहेला वही सबसे ज़्यादा देरी जाला। तो माँ बाप लोग कितना समझाए लड़का लोग, जब एगो लाज हाल एगो से तो लड़का फोन करा था तो लड़का लोग के छा जाने के फजीर के उठ के अपन बिस्तर सरियाए के अपन लासाम भाड़े के मुँह धो के स्नान करे के पूजा करे के साग तैयार करे। पुनः लड़का देरी से स्कूल आवेला बोलवा देवुआ को चीज़ लड़का बोले ला मन बी एम का इलाकाज तो कुछ इलाकाज में क्या विजय करे था। तो ये सब चेहरा देखे के माँ बाप लोग कोशिश करे रहा देखे के बते नहीं बते नहीं, पर माँ बाप लोगों के उनके हंसों साबित थे बा लोगों काम पे जालन सा लोगों स्ट्रेस में रहन सा। तो घर में सब कोई अपन अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए तो घर वो अच्छी तरह से चली। अब खाली माँ बाप पर फी कर बा कि माँ बाप तोहर साख में तोहर प्रेम डाली तोहर काई डाली तोहर रोटी डाली, थोड़ा सुन तू रिस्पॉन्सिबल भैया है आसे बड़ा हो जा है ठीक बा। तो चल अगला गीत सुनते विशाल विशेषर के रोशन के पत्नी कर बेटा भवेश और सब विशेषा परिवार के नाम अपने लाफलोगा उज्जर पालतू। चल एक साथ सुने गीत हयो गीत चाहते आंजेल पूजा के नाम तारा खेरु है गीत और खातिर रजनी उनके साथ देवथवन हेलो सुमन कृष्णा जीता है गीतरों नाम रबीन महतो और ब्रायन के नाम है गीत चली उजर पालतू।

गमक धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो।

0: You're listening RM3 Radio.
1: अब हमने तोरा एगो कहानी सुनाओ सही कहानी है शेर और चूहा की। तो बहुत साल पहले की बात है, एगो घना जंगल में एगो शक्तिशाली शेर रहता हल। एक दिन ओके भूख लगल तो वो गहरी नींद में रहल। जब नींद टूटल तो दिखता ओकर आगे एगो चूहा घूमता। तो चूहा के पकड़लक और जातल चूहा के खाए। चूहा डर के मारे कांपे लगल और हाथ जोड़ के बोलक, महाराज हमके छोड़ द, हमके नहीं खा। हम वादा करते हैं मुश्किल घड़ी में हम तोहर सहायता करब। शेर ही सुनलक तो हंस पड़ल। वो बोलता है, इतना छोटा चूहा हमके कौन सहायता करी, हमके मन करता कर गोश खाए के, आज में चूहा की गोश खा। तो चूहा हाथ जोड़ के बोलता हमके छोड़ द, हमके को मौका द, हम तोहर मदद जरूर करब। तो शेर के दया चला तो वो चूहा के छोड़ दिलक। सच्चे के कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी लोग आल और जाल बिगड़न से, जब जाल बिगड़न से तो शेर जाल में माये हो गल। अब तो डहार डहार के जोर जोर से रोई लगल, बचाओ बचाओ हमके बचाओ, डहार डहार के डहक डहक के रोवता। तब चूहा सुनलक वहाँ पर ही, तु चूहा आल तो वो गते गते उजन हव जो जाल रहल अपन दाँत से कट कट कट कट कट के काट दिलक। जाल निकल गल और शेर बाहर निकल गल। शेर चूहा के धन्यवाद बोलक, बोले हम कबो नहीं सोचते रही तो नीचा निकल छोटा जनावर हमके इतना मदद करी, तू हमार जान बचाई ले, हम तोरा हमेशा याद करब, तोहरा भारी रहब। तो कहानी की शिक्षा ये है कि कबो भी कोई के छोटा या कमज़ोर नहीं समझ जा। कबो कबो छोटा छोटा चीज़ के बहुत बड़ा बड़ा काम हो जा रहा उकर से। या कबो भी कोई के छोटा समझ के अपमान नहीं करिए। देख रहा ना शेर और चूहा की कहानी। अब अगर शेर चूहा के खा ले हुआ तभी शेर जब प्रॉब्लम में पड़ल तक के मदद करलक। है छोटा सा चूहा हुए इतना बड़ा शेर के जीवन बचैलक। तो तू भी कोई के नज़रअंदाज नहीं करिए, कोई के छोटा नहीं समझिए, कोई के नीचा नहीं दिखाइए। ऐसे में सुनब जागला गाना सजनिया आशा जानू गीत और खातिर रहलन को तेज ममा कुमारी शुभम दीदी आरती जीजाजी सब ओकर परिवार खातिर। है गीत चली राजमन्ना खातिर राजमन्ना और है गीत चली सुदेश जसवा कर्मा राजकुमारी जिमी दुखिया सावन दुखिया रवि दिनु लोंग चिबुग राजा प्रवीण भैरव और श्याम मंगल खातिर भी और लोंग खातिर भी है गीत चली। नानो भी हमने के साथ देवतन हेलो नानो है गीत तोहरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। संजय बिहारी है गीत तोहर खातिर तोहर पत्नी सुरेखा शास्त्री बनमाली गीत और पत्नी तोहर बेटा विवेक तोहर बेटी दामाद और सब बनमाली परिवार के नाम खिवेजपोस की उदय धनी राम होंजा बहुत बहुत प्यार के साथ। ओकर पत्नी ओकर बेटा पतो बेटी दामाद ओकर समधिन चुन रहेलन लाफलोहा है गीत ओकरो खातिर। किशन गुड़िया अश्विन बच्चन है गीत तोहरों नाम विक्रम निफो है गीत तोहर माता जी पिताजी सब निफो परिवार खातिर। और है गीत चली सत्यम सोनू के नाम बहुत बहुत प्यार से हमने के सुना था वंजा। और है गीत चलावत है सा वीना कुपुस्वामी के नाम और हेलन मेबर्ग और घरोला और बेटी दामाद और बेटा पतो और सब कुपुस्वामी परिवार के नाम सुलमा।

दुखी थवन मेबर्ग से है गीत और घरोला तोहर दुगो बेटी तोहर सासू माँ तोहर सब परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल होवन नाकोजा से है गीत तोहर पति तोहर बेटा बहू और सब बाबूलाल परिवार के नाम और मॉरिशस में और दुनिया भर में जितना कोई हमने के सुना था है गीत तोहर करती रंभा होवन लास्वीस से बहुत बहुत प्यार और अजय और पूनम चिंदरामोस खाली से होवन है गीत तो लोग के नाम सजनिया

सजनिया सजनिया गीतों के बाद को अंतिम गीत चला सा बसंत सुपौल की जुबानी बेलीला बेलीला है। गीत के संगीत भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो जाए। रात के 9 बजे से अभी हमने साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद हमने के सुने खातिर और हमने के देखे खातिर। टिकटॉक पेज पर फोन कॉल्स खातिर भी शुक्रिया, SMS खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की दोनों की मुलाकात हुई कल बिफे के सांझ के 4 से 5 बजे दिल से मिले दिल कार्यक्रम में रेडियो मनोरंजन और एम फ्री पर। कल तक हमने की इजाजत दा और जय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम। शुभ रात्रि, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सुनहरे पल में। सुनहरे पल एक ऐसा सफर जहां वक्त की सुई थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ जाते हैं, और आज फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ गिने चुने नगमे। खोलेंगे यादों की वो पुरानी एल्बम जहां हर तस्वीर के साथ गीत जुड़ा हुआ है, वो गीत जो कभी रेडियो पर सुनते ही दिल मुस्कुराने सा लग जाता था। तो चलिए पुराने बॉलीवुड के उन अनमोल नगमों के साथ फिर से जीते हैं वो सुनहरे लम्हे, सिर्फ यही सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

खूबसूरत गिने चुने नगमे लेकर आई हैं आप लोगों के लिए। वैसे दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारे जिंदगी के हसीन पलों का हिस्सा बन जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, बचपन की यादें या माँ की लोरी और दोस्तों की मस्ती, वैसे हर एहसास कहीं ना कहीं किसी पुराने गीत में बसा होता है। तो आइए उन्हीं एहसासों को फिर से महसूस करते हैं सुनहरे पल के साथ, जहाँ हर सुर दिल को छू जाते हैं।

वैसे देखा जाए तो कुछ यादें कभी पुराने नहीं होती हैं, बिल्कुल उन अमर बॉलीवुड गीतों की तरह जो आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं जितनी पहली बार सुनने पर लगी थी। आज की इस महफिल में बस होगा सुकून, मोहब्बत और पुराने जमाने की मीठी मीठी खुशबू। तो चाय का एक प्याला ले लीजिए, दिल को आराम दीजिए और चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर सुनहरे पल में। बस गिनिशा का साथ यूं ही देते रहना।

आज की रात उन गीतों के नाम, बिल्कुल दोस्तों, जिन्हें सुनकर लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी और हसीन हो गई है। वो दौर जब अल्फाज में सादगी थी, धुनों में जादू था और आवाजों में एक अलग ही रौनक थी। इसी जादू को लेकर हम फिर से हाजिर हो जाते हैं सुनहरे पल में रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब यादें फिर से होंगे ताज़ा इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है दोस्त, जब पुराने बॉलीवुड के गीत दिल की दहलीज पर दस्तक देते हैं। हर सुर एक कहानी, हर नगमा एक याद और हर लफ्ज एक मुस्कान लेकर आता है। तो आज के इस यादों भरे सफर में हमारे साथ बनिए रहिए। ये है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, जहाँ बीते कल की खुशबू आज भी महकती है और हर गीत दिल से जुड़ा होता है।

तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये खूबसूरत सा शो दिल से अच्छा लगा। फिलहाल के लिए किनिशा को आप इजाजत दीजिए, बस यूं ही साथ देते रहे हमेशा के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस कुछ ऐसे गिने चुने नगमों के लिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखना।

0: You're listening RM3 Radio. Radio. Radio.
1: लंदन की लड़की नाना, अमरीकन गोरी नाना, लंकन की छोरी नाना, पेरिस की पोरी नाना, इंडिया, आहा, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट.

यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट,

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: और यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। East or West, India is the best.
1: Come on, let me hear you say. Come on, everybody say.

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: Tak nak kadung.

के क्षमा का परवाना, मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया।

0: खबर किसको कि कल क्या हो। अरे ये तो दिन की है जिंदगी।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।